सुप्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आश्विन मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 2 अक्टूबर सन 2026 सुबह के 7 बजे हैं। आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अब आज की प्रातःकालीन सभा का शुभारंभ करते हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। आइए श्रोताओं, आपको बताते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। जीवन सौरभ कार्यक्रम का प्रसारण होगा अब से कुछ ही देर के बाद। आज का शीर्षक, सबसे बड़ा रोग। अक्षय निधि कार्यक्रम में आप सुनेंगे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल से आज सूक्त 33 का वाचन। भक्ति संगीत लेकर आएंगे 7:20 से। हमारा नियमित कार्यक्रम वतन का राग आप सुनते हैं प्रातः 8:00। इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा संध्या 6:00। आज का कार्यक्रम लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर। आमने सामने कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे लोक गायक शशि कुमार पांडेय से मनीषा चतुर्वेदी की खास बातचीत। प्रसारण समय 8:30। बागर्थ में आज का शीर्षक उर्दू। प्रसारण समय प्रातः 9:00।

0: विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे जयंत विश्वकर्मा का बुंदेली भाग गायन। प्रसारण समय 9:30। दिन में 10 बजे आप सुनेंगे परिक्रमा कार्यक्रम, जिसमें आप सुनते हैं भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी। दिन में 10:30 पर हिंदुस्तान हमारा ये कार्यक्रम आज महात्मा गांधी की जयंती पर केंद्रित है। दिन में 11 बजे कला कल्लोलिनी कार्यक्रम आप सुनेंगे उदय शंकर के ऊपर। 11:30 पर युग प्रवर्तक विवेकानंद कार्यक्रम का 60वां भाग आज हम प्रसारित करेंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम जीवन सौरभ, आज का शीर्षक सबसे बड़ा रोग।
1: जीवन सौरभ

0: एक साधु किसी नदी के तट पर गया। उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। कलकल जल बह रहा था। उसने शीतल जल पिया और तृप्त हो गया। वहीं पास पड़े पत्थर पर सर रखकर वो सो गया। पनघट पर पनिहारिने आती जाती रहती थीं। अचानक 3-4 पनिहारिने आईं और उन्होंने साधु को सोता हुआ देखा। एक पनिहारिन ने कहा, ओहो, साधु हो गया, फिर भी तकिये का मोह नहीं गया। पत्थर का ही सही, लेकिन रखा तो है तकिया। पनिहारिन की बात साधु ने सुन ली। उसने तुरंत पत्थर फेंक दिया। इस पर दूसरी पनिहारिन बोली, साधु हुआ लेकिन खीज नहीं गई, अभी रोष नहीं गया, तकिया फेंक दिया। तब साधु सोचने लगा कि वो क्या करे, कि तभी तीसरी पनिहारिन बोली, बाबा, ये तो पनघट है, यहाँ तो हमारी जैसी पनिहारिने आती जाती ही रहेंगी, बोलती ही रहेंगी। उनके कहने पर आप बार बार परिवर्तन करेंगे तो साधना कब करेंगे। चौथी पनिहारिन ने बहुत ही सुंदर बात कही। उसने कहा, महाराज, क्षमा करना, लेकिन हमें लगता है कि आपने सब कुछ छोड़ा लेकिन अपना चित्त नहीं छोड़ा है। अभी तक वहीं का वहीं बने हुए हैं। दुनिया पाखंडी कहे तो कहे, आप जैसे भी हैं हरि नाम लेते रहिए। सच है, दुनिया का तो काम ही है कहना। आप ऊपर देखकर चलेंगे तो कहेगी, बड़ा अभिमानी है। नीचे देखकर चलेंगे तो कहेगी, बस किसी के सामने देखता ही नहीं। आंखें बंद कर लेंगे तो दुनिया कहेगी, ध्यान का नाटक कर रहा है। चारों ओर देखेंगे तो कहेगी, इसकी तो निगाह का ठिकाना ही नहीं, निगाह घूमती ही रहती है। और परेशान होकर आंखें फोड़ लेंगे तो यही दुनिया कहेगी कि भाई, किया हुआ तो भोगना ही पड़ता है। ईश्वर को राजी करना आसान है, लेकिन संसार को राजी करना असंभव है। इसलिए याद रखें, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोग हैं, लोगों का तो काम ही है कहना। हर किसी की बात महत्वपूर्ण नहीं होती। जीवन में तय कीजिए कि किस बात पर महत्व देना है और किन बातों को यूं ही छोड़ देना है।
1: जीवन सौरभ।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। अभी आपने सुना कार्यक्रम जीवन सौरभ, शीर्षक था सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अक्षय निधि कार्यक्रम का अब समय होता है।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 33वें वाचन। ऋषि हैं गृहस्थ एवं भार्गव शौनक, देवता हैं रुद्र, छंद है त्रिष्टु।
1: आते पितर मरुताम सुम्नमेतु मानह सूर्यस्य संदृशो युयोथाह अभिनो वीरो अर्वति क्षमेत प्र जाये महि रुद्र प्रजाभिहि। हे मरुतों के पिता रुद्रदेव, आपका सुख हमें प्राप्त हो। हमें सूर्य के उत्तम प्रकाश से कभी भी दूर न करें। हमारी वीर संतति संग्राम में शत्रुओं को पराजित करें। हम उत्तम संतति से प्रसिद्धि प्राप्त करें। त्वा दत्ते भी रुद्र शंतमे भी शतम हिमा अशीय भेषजे भी व्यस्मद्वेषो वितरम व्यम्हो व्यमीवाश्च तयस्वा विशूचीहि। हे रुद्रदेव, हम आपके द्वारा प्रदान की गई सुखदायी औषधियों के सेवन से 100 वर्ष तक जीवित रहें। आप हमारे द्वेष भावों तथा पापों को दूर करके हमारे शरीर में व्याप्त समस्त रोगों को नष्ट करें। श्रेष्ठो जातस्य रुद्र श्रियासि तवस्तमस्तवसाम वज्रबाहो परशिणः पारमं हसः स्वस्ति विश्वा अभीति रपसो युयोधि। हे रुद्रदेव, आप सबसे श्रेष्ठ ऐश्वर्यशाली हैं। हे आयुधधारी रुद्रदेव, आप बलवानों में सबसे अधिक बलवान हैं। हमें पापों से मुक्त करके उनके कारण आने वाली विपत्तियों को हमसे दूर करें। मा त्वा रुद्र चुक्रुधामा नमोभिर् मा दुष्टुति वृषभ मा सहूति उन्नो वीराम अर्पय भेषजे भिर भिषक्तमं त्वा भिषजाम श्रुणोमि। हे रुद्रदेव, वैद्यों से भी उत्तम वैद्य के रूप में आप जाने जाते हैं, अतः औषधियों के द्वारा हमारी संतति को बलशाली बनाएं। हम झूठी तथा निंदित स्तुतियों के द्वारा आपको क्रोधित न करें। साधारण लोगों के समान बुलाकर भी हम आपको क्रोधित न करें। हवी मभिर हवते यो हविर भिरव स्तोमे भी रुद्रम दिशीय रिदुदरह सुहवो मानो अस्यै बभ्रुः सुशिप्रो रीरधन्मनायै। जिन रुद्रदेव को हविष्यान्न समर्पित करके स्तुतियों के द्वारा आवाहित किया जाता है, उन्हें हम स्तोत्रों के द्वारा शांत भी करें। कोमल हृदय वाले तेजस्वी हसमुख स्वभाव वाले तथा उत्तम प्रकार से बुलाए जाने योग्य रुद्रदेव ईर्ष्यालुओं के द्वारा हमारी हिंसा न कराएं। उन्मा ममंद वृषभो मरुत्वान त्वक्षीयसा वयसा नाधमानम घृणीवच्छाया मरपा अशीया विवासेयम रुद्रस्य सुम्नम कामनाओं की पूर्ति करने वाले मरुतों से युक्त हे रुद्रदेव, हम ऐश्वर्य की कामना वालों को तेजस्वी अन्न से संतुष्ट करें। जिस प्रकार धूप से पीड़ित व्यक्ति छाया की शरण में जाता है, उसी प्रकार हम भी पाप रहित होकर रुद्रदेव की सेवा करते हुए उनके सुख को प्राप्त करें। क्वस्य ते रुद्र मृडया कुरहस्तो यो अस्ति भेषजो जलाशः अपभर्ता रपसो दैव्यस्याभि नु मा वृषभ चक्षमीथाः। हे रुद्रदेव, जिस हाथ से आप औषधियां प्रदान करके सुखी बनाते हैं, वह आपका सुखदायी हाथ कहाँ है? हे बलशाली रुद्रदेव, आप दैवी आपत्तियों को दूर करने वाले हैं, अतः हमारे अपराधों को क्षमा करें। प्रबभ्रुवे वृषभाय श्वितीचे महो महीम सुष्टु तिमीरयामि नमस्या कल्मलीकिनम नमोभिर गृणीमसि त्वेषम रुद्रस्य नाम। ऐश्वर्य प्रदाता, सबके पालक तथा श्वेत आभायुक्त रुद्रदेव की हम महान स्तुतियां गाते हैं। हे स्तोताओं, हम रुद्रदेव के उज्ज्वल नाम का संकीर्तन करते हैं। आप लोग भी तेजस्वी रुद्रदेव की स्तुतियों के द्वारा पूजा करो।
0: अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 33वें वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत।

जैसे भगवान सूर्योदय होने मात्र से ही समस्त अंधकार को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही भगवान का नाम एक बार उच्चारण करने मात्र से ही जीव मात्र के संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है।

भक्त कवि तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अर्थात कलयुग में न तो बड़े यज्ञ हो पाते हैं और न ही तपस्या। इसीलिए सबसे आसान मार्ग है प्रभु का नाम लेते रहिए।

अहंकार से बड़ा कोई शत्रु न तो भूतकाल में हुआ और न भविष्य में होगा। अहंकार के आते ही मनुष्य का सारा सीखा हुआ ज्ञान, विवेक और की हुई भक्ति नष्ट हो जाती है।

प्रभु का भजन हमें श्रद्धा, विनम्रता और आंतरिक पवित्रता प्रदान करता है और हमारा मन विविध प्रकार के विकारों, विचलनों और नकारात्मक प्रवृत्तियों से स्वतः ही पृथक होकर निर्मलता और आत्म अनुशासन की ओर उन्मुख होता है।

0: इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम भक्ति संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। एक छोटे से अंतराल के बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम वतन का राग।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक गई राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। देश को आजाद हुए अभी कुछ साल ही बीते थे। तत्कालीन रेल मंत्री मुंबई जा रहे थे। उनके लिए प्रथम श्रेणी का डिब्बा लगा था। गाड़ी चलने पर उन्होंने कहा, बाहर बहुत गर्मी है लेकिन ये डिब्बा काफी ठंडा है। उनके पीए ने जवाब दिया, जी सर, गर्मी तेज थी इसलिए इसमें कूलर लगवा दिया है। कूलर लग गया है? मुझे बताए बिना? आप लोग कोई काम करने से पहले मुझसे पूछते क्यों नहीं? क्या बाकी जो लोग गाड़ी में चल रहे हैं उन्हें गर्मी नहीं लगती होगी? ये बहुत गलत काम हुआ है। आगे गाड़ी जहां भी रुके पहले ये कूलर निकलवाइए। इस तरह मथुरा स्टेशन पर गाड़ी रुकी और कूलर निकलवाने के बाद ही फिर गाड़ी आगे बढ़ी। आज भी उस डिब्बे में जहां कूलर लगा था लकड़ी जड़ी हुई है, जो उनके ऊंचे आदर्शों की याद दिलाती है। अपने समय के वो रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी का पूरा जीवन ही ऐसी अनेक प्रेरक घटनाओं से भरा हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 को उत्तर प्रदेश के छोटे से रेलवे टाउन मुगलसराय में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री मात्र 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। इस छोटे से शहर में उनकी स्कूली शिक्षा कुछ विशेष नहीं रही। कुछ समय बाद उन्हें वाराणसी अपने चाचा के घर रहने के लिए भेज दिया गया। घर पर सब उन्हें नन्हे कहकर पुकारते थे। वे कई मील की दूरी पैदल नंगे पांव ही तय कर स्कूल जाया करते थे। भीषण गर्मी में जब सड़कें अत्यधिक गर्म हुआ करती थीं, तब भी उन्हें ऐसे ही स्कूल जाना पड़ता था। जैसे जैसे उनकी समझ विकसित होने लगी उन्हें पराधीन भारत की दशा बेचैन करने लगी। जब गांधी जी ने ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे राजाओं की निंदा करते हुए भाषण दिया था तो वे इस निंदा से अत्यंत प्रभावित हुए। उस समय उनकी उम्र मात्र 11 साल थी, लेकिन तभी से देश की सेवा का संकल्प उन्होंने ले लिया था। असहयोग आंदोलन के लिए गांधी जी ने पूरे देश से आह्वान किया और 16 साल के नन्हे यानी लाल बहादुर शास्त्री ने पढ़ाई छोड़ देने का निर्णय कर लिया। उनके इस निर्णय से परिवार में हड़कंप मच गया। मां की उम्मीदें टूट गईं, लेकिन शास्त्री जी को तो भारत मां की उम्मीदों पर खरा उतरना था। गांधी जी के विचार उन्हें पुकार रहे थे। सभी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन असफल रहे। छोटे कद के कमजोर से दिखने वाले लाल बहादुर शास्त्री अपने संकल्प के साथ अडिग खड़े रहे। उनके करीबी भी ये जानते थे कि एक बार मन बना लेने के बाद वे अपना निर्णय बदलेंगे नहीं। बाहर से कमजोर दिखने वाले लाल बहादुर अंदर से चट्टान की तरह दृढ़ थे।

वाराणसी के काशी विद्यापीठ में पढ़ते हुए शास्त्री जी महान विद्वानों और देशभक्तों के संपर्क में आए और इस वातावरण का प्रभाव ही था कि वे आजीवन राष्ट्र सेवा का व्रत ले चुके थे। वैसे बचपन से ही उनके विचार दूसरे बच्चों से अलग और सुलझे हुए थे। तभी तो जब वे मुगल सराय के स्कूल में पढ़ते थे तब उनका नाम लाल बहादुर वर्मा पुकारा जाता था। तब उन्होंने अपने हेडमास्टर से निवेदन किया कि उन्हें लाल बहादुर वर्मा न कहकर केवल लाल बहादुर ही पुकारा जाए। जब उनके हेडमास्टर साहब ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो, तब नन्हे से लाल बहादुर ने जवाब दिया, सर मेरा मानना है कि हर इंसान की पहचान उसके काम और अपने नाम से होनी चाहिए, जाति और धर्म सूचक सरनेम से नहीं। और कमाल की बात ये थी कि नन्हे की बातें सुन उनके हेडमास्टर वसंतलाल वर्मा ने स्वयं भी अपने नाम के आगे से अपना सरनेम हटा दिया। आगे चलकर विद्यापीठ द्वारा प्रदत्त स्नातक की डिग्री शास्त्री ही उनके नाम के साथ जुड़ गई और उनका पूरा नाम पुकारा गया लाल बहादुर शास्त्री। सन 1927 में उनका विवाह ललिता देवी के साथ संपन्न हुआ। दहेज के नाम पर वो एक चरखा और हाथ से बुने कुछ मीटर कपड़े लेकर आईं, क्योंकि शास्त्री जी इससे अधिक कुछ चाहते ही नहीं थे। खादी से उनका प्रेम आजीवन रहा और किफायत उनकी जीवन शैली थी। खादी के फटे और पुराने कुर्ते उनकी आलमारी में सहेज कर रखे होते थे। वो कहते, जब नवंबर का महीना आएगा ना, जाड़े के दिन होंगे, तब ये काम आएंगे, क्योंकि तब मैं इनके ऊपर से कोट पहन लूंगा। आलम ये था कि फटे कुर्तों से वो अपनी पत्नी से कहकर रुमाल बनवा लिया करते थे। उनका मानना था कि बहुत मेहनत के साथ खादी बीनी जाती है, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। दरअसल गांधी जी का प्रभाव उन पर बहुत गहरा हुआ था। सन 1930 में जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ते हुए दांडी यात्रा की, तब भी शास्त्री जी इस संघर्ष में शामिल हुए। स्वाधीनता आंदोलन में अपनी सक्रियता के कारण वे कुल 7 वर्ष तक जेल में भी रहे और जब देश आजाद हुआ तब उन्हें अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया और जल्दी ही वे गृह मंत्री के पद पर भी आसीन हुए। सन 1951 में जब वे नई दिल्ली आए तब केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभागों का प्रभार उन्होंने संभाला। रेल मंत्री, परिवहन एवं संचार मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, गृह मंत्री, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण दायित्व उन्होंने निभाए। उनकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही थी। जब वे रेल मंत्री थे तब एक रेल दुर्घटना हुई जिसमें कई लोग मारे गए। शास्त्री जी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उनका जीवन ईमानदारी और उच्च आदर्शों का एक अनुपम उदाहरण है। समय के साथ जीवन बदल ही जाता है, लोग बदल जाते हैं, यहां तक कि समय की मांग की दुहाई देते हुए लोगों के आदर्श भी बदल जाते हैं। लेकिन शास्त्री जी के मन और विचारों पर संस्कारों की जो छाप पड़ी थी वो कभी नहीं बदली। वो उन्हीं जीवन मूल्यों और आदर्शों को भीतर सहेजे अपनी रौ में चलते रहे।

सन 1964 में नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। ये वो समय था जब देश सन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और दूसरी तरफ भयंकर सूखा पड़ने के कारण खाद्यान्न संकट भी सामने था। इन्हीं हालात में सन 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध आरंभ हुआ। ऐसे समय में शास्त्री जी ने दृढ़ और जबरदस्त आंतरिक शक्ति के साथ देश का नेतृत्व और मार्गदर्शन किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के हमलों का जोरदार जवाब दिया। भारत ने 6 सितंबर को पंजाब फ्रंट खोला और भारतीय सैनिक बरकी तक जा पहुंचे। इस स्थिति में अमेरिका से चेतावनी आई कि अगर युद्ध नहीं रुका तो भारत को गेहूं नहीं भेजा जाएगा, लेकिन शास्त्री जी का जवाब था, बंद कर दीजिए हमें गेहूं देना। इसके बाद उन्होंने अक्टूबर सन 1965 को दशहरे के दिन रामलीला मैदान में देश की जनता को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों से एक दिन का उपवास रखने की अपील की और खुद भी व्रत रखना शुरू कर दिया। युद्ध की परिस्थितियों से उबरने और कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने देश को नारा दिया, जय जवान जय किसान। उन्होंने जनता से हर खाली जगह पर खेती करने की अपील की और अपने सरकारी आवास के लॉन में खुद भी सब्जियां बोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मेहनत प्रार्थना करने के समान है और पूरा देश उनके साथ इस प्रार्थना में शामिल हो गया। वो देश में शिक्षा सुधार के हिमायती थे। रोजगार के अवसर बढ़ें इसके लिए मूल्यपरक शिक्षा पर उनका जोर था। वो कहा करते थे कि जो लोग शासन करते हैं उन्हें देखना चाहिए कि लोग प्रशासन पर किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। अंततः जनता ही मुखिया होती है। इन्हीं आदर्शों पर चलते हुए 11 जनवरी सन 1966 को ताशकंद में उन्होंने अंतिम सांस ली। देश सेवा को समर्पित अपने पूरे जीवन में शास्त्री जी उदात्त निष्ठा और क्षमता, दृढ़ संकल्प शक्ति, विनम्र सहिष्णु और उच्च आदर्शों और जीवन मूल्यों से संपन्न एक महान राष्ट्र प्रेमी के रूप में पहचाने गए। सादा जीवन और ईमानदारी की अनूठी मिसाल थे शास्त्री जी। कितने यादगार प्रसंग जुड़े हैं उनके जीवन से। सरकारी खर्चे पर मिली कार का प्रयोग उनके अपने बच्चे नहीं कर सकते थे। एक बार उनके बेटे ने कार चला ली तो किलोमीटर का हिसाब कर उन्होंने पैसा सरकारी खाते में जमा करवाया। इसी तरह एक बार उनके घर पर सरकारी विभाग की ओर से कूलर लगवाया गया। उन्होंने ये कहते हुए कूलर हटवा दिया कि इलाहाबाद के हमारे पुश्तैनी घर में कूलर नहीं है, कभी धूप में निकलना पड़ सकता है, ऐसे आदतें बिगड़ जाएंगी। उनकी टेबल पर हमेशा हरी घास सजी रहती थी। वे कहा करते थे कि सुंदर फूल लोगों को आकर्षित तो करते हैं, लेकिन कुछ ही समय में वो मुरझाकर गिर जाते हैं। घास वो आधार है जो हमेशा रहती है। मैं लोगों के जीवन में घास की तरह ही एक आधार और खुशी की वजह बनकर रहना चाहता हूँ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: दोस्तों नमस्कार, 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने।
2: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने।
1: आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने लोक गायक शशि कुमार पांडे जी। आप मूलतः बघेली लोकगीतों की सौंधी मिट्टी की खुशबू बिखेरते हैं। आकाशवाणी दूरदर्शन के एक ग्रेट कलाकार हैं। भारत सरकार के संस्कृति विभागों द्वारा आयोजित बहुत से कार्यक्रमों में आपसे मंच शोभायमान हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्टूडियो में स्वागत है।
3: धन्यवाद।
1: आज हमारे स्टूडियो का भी सौभाग्य है कि आज हमें बहुत सारे बघेलखंडी लोकगीत सुनने को मिलेंगे। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि आप लोकगीतों को, जैसे कि सभी कहते हैं कि वो अपने समय की सबसे पुरानी और सशक्त कविताएं हैं, आप लोकगीतों का वर्गीकरण कैसे करेंगे?
3: बिल्कुल सही बात है। संगीत की शुरुआत ही मेरे समझ से लोक से ही हुई है। उसको व्यवस्थित रूप तो बाद में दिया गया, जब स्वरों के विषय में लोगों ने सीखना शुरू किया तो फिर व्यवस्थित संगीत शुरू हुआ। बाकी यह प्रकृति से सीधे लोक में आया है। पानी के बहने की आवाज़, पत्तों के डोलने से उत्पन्न आवाज़, प्रकृति से जो ध्वनियाँ निकली वो संगीत के रूप में लोक में आईं
1: जी,
3: और लोगों ने उनको गुनगुनाना शुरू किया और उन गुनगुनाने के साथ में उनको शब्दों के साथ मिलाने का प्रयास किया। तो पहले लोक संगीत था, इसके बाद लोक गीतों का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा मेरा मानना है। लिखा भी कई जगह मैंने इसी तरह से लगभग पाया। अब जब लोक गीत आ गए तो विभिन्न अवसरों पर उनका उपयोग होने लगा
1: जी,
3: और जब विभिन्न अवसरों पर उपयोग होने लगा तो धीरे धीरे लगभग हर अवसर पर, हर अच्छे मौके पर इनका उपयोग शुरू हुआ, लोग गाने लगे और कालांतर में बहुत संख्या हो गई। और आते आते आते आते हमारी पीढ़ी तक ये लोक संगीत आया, जब तब तक इतना इसका क्षेत्र विस्तृत हो चुका था कि अब हमको समझने के लिए या आने वाली पीढ़ी को समझाने के लिए एक तरीका अपनाया गया कि उसको व्यवस्थित रूप से हम समझ सकें और समझा भी सकें
1: जी।
3: तो फिर हम लोगों ने उसको तीन मुख्य भागों में उसको विभक्त किया।

0: पैदा हुआ है उस समय खुशी का गीत, मतलब जो दृश्य हमारे सामने है उसी से संबंधित गीत अगर हमारे मन से निकले वही है लोकगीत।
1: लोक का गीत।
0: इसी तरह से जो संस्कार गीत हैं वो तो ठीक है, उसके अलावा कुछ ऋतुएं हैं हमारे यहाँ, ऋतुओं के आधार पर त्यौहार होते हैं, त्यौहारों के गीत हैं। और तीसरा श्रमिक गीत कह सकते हैं, काम करते हैं खेतों में, खलिहानों में, खदानों में, सड़कों में, कहीं भी दिन भर पसीना बहाते हैं
1: जी
0: और शाम को जब आते हैं तो फिर मस्ती के साथ वो अपने गीतों को गाते हैं और सभी महिला पुरुष मिलकर के उत्सव मनाते हैं, गाते हैं, तो वो हो गया श्रमिक गीत। तो तीन तरह से इसको विभक्त कर सकते हैं।
1: लोकगीतों में हमेशा से राम के जीवन को स्थानीय संस्कृति और जीवन शैली में गहराई से उतरते देखा गया है। प्रभु श्री राम को बघेलखंड ने बहुत आत्मीयता से रिश्तों में बांधा है। और आप अगर आज के इस मुलाकात की, बातचीत की शुरुआत हम प्रभु श्री राम के सोहर से करें तो मुझे लगता है कि हम सबका बड़ा सौभाग्य होगा।
0: बड़ी महत्वपूर्ण बात है और आपने बघेलखंड को इतना मान दिया, इसके लिए हम अभिभूत हैं और इस रेडियो के प्रति आभार भी ज्ञापित करते हैं कि इतना मान दिया और हमारी परंपराओं का, हमारे यहाँ प्रचलित जो लोकगीत हैं उनको आप जानना चाह रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो बघेलखंड है, बघेलखंड में भगवान राम व्याप्त हैं, लोक गीतों में तो व्याप्त हैं ही, लोगों की दिनचर्या में व्याप्त
1: हैं।
0: और हमारे यहाँ हर जन्म लेने वाला शिशु
1: जी
0: राम होता है और हर जन्म लेने वाली कन्या माँ जानकी स्वरूपा होती है।
1: जी
0: इसीलिए जैसे ही खबर आती है के बेटे का जन्म हुआ है, वैसे ही हमारे यहाँ की महिलाएं अनायास ही बोल पड़ती हैं। कोई भी महिला शुरू कर देगी

0: हर गीत में राम है। प्रायः जितने शोहर हैं हमारे यहाँ उनमें अधिकांश गीतों में राम ही हैं, और जन्म में ही नहीं विवाह भी जब होता है तो उस समय का वर चाहे जिस वर्ग का हो, चाहे जिस हैसियत का हो, माली हालत उसकी क्या है ये मायने नहीं रखती है। यदि हमारे यहाँ महाराज साहब के किले में अगर शादी हो रही है तब भी वो वर राम होगा। मतलब हमारे यहाँ के लोक संगीत में भेदभाव नहीं है, वो सबको समान मानता है, चाहे राजा के घर का वर हो
1: जी
0: और चाहे सड़क के किनारे रह रहे एक मजदूर के बेटे का।
1: इतनी अच्छी बात है, समरसता का ये भाव आपको कितनी समृद्धता देता है, कितना मन में सौहार्द दिलाता है। लेकिन सोहर के बाद अगर हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी कि एक अगर आप हमें विवाह गीत, द्वारचार गीत या बन्ना अगर कोई अच्छा सा हमें आज हमारे श्रोताओं के लिए सुनाएं।
0: हम सुनाते हैं, पर इसके क्रम में आपको बता दूं
1: जी,
0: थोड़ा सा मैं धृष्टता करना चाह रहा हूं कि विवाह के पहले हमारे यहाँ उपनयन संस्कार होता
1: जी,
0: है
1: जी,
0: और बघेलखंड में उसको बरुआ या व्रतबंध कहते हैं। तो उसमें भी भगवान राम की ही छवि देखते हैं हमारे यहाँ।
1: जी
0: हमारे यहाँ एक रस्म होती है व्रतबंध के बाद जो बटुक होता है वो काशी पढ़ने जाता है, लेकिन लोक में मान्यता ये है कि भांजा नाराज होके जा रहा है
1: जी,
0: वो रिसाता है, उसको रिस लगती है, गुस्सा लगती है किसी कारण से मामा के ऊपर, तो फिर मामा उसको मनाने जाता है।
1: जी जी जी
0: जब मामा मनाने जाता है तो मामा के साथ में मामी और जो गोतीने पड़ोसीने होती हैं और जो परिवार की महिलाएं होती हैं, कुछ पुरुष वर्ग भी साथ में जाते हैं
1: जी।
0: उस बटुक के।
1: हाँ।
0: तब वो रास्ते में गाते हैं। हमारे यहाँ एक गीत बड़ा महत्वपूर्ण होता है, गैलहाई।
1: हाँ।
0: गैल माने रास्ता।
1: हाँ।
0: और गैलहाई माने रास्ता में गाया जाने वाला गीत। तो जब भी किसी रस्म को पूरा करने के लिए हमारे घर की महिलाएं जाएंगी तो रास्ते में गीत निर्धारित है, वो गाएंगी ही। तो जैसे वो बटुक निकलता है घर से और मामा पीछे पीछे मनाने के लिए चलो, वो घर के बाहर का दृश्य होता है
1: जी।
0: तो मामा पीछे से मनाने चलेगा तो कोई न कोई महिला के मुख से अनायास ही ये गीत फूट पड़ेगा कि

0: ये गीत हमारे यहाँ होता है।
1: और राई नॉन भी उसारते हैं कई जगह,
0: हाँ,
1: हाँ,
0: फिर वो मामा उसको
1: कि
0: मना करके
1: भांजी को
0: लेता है,
1: नजर ना
0: वो
1: लग जाए।
0: कुछ नेक देता है,
1: जी
0: टिक्का लगाते हैं,
1: हाँ
0: राई नॉन उतारते हैं,
1: हाँ
0: ये सारी चीज़ें होती हैं। मामी ये सब करती है और मामा उनको कुछ पैसे या कि अपनी हैसियत के अनुसार कुछ गहना, घड़ी, कुछ भी दे करके, और फिर भांजे को वापस, छोटे होने पर व्रतबंध होने की परंपरा रही है, तो फिर उसको गोदी में लेकर के
1: लेकर
0: वापस।
1: आते हैं। सर मुझे यहाँ ये लगता है कि हम लोग कितने धन्य हैं
0: ये
1: कि हमारे यहाँ पल पल के लिए गीत
0: हाँ
1: हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल
1: हमको
0: बिल्कुल,
1: डीजे वाले बाबू से कहने की जरूरत नहीं
0: नहीं
1: है
0: नहीं
1: कि
0: कोई
1: कोई गाना
0: जरूरत,
1: बजा
0: कोई
1: दो,
0: जरूरत नहीं।
1: हमारे यहाँ तो हर पल पर एक गीत
0: हाँ
1: है।
0: हाँ
1: आप
0: बिल्कुल।
1: देखिए, रूठने पे गीत है, मनाने पे गीत है, और सबसे बड़ी बात कि कोई रूठा राठी होती भी नहीं,
0: नहीं
1: क्योंकि
0: कुछ
1: हमारे
0: नहीं
1: यहाँ तो
0: होता।
1: गारी भी गीत है।
0: अच्छा, कुछ भी होता है तो वो विनोद के लिए होता है,
1: हाँ
0: वो रूठना होता है तो विनोद के लिए, मनाना होता है तो भी विनोद के लिए, अगर कहीं सही सही हुआ है तो।
1: हाँ
0: हमारे यहाँ के गीत इस तरह के हैं कि उसको विनोदपूर्ण बना देते हैं।
1: बिल्कुल। तो द्वारचार का कोई गीत आपको अगर याद आ रहा हो, राम बन्ना जब बनकर आते
0: हाँ,
1: हैं।
0: बन्ना का भी गीत है जिसमें राम है, और जैसा मैंने बताया कि हर वर राम होता है और हर कन्या माँ जानकी स्वरूपा
1: जी
0: होती है, तो उस समय जब बन्ना गाया जाता है तो बन्ना में भी लोग गाते हैं कि अब ये देखिए, ये सारे गीत जो हैं हमारे यहाँ महिला स्वरों में गाए जाते हैं, पर सुनते सुनते मुझे कुछ मुखड़े और कुछ अंतरे याद हैं,
1: जी
0: तो पूरा पूरा गीत मैं नहीं सुना पा रहा हूँ आपको, पर वानगी बतौर हम आपको कुछ गीत
1: बिल्कुल।
0: बताए दे रहा हूँ। तो जैसे ही वर आएगा वैसे कोई न कोई महिला शुरू हो जाएगी।

वर को राम ही मानेंगे। यहाँ तक कि अन्य गीत तो जो होते हैं हमारे यहाँ एक विशेष गीत होता है गारी। तो गारी मजाक वाली जो गारी गाई जाती हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो एक स्वस्थ गारी गाई जाती है उसमें राम के किसी न किसी जीवन के प्रसंग का उल्लेख होता है। एक गारी गाई जाती है हमारे यहाँ, दो लाइन याद आ रही है मुझे,

0: इस तरह से गाड़ी की शुरुआत होती
1: क्या बात है, मन चाहता है कि सुनते ही जाएं, लेकिन राम से बड़ा राम का नाम, तो क्यों ना आपसे लगे हाथ हम ये भी जान लें कि बघेल खंड में कहते हैं कि राम कण कण में व्याप्त हैं, आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे?
0: बिल्कुल सही सुना है आपने, और जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं। और रेडियो के लगभग हर श्रोता को ये मालूम होगा कि भगवान राम की तरुणाई के 11.5 वर्ष बघेलखंड में ही बीते हैं। वनवास का अधिकांश समय उन्होंने चित्रकूट में व्यतीत किया, और चित्रकूट परिसर में ही हमारा बघेलखंड निवास करता है। तो स्वाभाविक है कि वहाँ के लोकगीतों में तो राम व्याप्त हैं ही, वहाँ के संस्कारों में राम हैं, और वहाँ की संस्कृति में राम हैं, और यहाँ तक कहें कि वहाँ की दिनचर्या में राम व्याप्त हैं, वहाँ के खेतों में, वहाँ के खलिहानों में, वहाँ के फसलों में, जहाँ भी आप देखें राम हैं, वहाँ व्याप्त हैं राम, जंगलों में, शहरों में, पहाड़ों में राम है वहाँ निश्चित रूप से। इतना हमारे यहाँ के लोकगीतों में और अन्य प्रसंगों में जो राम हैं, इतना मैं समझता हूँ उसका मुख्य कारण यही है कि 11.5 वर्ष, और वो भगवान राम के 11.5 वर्ष जितना हम लोग पढ़ सके, सुन सके, एक

0: सी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जैसा
1: जी जी
0: बनना चाहता है, उनके सत्कर्मों को देख कर आगे बढ़ना चाहता है। निश्चित रूप से आपसे जो बात कर करके बीच में जो आपने लोकगीतों की छोटी छोटी सी फुलझड़ियाँ हमारे लिए उजास बिखेरी है, वो बहुत ही मज़ेदार रही हैं। एक गारी मुझे भी याद आती है, मेरी दादी कहती थी
1: जी
0: कि राम जब बिहाने गए तो वहाँ की महिलाएं चाहती नहीं थी कि ये वापस जाएं अपने ससुराल, तो कहती थी कि तुम्हारा भैया इतना करुआ है, उसे हम गोरा कर देंगे, यहीं रुक जाओ।
1: क्या
0: तो
1: बात.
0: मतलब आप देखिए
1: जी
0: कि लोकगीतों में कहीं ना कहीं साहस भी होता है। आप सोच सकते हैं कि भगवान से कोई ऐसा ऐसा निवेदन कर सकता है कि तुम्हारे भाई करुआ हैं, यहाँ रुक जा, लेकिन फिर भी लोक की यही खासियत
1: हाँ
0: है
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल.
0: बड़ी मजेदार सी ये बातें होती हैं आपसे।
1: मैं ऐसा समझता हूं
0: हाँ
1: कि राम इतने नजदीक हो गए हैं व्यक्ति के,
0: हाँ
1: जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बहुत नजदीक हो जाता है तब औपचारिकताएं बहुत मायने नहीं रखती
0: नहीं
1: हैं,
0: रखती।
1: औपचारिकताएं रह ही नहीं जाती
0: हाँ
1: इतना अपनापन हो जाने के बाद. और राम से इतना नजदीक लोग अपने आप को मान लेते हैं बहुत जल्दी, उनका व्यक्तित्व इस तरह का है
0: हाँ
1: कि कोई कुछ भी बोल सकता है, उनको कुछ कहना तो है नहीं, मुस्कुराना है उनको
0: हाँ
1: भगवान राम को.
0: जी
1: तो ये आपकी दादी जी का जो प्रसंग है ये निश्चित रूप से बिल्कुल सही बात है. तो क्या वो लोग गाते थे
0: वो
1: उसमें?
0: यही कहती हैं कि वो निवेदन जो कर रही हैं वो इसी तरीके से कर रही हैं
1: जी
0: कि
1: जी
0: तुम्हारे भाई तो पल पल पे गुस्सा होते हैं, तो हम उनका गुस्सा ठंडा कर देंगे।
1: गुस्सा
0: उसके
1: ठंडा
0: अर्थ आपको बता रही हूँ कि जो अंतरे में वो सुनाती थी, वो जैसे हम लोग कभी आपस में झगड़ते थे और ये कहते थे कि हमारे हिस्से का उसने खा लिया, तो हमेशा कहती थी राम जी की चिड़िया राम जी का
1: राम
0: खेत।
1: जी का खेत.
0: तो आप देखिए कि जीवन में ये कहावतें कितनी उतरी हुई हैं,
1: सही बात है.
0: मतलब आप अगर बुरा हो जाए तो भी प्रभु के ऊपर छोड़
1: हाँ
0: दीजिए,
1: हाँ हाँ
0: अच्छा हो तब तो प्रभु का है ही
1: है ही
0: कृपा।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही
0: ये
1: बात.
0: लोक से ही ताकत मिलती है।
1: हाँ बिल्कुल
0: ऐसे
1: बिल्कुल.
0: में कोई और गीत अगर आपको याद आ रहा हो हमारे श्रोताओं के लिए।
1: अब देखिए गीत हमारे यहाँ के, जैसे मैंने बताया कि लोकगीतों में जितने भी गीत हैं हर गीत में भगवान राम है. ये तो अभी तक जो अपन चर्चा कर रहे थे ये संस्कार गीत थे. हमारे यहाँ के जो ऋतुपरक गीत हैं
0: जी
1: और जो श्रम गीत हैं उनमें भी राम है. जैसे ऋतुपरक गीतों में अगर चलें तो चैती हमारे यहाँ गाते हैं. चैती वैसे सेमी क्लासिकल है, बनारस का चैती और हमारे पास ये मशहूर है. अवध में भी गाते हैं चैती, लगभग तमाम गाते हैं, तो वो सेमी क्लासिकल है. हमारे यहाँ का लोक गीत है चैती.

0: ये हमारे यहाँ गाते हैं, ये तो हिंदी में है, लोक भाषा में भी, बघेली में भी, भगवान राम जैसे, और भी गीत इसके बाद चले अगर श्रम गीतों में, श्रम गीतों में भी राम है। हमारे यहाँ एक सुआ गीत गाते हैं लोग, सुआ गीत में एक प्रसंग आता है जब रावण सीता का हरण करता है
1: जी,
0: तब गाते हैं, मस्ती के साथ उसमें डांस करते हैं। अब उनके लिए राम का नाम महत्वपूर्ण है, राम का चरित्र महत्वपूर्ण है, उनको उसी में इंजॉय करना है, उसी में आनंद लेना है। अब वो प्रसंग खुशी का है कि गम का, इससे उनसे बहुत लेना देना नहीं है। तो वो जब सीता का हरण करता है रावण, तब वो गाते हैं,

0: बैठे। अब उसको ये गाने के उतना वो भाव में तल्लीन हो जाएंगे कि इस गाने की गति जो है वो बढ़ती जाएगी, और इतना बढ़ेगी कि सामान्य श्रोता अगर उनके बीच में है तो उसके पैर थिरके बिना नहीं रह जाएंगे। अगर थोड़ा भी संगीत उसके अंदर है तो फिर वो बड़े स्पीड में गाएंगे, सिया हरे रामन जाए सिया रो में रथ पर बैठे, सिया हरे रामन जाए सिया रो में रथ पर बैठे। इन्हीं राम के गीतों को गाते गाते वो शाम से सुबह कर देंगे बड़ी मस्ती, और सुबह फिर से वो इसी तरह से श्रमिक गीत। तो एक और मुझे ध्यान आ रहा है, हमारे यहाँ का एक विलुप्त प्राय गीत रहा है, उसको मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने बचपन में कभी सुना था
1: जी,
0: दृश्य देखा था। एक गीत होता है मलेला, उसको हमारे यहाँ बघेलखंड में ही कुछ हिस्से में उसको टप्पा बोलते हैं। तो जब कभी डंफर नहीं हुआ करते थे, बाड़ी वाले ट्रक हुआ करते थे, तो खदानों में गिट्टी लेबरर लोड करते थे और वही जा करके फिर उसको दूसरी जगह अनलोड करते थे। तो जब ट्रक चलता था उसके गिट्टी के ऊपर वो बैठ जाते थे और उसके ऊपर बैठे बैठे फिर रास्ते में वो मस्ती करते थे और गाते थे। तो उस समय वो मलेला गीत गाते थे
1: जी।
0: तो उसकी शुरुआत वो करते थे राम से।
1: हाँ।
0: वैसे जो मलेला गीत है प्रायः देखने में आया है, श्रृंगार रस का गीत है, कभी संयोग श्रृंगार उसमें दिखता है, कभी वियोग श्रृंगार दिखता है, प्रायः दिखता उसमें श्रृंगार रस है। लेकिन उसकी शुरुआत जो है वो राम नाम से होती है। तो वो नायिका पूछती है

0: शुरुआत वहां से होगी।
1: क्या बात है, अभिवादन से लेकर संदेशा पहुंचाने तक हर बात में राम व्याप्त है।
0: राम व्याप्त है,
1: कितनी अद्भुत महिमा है। और आज की ये बातचीत बहुत ही अच्छी रही है। एक और बात मुझे ऐसे में याद आ रही है, क्योंकि जब लोग की बातें छिड़ती हैं तो आपको भी अपनी पुरानी यादें आती हैं। हमारी दादी ये भी कहा करती थी कि सृजन से विसर्जन तक राम है।
0: हाँ बिल्कुल है।
1: आप देखिए कि किसी को कोई आपने जैसे बोला कि राम राम कहे हो,
0: हाँ,
1: बस ये है कि ब्रिज में वो शब्द अलग हो जाते हैं, तरीके अलग हो जाते
0: बिल्कुल,
1: हैं,
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: लेकिन सब वही व्याप्त है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, और लोकगीतों को जिस तरह से आपने समझाया है कि किस तरह से श्रृंगार गीत, चाहे वो संयोग श्रृंगार हो, वियोग श्रृंगार हो, ऋतु गीत, उपनयन संस्कार तक के गीतों पर बात हो गई, ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप आए
0: मैं
1: स्टूडियो।
0: तो अभिभूत हूँ कि लोक गीतों को इतना मान दिया आपने। भगवान राम तो सर्वमान्य हैं,
1: जी
0: और कुछ लोगों के मान देने या न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता
1: जी
0: उनकी प्रतिष्ठा में, लेकिन लोक गीतों को मान दिया है आपने, राम से जोड़ा उनको, तो हमारा पूरा बघेलखंड और बल्कि पूरे भारतवर्ष का जो लोक जगत है,
1: जी
0: खासकर लोक गायन का जगत, उसकी तरफ से मैं आभार ज्ञापित कर रहा हूँ रेडियो का।
1: आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं सर। हम एक बार पुनः अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि लोकगीत हमारी विरासत हैं, हमारी मिट्टी है, और अपनी जड़ों से खुद को जोड़े रखना, इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं होता। तो अगर आपको भी ऐसे कुछ अनछुए गीत नज़र आ रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, तो उन्हें लिखिए और अपने अगली पीढ़ी में पहुँचाने का कष्ट कीजिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमें भारतीय ज्ञान परम्परा को बताती हैं, भारतीय मनीषियों को बताती हैं, तो इन्हें बचा कर रखिए। सर पुनः एक बार आपका बहुत धन्यवाद। आप स्टूडियो में आए और आपने हमें इतने अच्छे अच्छे गीतों के साथ कहानी की तरह सारी बातें बताई, बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आमने सामने में, बघेलखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक शशि कुमार पांडे जी के साथ ये खास बातचीत। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और आपके साथ ही मैं आपकी दोस्त मनीषा। आशा है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपके कोई और भी सुझाव है तो हम सहर्ष उसका स्वागत करते हैं। अपने सुझाव देने के लिए हम आपको अपना ईमेल आईडी बता दें, radioazadhind@gmail.com। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
2: आमने सामने,
3: रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुन सकते हैं, प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ही राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: 2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के।

0: آداب سامعین، 90.8 MHz پر یہ ریڈیو آزاد ہند ہے، دیش کا چینل دیش کے لیے، اور میں غوثیہ خان سبین آپ کی ریڈیو دوست حاضر ہوں اردو شعر و سخن کے پروگرام واگرتھ میں۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم پروگرام واگرتھ میں ہندی ساہتیہ اور اردو ادب کے شعرا کو لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں، اور اسی سلسلے میں آج ہمارے ریڈیو آزاد ہند کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ملک نوید۔ آپ ماشاءاللہ بھوپال ہی کیا ہندوستان کے مشہور شاعر اور ادیب ہیں۔ اتنی کم عمری میں بھوپال کے اس فرزند نے استادانہ ہنر حاصل کیا ہے اور نام اور شہرت حاصل کی ہے، جس کے لیے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں اور اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔
1: شکریہ۔
0: جناب ملک نوید، آپ ہمارے سامعین کو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی شاعری کی شروعات کیسے ہوئی، یا یوں کہیے کہ آپ کا رجحان شاعری کی طرف کس طرح ہوا؟
2: شاعری کی شروعات کا میں صحیح اندازہ تو نہیں ہے مجھے، کیونکہ میرے والد مرحوم قاضی سید اسرار احمد جذبی اور میری والدہ محترمہ نجمہ پروین مرحومہ دونوں شاعر اور شاعرات تھیں، اور اس وجہ سے میں نے بچپن سے شاعری کے ماحول کو دیکھا اور شاعری میں پلا بڑھا ہوں۔ باقاعدہ شاعری میری 1990 کے آس پاس ہے، اور اس کی وجہ یہ رہی، شاعری کی رجحانات میرے یوں رہے کہ میرے گھر میں میرے والد مرحوم طرحی نشستیں منعقد کرتے تھے، جس میں ہر ماہ ایک کسی بڑے شاعر کے مصرعے کو دیا جاتا تھا، جس پر بہت سے شعرا اس نشستوں میں شرکت کرتے تھے، مقابلے جیسا ماحول ہو جاتا تھا، بہت ادبی لوگ اس میں، بڑے بڑے بھوپال سے بھی تشریف رکھنے والے لوگ، نامور ہستیاں، اور بھوپال کے اطراف سے میں موجود بہت سے اچھے شاعر اور شاعرات اس میں تشریف لاتے تھے، اور ایک بہت اچھا ماحول بنتا تھا۔ تو میں بچپنے سے میں نے یہ ماحول دیکھا، وہیں سے مجھے شاعری کا شوق ہوا۔
0: یعنی یوں کہا جائے کہ اتنا بہترین ماحول آپ کو شاعری کی شروعات کے لیے حاصل ہوا۔ تو ہمارے سامعین کا حق بنتا ہے کہ آپ نے جو پہلا کلام جو کہا ہو، اگر آپ کو یاد ہو تو اس کی چند لائنیں ضرور سنائیں۔
2: پہلا کلام تو میں ایسے چھوٹے وغیرہ جستا شعر کہتا رہتا تھا، لیکن ایک مرتبہ ایک مصرع طرح دیا گیا تھا کہ ارباب طرب آنکھ اٹھانے نہیں دیتے، تو اس پر میں نے ایک گرہ لگائی۔ سب سے پہلے میں نے، مجھے جو یاد ہے وہ گرہ یاد ہے، میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ جھکتی ہی چلی جاتی ہیں ہر سانس پہ پلکیں، جھکتی ہی چلی جاتی ہیں ہر سانس پہ پلکیں، ارباب طرب آنکھ اٹھانے نہیں دیتے۔
0: کیا بات، بہت عمدہ،
2: شکریہ۔
0: اور شروعاتی دور کی کوئی غزل اگر آپ کو یاد ہو، جو آپ کو بہت پسند ہو، آپ کے دل کے قریب ہو۔
2: جی ضرور پیش کرتا ہوں۔ ایک طرحی نشست ہوئی تھی جس کا میں مصرع طرح تھا کہ اس کے دشمن بہت آدمی اچھا ہوگا،
0: جی بہت،
2: تو اس پر میں نے کچھ شعر کہے تھے۔ اس میں ایک شعر کہا تھا کہ آدمی کے ہیں خیالات ستاروں سے بلند، چاند بھی سوچ کے یہ بات تو لرزہ ہوگا۔
0: کیا بات!
2: پھر جب میں نے یہ شعر کہا تو وہ شعرا جو حضرات تھے، میں مشاعرے میں جب باقاعدہ نہیں جاتا تھا، تو انہوں نے بشیر بدر صاحب کا ایک مصرع دیا، دھوپ کھیتوں میں اتر کر زعفرانی ہو گئی، وہ مجھ سے کہا کہ آپ اس کے اوپر کچھ شعر کہیے، تو میں نے اس پر غزل کہی تھی۔ اس کے دو شعر، ایک مطلب ایک شعر آپ کو نظر کرتا ہوں کہ ہر نئی تصویر دھندلا کر پرانی ہو گئی، ہر نئی تصویر دھندلا کر پرانی ہو گئی، روشنی آنکھوں میں اتری تھی کہ پانی ہو گئی۔ ہر نئی تصویر دھندلا کر پرانی ہو گئی، روشنی آنکھوں میں اتری تھی کہ پانی ہو گئی۔ اور شعر یوں ہے کہ سوچ صدیوں سے کسی کی فرش پر مرکوز تھی، سوچ صدیوں سے کسی کی فرش پر مرکوز تھی، ایک ذرا وسعت ملی تو آسمانی ہو گئی، ایک ذرا وسعت ملی تو آسمانی ہو گئی۔ شکریہ،
0: بہت بہت عمدہ آپ نے کلام سے نوازا ہمارے سامعین کو۔ جناب ملک نوید، میں آپ سے اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ چونکہ خود ایک استاد شاعر ہیں اور آپ کا رجحان ہر طرح کی شاعری میں ہے، یعنی آپ कई बार कई दफ़ा जब आप गज़ल कहते हैं तो बहुत तखयल और बहुत गहरी बात कह जाते हैं, और कई मरतबा आप बहुत सादगी से अपनी बात को कह जाते हैं। कहीं आपका रंग रूमानी हो जाता है, कहीं कुछ तंज होता है, कहीं कोई सीख होती है। तो ये सारी खूबियाँ और ये सारी बेशुमार अलामतें जो कि आपके कलाम में मौजूद हैं, तो मेरा ख़ास सवाल आपसे ये है कि आप हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि आप किन किन ख़ास शोराओं से मुतासिर हैं, और कहीं कोई किसी का कुछ असर या कोई रंग आपने कहीं से कुछ लिया है, या आप अपने दिल की जो बात है वो आप जाहिर करते हैं।
2: ये दरअसल एक शायरी जो मुझे विरासत में मिली अपनी जगह एक हकीकत है, लेकिन इसके संवारने में और इसके निखारने में मेरे उस्ताद मरहूम इशरत कादरी साहब का बहुत ज़्यादा मतलब योगदान या उनका बहुत तआवुन रहा। उन्होंने मुझे मेरे ऊपर मेहनत की और मुझे बताया कि शायरी किस नहज पर की जाना चाहिए और किस तरह से की जाना चाहिए। शायरी दरअसल इस्तियारात और इशारे किनायों की ज़बान का इस्तेमाल और मुहावरों का बहुत खूबसूरती से और सलीके से मिस्रों में ढालना, मुहावरों को वहाँ से शायरी की शुरुआत मैंने सबसे पहले अगर मुतासर हुआ तो मैं अल्लामा दाग देहलवी की शायरी से मुतासर हुआ। अल्लामा दाग देहलवी की शायरी में वो सारे खूबियाँ यकजा हैं जो एक शायर के यहाँ होना बहुत ज़रूरी हैं। उनके यहाँ मुहावरों का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल है, ज़बान बहुत सलीस है, बेहद लहजा उनका सलासत और रवानी वाला है। पढ़ते चले जाओ ऐसा महसूस होता है कि जैसे पानी बह रहा है बिल्कुल रफ्तार रफ्तार रवानी के साथ। फिर मैंने वहाँ से दाग को पढ़ा, दाग को पढ़ने के बाद अल्लामा इकबाल जो हैं उनके फ़लसफियाना शायरी से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। इस्लामी रुझानात और देश हुब्बुल वतनी का पैगाम भी उन्हीं की शायरी से मैंने महसूस किया, और उसे महसूस करने के बाद अपने जहन में उसे रखा। धीरे धीरे मैंने फिर गालिब की तरफ आया, और गालिब का बाकायदा मैंने एक डेढ़ साल तक मुस्तकिल तौर पर रोज़ाना उनकी गज़ल याद को पढ़ता रहा, एक रूटीन बनाकर उसको याद कि मैंने मुझे तकरीबन आधे से ज़्यादा एक वक्त ऐसा था कि दीवाने गालिब हिफ्ज हो गया
0: जी। यानी मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि एक उम्दा शायर बनने के लिए या एक मकाम हासिल करने के लिए जितना ज़्यादा पढ़ा जाए वो लिखने वाले के लिए बेहतर होता आएगा।
2: इसके अंदर दो बातें हैं
0: जी।
2: एक बात तो ये है कि आपको शायरी करना है तो सबसे पहले तो यह कि आपको असातिज़ा का कलाम पढ़ना पड़ेगा। उससे आपको ये मालूम होगा कि आपको किसी ख्याल को बयान करने के लिए क्या सलीका चाहिए और किस बिहर में कौन से अल्फाज आसानी से बयान किए जा सकते हैं। मैं उन अल्फाज को ख्यालात में मतलब उन ख्यालात को अल्फाज में ढाला जाता है। लेकिन जहाँ तक अब आपकी बात है कि आपने असातिज़ा से पढ़ के ये तो मालूम कर लिया कि साहब शायरी इस तरह होती है, लेकिन उसके लिए अब यह है कि शेर जो है वो एक सोचा समझा कलेमा होता है। उस पहले हमारे जहन में एक प्लाट बनता है, उस प्लाट को हम अरूस की मुरव्वजा बहर में अपने ख्यालात को अल्फाज का पेरहन देकर बयान करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए, पहले तो हम असातिज़ा का मुतालिया कलाम का, और दूसरा ये कि हमारा ज़ाती मुतालिया जो हमें अखबारात, रसायल, नावल और जितने भी जहाँ जहाँ ज़खायर हैं इल्म के और हर शोबा हाय ज़िंदगी का इल्म की कमा हक्कहू मालूमात हमारे लिए ज़रूरी है। शायर तो बन ही नहीं सकता असल में, सही शायर तो वही है कि जिसे जिस शोबे के ऊपर या जिस मज़मून के ऊपर वो कलम उठाए तो उस मज़मून का हक अदा कर दे।
0: बेशक आपने ये बहुत उम्दा बात कही है, और हमारे सुनने वालों के लिए तो एक बहुत खूबसूरत पैगाम हो गया और एक बहुत गहरी बात हो गई। आपने इतनी बारीकी से और इतनी सादगी से ये सारी बातें समझाई, और यहाँ पे मैं आपकी गज़ल का एक शेर इजाज़त चाहूँगी आपसे कि ये तो अच्छा हुआ सूरज है खुदा के बस में, ये तो अच्छा हुआ सूरज है खुदा के बस में, वरना कुछ लोग सवेरा नहीं होने देते। तो माशाल्लाह आपके एक से बढ़ के एक उम्दा कलाम और एक से बढ़ के एक उम्दा आपके शेर मौजूद हैं, और हम सब अक्सर और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा होता है कि आपके जो कलाम है वो बहुत पसंद किए जाते हैं, और माशाल्लाह से आपके बहुत से शागिर्द हैं, और आप बखूबी धीरे से आप उनकी इस्लाह करते चलते हैं और आप उन सबको नई राह दिखा रहे हैं। तो ये सब इन सब खूबियों के साथ मैं आपको फिर मुबारकबाद दूंगी कि इतना बेहतरीन काम आप अंजाम दे रहे हैं। जनाब मलिक नवेद, आप हमें ये बताइए कि जदीदी शायरी या रिवायती शायरी, इसमें से आपको ज़्यादा पसंद क्या है?
2: जदीद शायरी की अपनी अफादियत है
0: जी।
2: लेकिन रिवायती शायरी जो हो चुकी है
0: जी।
2: वो हमारी रूह है।
0: रूह है जी, बेशक।
2: रूह में दिल कल्बी शायरी अगर हम कहेंगे
0: जी।
2: तो वो रिवायती शायरी है
0: जी।
2: और जदीद शायरी जो है वो हमारे जहन को झंझोड़ सकती है।
0: हाँ, बेशक।
2: हमारे दिल को मुतासर
0: तो
2: नहीं कर
0: आप
2: सकती।
0: ये बताएं कि आपको ज्यादा पसंद क्या है?
2: मैं दोनों के बीच के इम्तिजाज की शायरी करता हूँ
0: जी।
2: यानी मेरी शायरी में जहाँ रिवायती लबो लहजे की झलक आपको नज़र आएगी, वहीं जदीद अंदाज और जदीद उसलूब के जो तकाजे हैं
0: हाँ।
2: उनकी भी नुमाइंदगी कहीं कहीं आपको खाल खाल भी नज़र आएगी, कहीं बहुत ज़्यादा भी नज़र आएगी।
0: जी हाँ, बिल्कुल, बेशक। वही मैंने अभी जो कहा था कि कहीं सादगी और कहीं तखय्युल, कहीं तंज और कहीं रूमानियत सब नज़र आती है।
2: तो जिस वक्त शायर गज़ल कहता है या कोई शेर कहता है, उस वक्त की उसकी कल्बी कैफियत क्या होती है, उस कैफियत के ज़ेर असर ही शेर होता
0: है।
2: तो इसलिए कभी सादगी भी होती है शेर में,
0: हाँ।
2: कभी ऐसा होता है कि झुंझलाहट होती है एक समाज के किसी अच्छे वो बुरे काम को देखकर उसको ये सोचा जाता है कि हम इसको अच्छाई में किस तरीके से तब्दील करें, तो जब वो अच्छाई में तब्दील नहीं होता तो एक झुंझलाहट आ जाती है शायर को, क्योंकि उसकी एक अपनी दुनिया है और उस दुनिया में सब कुछ उसे अच्छा ही अच्छा नज़र आता है। वो ये चाहता है कि बस जो मैं तसव्वुर कर रहा हूँ, जो मैं बयान कर रहा हूँ, वैसी दुनिया चले। तो इसलिए शायरी के अंदर कभी कभी झुंझलाहट भी होती है, कभी
0: हाँ।
2: तीखापन भी होता है, कभी तंज भी होता है, कभी अब इससे अलग हट के हमारे जो रिश्ते हैं
0: हाँ।
2: उन रिश्तों से कता ताल्लुक तो कभी कर ही नहीं
0: सकता
2: शायद
0: हाँ।
2: तो इसलिए कभी माँ की बात आ जाती है, कभी महबूबा की बात आ जाती है, कभी बीवी की बात होती है, कभी बच्चों की बात होती है। गमे हाय रोजगार भी हमारी शायरी में
0: शामिल
2: है, गमे जिंदगी भी शामिल है। तो आज शायरी तो की वसतें तो लामहदूद हैं, उसकी कोई हद नहीं है।
0: बेशक,
2: कौन कब क्या बयान कर जाए ये तो बस।
0: अच्छा जनाब नवेद मलिक, आप अब अपनी कोई उम्दा गजल हमारे सामने इनको सुनाएं या जो आपको पसंद हो।
2: मैं आपको एक गजल अभी सुना देता हूँ कि मतलब है कि शाख से टूट कर गिरा हूँ मैं, शाख से टूट कर गिरा हूँ मैं, बेहवा हो के रह गया हूँ मैं, बेहवा हो के
0: रह
2: गया हूँ मैं, तजुर्बे कर रहे हैं सब मुझ पर, तजुर्बे कर रहे हैं सब मुझ पर, एक वस्तु बना हुआ हूँ मैं जिसको उलझा के रख दिया तुमने, जिसको उलझा के रख दिया तुमने, हाँ उसी डोर का सिरा हूँ मैं, हाँ उसी डोर का सिरा हूँ मैं, हर कदम करबला का मंजर है
0: जी।
2: हर कदम
0: करबला
2: का मंजर है, किन यजीदों में आ फंसा हूँ मैं,
0: हर
2: कदम करबला का मंजर है, किन यजीदों में आ फंसा हूँ मैं, देखिए मुझको माँ की नज़रों से, देखिए मुझको माँ की नज़रों से, कितना मासूम व बेखता हूँ मैं, कितना मासूम व बेखता हूँ मैं। और इसका मकता था कि हद में रहने की आरजू में नवेद, हद में रहने की आरजू में नवेद, मकता कि हद में रहने की आरजू में नवेद, हद से बाहर निकल गया हूँ।
0: क्या बात, बहुत उम्दा,
2: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत उम्दा गज़ल आपने सुनाई। उर्दू अदब के सिन्फ़ सुखन में कई किस्म की सिन्फें हैं, आपका रुझान किस तरफ ज्यादा है, गजल में या नज्म में या जो भी आप
2: देखिए? आज उर्दू अदब की जो असनाफ सुहन है
0: हाँ।
2: उनमें दरअसल मामला ये था कि पहले बादशाहत थी
0: जी।
2: तो उस बादशाहत की वजह से जो शुअरा थे उस जमाने के, उनकी रोजी रोटी का जरिया बनी हुई थी शायरी, और वो जो है कसीदे लिखते थे बादशाहों पे, उमरा पे, बड़े बड़े लोगों पे, इसलिए कसीदा गोई का एक रिवाज बहुत ज्यादा था। अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, अब
0: हाँ।
2: तो बादशाहत ही नहीं है, अब तो उसके बाद मरसियों का एक दौर था, मीर अनीस, मीर दबीर के बड़े मशहूर मरासी लिखे गए हैं, या अल्लामा इकबाल ने दाग दहलवी का मरसिया कहा, तो मरसियों का भी अब रिवाज तकरीबन ख़त्म हो गया है, अब रहा है क़ितात और गज़ल और नज़्म। तो क़ितात कहे जा रहे हैं, लेकिन अब क़ितात में भी एक ये बात पैदा हो गई है कि लोग क़ते में जो मतला या जो चारों मिसरे या छः मिसरे या आठ मिसरे एक दूसरे से मरबूत होते थे वो ख़त्म हो गया है रिवाज। अब एक मतला और एक शेर, उसको लोग क़िता समझने लगे हैं, ये बड़ी ख़राबी है। जबकि क़िता जो था ऊपर से लेके एक मज़मून के तहत पूरा बयान किया जाता था, चारों मिसरों में आखिर में आके एक बात होती थी जो आखिरी मिसरे में बावज़न तरीक़े से कही जाती थी, यही रुबाई का है। तो रुबाई की भी एक मुरव्वजा फार्मेट है, इसलिए लोग रुबाई से ज़रा दूर रहते हैं, लेकिन रुबाई भी कही जाती है। मुझे जो है असनाफ़ सुखन में गज़ल और नज़्म ने बहुत मुतासर किया है, ख़ास तौर से गज़ल में ये कैफियत होती है कि उसके एक शेर में जो नज़्म में पूरी बात 17-18 अशार में या 20 मिसरों में या 40 अशार में कही जाएगी, वो गज़ल के एक शेर में दो मिसरों में बयान कर दी जाती है। तो इसलिए बहुत आसान भी है और ये मकबूल आम सिनफ़ सुखन है उर्दू शायरी की, ज़ाहिर है कि मकबूल आम सिनफ़ सुखन है, इसलिए गज़ल की तरफ ही रुझान मेरा ज़्यादा है।
0: लेकिन अभी आपने कहा कि आप नज़्म भी कहते हैं।
2: मैं आपको अपनी एक नज़्म मैंने कही थी तअस्सुब, उसके दो बंद आपको पेश करता हूँ। बंद है कि फ़िक्र है मुझको तअस्सुब को मिटाऊँ कैसे, फ़िक्र है मुझको तअस्सुब को मिटाऊं कैसे, देश को अमन का गहवारा बनाऊं कैसे, आग नफ़रत की लगी है वो बुझाऊं कैसे, आग नफ़रत की लगी है वो बुझाऊं कैसे, दिल से दिल अहले वतन का मैं मिलाऊं कैसे, फ़िक्र है मुझको तअस्सुब को मिटाऊं कैसे। इसका दूसरा बंद है कि हमसे पूछो ज़रा तुम फ़िरका परस्तों का मिजाज, हमसे पूछो ज़रा तुम फ़िरका परस्तों का मिजाज, इनका दावा है वफ़ादार वतन ये हैं आज,
0: क्या बात,
2: इनका दावा है वफ़ादार वतन ये हैं आज, ये तो मज़लूम से सांसों का भी चाहे हैं खराज, ये तो मज़लूम से सांसों का भी चाहे हैं खराज, इनकी कोशिश है कि तकसीम हो फ़िरक़ों में समाज, फ़िक्र है मुझको तअस्सुब को मिटाऊँ कैसे, देश को अमन का गहवारा बनाऊँ कैसे। शुक्रिया,
0: बहुत बहुत उम्दा नज़्म आपने सुनाई हमारे सामेईन को। जनाब मलिक नवेद, आपने अभी हमारे सामेईन को बताया गज़ल के मुतालिक, नज़्म के मुतालिक, आपने नज़्म भी बहुत उम्दा नज़्म सुनाई आपने, और रुबाई के मुतालिक भी आपने चंद बातें कहीं, तो उसके बारे में और तफसील से आप कोई बात बताना चाहें या कुछ और बताना चाहें तो आप ज़रूर बताएँ।
2: रुबाई जो है वो बहरे हज़ज की बहर में कही जाती है और उसमें दो नक्शे होते हैं
0: जी।
2: एक होता है अखरम और एक होता है अखरब, जिसमें 12 बहरें निकाली गई हैं, 12 वज़न निकाले गए हैं अखरम के और 12 वज़न निकाले गए हैं अखरब के। रुबाई को चार बेती या तिराना भी कहते हैं
0: जी।
2: इसमें चार मिसरे होते हैं और शुरा हजरात जो है जो बहुत ज़्यादा मशक़े सुखन कर चुके होते हैं वही ज़्यादातर रुबाई कहते हैं
0: जी।
2: और रुबाई के लिए ये भी लाजमी नहीं है कि इसके चारों मिसरों में वज़न एक जैसा हो
0: जी।
2: अलग अलग एक ही बहर में अलग अलग वज़न भी हो सकते हैं, आखिरी रुकन अलग अलग हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक जैसा हो। और रुबाई में एक बात का जो ख़ास ख्याल रखा जाता है वो ये है कि इसके तीसरा मिसरा जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा और दमदार और मुअस्सर तरीके से कहा जाता है और वो एक दावा होता है, और चौथे मिसरे में दलील पेश कर की जाती है। जब दलील सामने आती है तो फिर सामईन या कारी चौंक पड़ता है, क्योंकि रुबाई के लिए बहर और वज़्न मखसूस हैं, इसलिए शुरा हजरात इसमें कोशिश कम करते हैं इस मैदान में। वैसे आम तौर पर जो रुबाई का एक फार्मेट है उसे लाहुल वलाकुव वता इल्ला बिल्ला से बयान किया जाता है, और भी बहुत से शुरा ने अपने अपने तरीक़े से रुबाई को समझाने की कोशिश की है, लेकिन रुबाई जो है उसका एक अपना मिजाज होता है और ये सुन ज़्यादा मशक सुखन के बाद ही शायर इसकी तरफ मुतवज्जो होता है
0: जी। जैसे अभी आपने रुबाई के मुतालिक बताया, आप ये भी बताएं कि जो एक आजकल एक खास एक ट्रेंड सा चल गया है आज़ाद नज़म कहने का, कि भाई हम तो आज़ाद ज़मीन पर ही आज़ाद नज़म कहते हैं, तो उसके मुतालिक आप कुछ बताना चाहें या कोई पैगाम देना चाहें।
2: देखिए, आज़ाद नज़म जो होती है वो भी दरअसल जो अरूज के रुकन ते हैं उन्हीं पर होती है
0: जी।
2: लेकिन उसमें हर मिसरे में ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे ऊपर के मिसरे में चार बार फाइलुन आया है तो नीचे या उसके सारे उस नज़्म के सारे मिसरों में चार चार बार ही फाइलुन आएगा।
0: अच्छा।
2: उसमें ये होता है कि किसी मिसरे में तीन बार भी फाइलुन आ सकता है, किसी मिसरे में एक बार भी फाइलुन आ सकता है। मसलन मखदूम मोहिद्दीन की एक बहुत मशहूर नज़्म है जो फिल्म में आई है, एक चमेली के मंडवे तले दो बदन प्यार की आग में जल गए। अब देखिए, एक चमे फाइलुन ली के मंड फाइलुन वे तले फाइलुन, ये तीन मिसरे तीन बार फाइलुन आया, नीचे आ गया दो बदन फाइलुन प्यार की फाइलुन आग में फाइलुन जल गए फाइलुन, चार बार आ गए। तो लेकिन ये जरूर है कि आहंग जो है और रुकनो है वो नहीं बदलेगा, वो वही रहेगा। ये जरूरी है कि आप के लिए, ये कोई जरूरी नहीं है इसमें कि आप मुरव्वजा तौर पे चार चार बार ही ले या तीन तीन बार ही ले।
0: तो आप यहाँ पे एक सवाल मेरे जहन में ये आया कि एक तरफ तो ये आजाद नज्म कही जा रही है और दूसरी तरफ एक नसरी नज्म कही जा रही है
2: जी,
0: तो इसमें क्या फर्क है, आप हमारे सामने को ये बताइए।
2: नसरी नज्म जो होती है इसमें ये आहंग जो होता है इसका लिहाज नहीं रखा जाता।
0: अच्छा,
2: मतलब ये कि अब आपने, मैंने आपको अभी मखदूम मोहिद्दीन साहब की जो नज्म मिसाल के तौर पर पेश की ये आज़ाद नज्म है, इसमें आहंग का पूरा पूरा लिहाज रखा गया। लेकिन नसरी नज्म के अंदर ये बात, ये खराबी है कि उसमें आप अपने ख्यालात का इजहार नज्म के फॉर्मेट पे तो करते हैं लेकिन उसमें आहंग और उसमें सारे लवाजमात जो होते हैं रुकन के अरूज के वो नहीं होते,
0: शामिल नहीं होते हैं जी। यानी ये कहा जाए कि उसको आज़ाद नज़्म में जो नसरी नज़्म कही जाती है उनको, उनमें कोई बंदिश नहीं होती है कहीं,
2: उनमें सिर्फ ये है कि उनमें अगर बंदिश होती है तो ख्याल की बंदिश होती है कि जिस ख्याल को ऊपर से लेकर चला जा रहा है उस ख्याल को कितने सलीके से और कितनी खूबसूरती से बयान किया जा सकता है कम से कम अल्फाज में
0: जी।
2: ज्यादा अगर तवील नज्म है, वो नसरी नज्म ज्यादा तवील है तो फिर वो नसर की नज्म क्या रही, वो तो सीधा सीधा नसर हो गया
0: जी। आपने रूमानी गज़लें भी खूब कही हैं, माशाल्लाह बहुत उम्दा कही हैं। और इस वक्त मेरे जहन में एक शेर है, मैं आपके ही सामने हाजिर करूँगी और फिर मेरा अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ होगा। हम अपने आप से यूं जामो मीना दूर करते हैं, पिलाकर नरगिसी आँखों से वो मखमूर करते हैं। और आगे आप कहते हैं कि ना जादू है ना टोना है, ना जंतर है ना मंतर है, ना जादू है ना टोना है, ना जंतर है ना मंतर है, तो फिर वो किस तरह लोगों के दिल मशहूर करते हैं। आपकी ये गज़ल के दो शेर मैंने इस वक्त जो सुनाए, इसी मौजू पे बात करते हुए आप कुछ रूमानी अगर हमारे सामने इनको सुनाएं, जो आपको कुछ कलाम आपने रूमानी कहा हो।
2: ये दरअसल ये जो है
0: जी,
2: ये भी एक फिल्वदिया मुशायरे
0: जी हाँ
2: गजल है
0: जी।
2: और
0: बहुत खूबसूरत अंदाज में लेकिन आपने कही है, जो ये खास तौर से ना जादू है ना टोना है ना जंतर है ना मंतर है, तो यानी ऐसे उतरता चला जाता है
2: ये लहजा जो है। दरअसल ये हुआ था कि मैं बहरे हजज सालिम के बारे में पढ़ रहा था
0: जी,
2: तो उसमें एक अल्लामा अखलाक देहलवी की एक किताब फने अरूज
0: जी
2: बहुत मशहूर मुस्तनद किताब है जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में के कोर्सों में शामिल रही वर्षों 1959 के करीब। उसमें उन्होंने एक मिसाल दी थी, न प्याला है न साखी
0: है तो मीना है,
2: न मीना है, तो वो जहन में था
0: हाँ।
2: और उसी बीच में ये फिल्वदी गजल का मिसरा मिला तो मैंने न जादू है न टोना है जंतर है,
0: बहुत उम्दा ख्याल आपने इसमें शामिल करके और पेश किया।
2: तो अब वो आपको एक अपनी गजल जो है रूमानी स्टाइल में जो कही मैंने उसके चंद शेर सुना देता हूँ कि सख्त लहजे को मखमली कर लो, सख्त लहजे को मखमली कर लो, खूबसूरत सुखनवरी कर लो, खूबसूरत सुखनवरी कर लो। और शेर है कि एहतमाम गज़ल ज़रूरी है, एहतमाम गज़ल ज़रूरी है, चांद चेहरों से दोस्ती कर लो, एहतमाम गज़ल ज़रूरी है, चांद चेहरों से दोस्ती कर लो और रूबरू जब गुलाब चेहरे हों, रूबरू जब गुलाब चेहरे हों, अपने लहजे को शबनमी कर लो, अपने लहजे को शबनमी कर लो और बढ़ ना जाए शकर मोहब्बत में
0: जी।
2: बढ़ ना जाए शकर मोहब्बत में, फासलों में जरा कमी कर लो
0: बहुत
2: फासलों में जरा कमी कर लो, और फूल तितली धनक हिना खुशबू, फूल तितली धनक हिना खुशबू, तुम नवे दिन पे शायरी कर लो।
0: क्या बात, बहुत उम्दा गजल सुनाई आपने, बहुत बहुत उम्दा। और कुछ आप गजल या नज़्म?
2: एक गजल के चंद शेर,
0: क्योंकि एक बार जब मूड बन जाता है, एक तरफ रुझान हो जाता है, तो कुछ जहन में वो आता चला जाता है, तो मैं ये मौका हाथ से बिल्कुल जाने नहीं दूंगी, आपसे और गजलें सुनूंगी मैं और हमारे सामेईन भी सुनेंगे।
2: एक गजल के चंद शेर आपको
0: जी इरशाद
2: पेश करता हूँ मैं। मतला यूं कहा है कि कुछ जायका खिजा का भी अहबाब चाहिए, कुछ जायका खिजा का भी अहबाब चाहिए, ये क्या कि सिर्फ मौसम शादाब चाहिए, ये क्या कि सिर्फ मौसम शादाब चाहिए, और लुकनत जबा में और सुखन जानते नहीं, लुकनत जबा में और सुखन जानते नहीं, फिर भी है जिद के मिंबरों में मेहराब चाहिए।
0: क्या बात, बहुत
2: लुकनत जबा में और सुखन जानते नहीं, फिर भी है जिद के मिंबरों में मेहराब चाहिए, और जी चाहता है आपके माथे को चूम लूं,
0: जी
2: चाहता है आपके माथे को चूम लूं, इस बेलिबास रुत में भी कम ख्वाब चाहिए।
0: क्या बात, बहुत
2: जी चाहता है आपके माथे को चूम लूं, इस बेलिबास रुत में भी कम ख्वाब चाहिए, और कागज की कश्तियों के जरा हौसले तो देख, कागज की कश्तियों के जरा हौसले तो देख, दरिया से कह रही है कि गिरदाब चाहिए।
0: क्या बात, बहुत
2: कागज की कश्तियों के जरा हौसले तो देख, दरिया से कह रही है कि गिरदाब चाहिए, और कम चश्म आईनों पे जमाते हैं रोब अब, कम चश्म आईनों पे जमाते हैं रोब अब, और गूंगे बहरे कहते हैं मिजराब चाहिए।
0: क्या बात, बहुत
2: कम चश्म आईनों पे जमाते हैं रोब अब, और गूंगे बहरे कहते हैं मिजराब चाहिए, हम मानिंदे ख्वाब रहते थे आंखों में जो कभी, मानिंदे ख्वाब रहते थे आंखों में जो कभी, वो लोग कह रहे हैं हमें ख्वाब चाहिए, वो लोग कह रहे हैं हमें ख्वाब चाहिए। और मकता इस गजल का है कि जीने की आरजू वो तेरी क्या हुई नवेद, जीने की आरजू वो तेरी क्या हुई नवेद, आबे हयात की जगह जहराब चाहिए, कुछ जायका खिजा का भी अहबाब चाहिए, ये क्या कि सिर्फ मौसम शादाब चाहिए।
0: बहुत बहुत उम्दा आपने गजल सुनाई हमारे सामईन को। एक रंग से जो हमारे सामईन वाकिफ नहीं है, एक सादगी एक उदासी कई बार आपकी गजलों में देखने को मिलती है। जैसे आप कहते हैं कि चुभते हैं कांच के रेजे की तरह आंखों में, चुपते हैं कांच के रेजों की तरह आंखों में, ये मेरे ख्वाब शिकस्ता अजाबे जा निकले। तो कई मरतबा आप जो बहुत सादगी से कुछ उदासी से कुछ कह जाते हैं, तो वक्त ज़रा कम है, तो आप गज़ल ना कह के एक शेर अगर कोई ऐसा उदास सा कुछ अगर सुना दें हमारे सामईन को।
2: ये शेर जो है सही यूं है कि चुभे हैं कांच के रेजों की तरह आंखों में, मेरे ये ख्वाब शिकस्ता अजाबे जा निकले, और इसी में एक बड़ा अजीब गरीब शेर हुआ था, उसमें कुछ हुज्न भी है और कुछ नई बात भी है, वो पेश करता हूँ कि अजीब लोग हैं दुनिया की सैर कराए, अजीब लोग हैं दुनिया की सैर कराए, हिसारे जात से बाहर मगर कहाँ निकले।
0: बहुत उम्दा।
2: और हर एक आरजू, अब गम का शेर देखिए आखिरी ये मकता है कि हर एक आरजू मदफून हो गई इनमें, हर एक आरजू मदफून हो गई इनमें, हमारे दिल किसी तुर्बत से कम कहाँ निकले। दरअसल ये शायरी उस जमाने की है जब मैं बेरोजगार था, तो कुछ गम मेरे ऊपर था।
0: जी तो सामईन, आज हमने गुफ्तगू की भोपाल शहर के एक मायानाज अदीब और शायर मलिक नवीद साहब से, साथ में हमने उनकी शायरी का लुत्फ भी उठाया, उनकी नज़में भी सुनी, और उनसे शायरी के अरूज के मुतालिक हमने मालूमात भी हासिल की। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे रेडियो आज़ाद हिंद में तशरीफ़ लाए और हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सामईन, मुस्तकबिल में फिर किसी बड़ी शख्सियत से मुलाकात के वादे के साथ मैं गौसिया खान सबीन अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।

रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए।

0: कलाकार हैं जयंत विश्वकर्मा और उनके साथ ही ये प्रस्तुति उन्होंने दी मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आयोजित संभावना श्रृंखला के तहत। इस कार्यक्रम का पहला भाग है।
1: आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत फाग गायन जो हमारे बुंदेलखंड में फाग गायन विभिन्न रूपों से किया जाता है, कुछ छोटे छोटे से अंश सभी विधाओं के देने का प्रयास करूंगा। जितनी विधाएं फाग के अंतर्गत होती हैं, सबसे पहले सुमरनी से हम आज के इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे।

चलिए एक और बुंदेली भाग्य के संबंध में विधा है। जब फागुन लगता है तो कैसा, कैसी प्रकृति का स्वरूप होता है।

और चलिए होली का ऐसा अवसर होता है सारे बैर भाव बुलाकर जब अनरैक जिसे होली कहा जाता है हम बैठने जाते हैं गुलाल लगाते हैं और सारे बैर भाव बुलाकर तो ये अनरैक की एक होली

आज के इस खास कार्यक्रम में आप सुन रहे थे बुंदेली फाग गायन, कलाकार थे जयंत विश्वकर्मा और उनके साथ ही। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।

90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं समय रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम देश का चैनल देश के लिए। दिन के ठीक 10 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। परिक्रमा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं भोपाल शहर की होने वाली साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर एकई राम रहीम भजन संध्या में युवा बुंदेली लोक गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति होगी भोपाल के रविंद्र भवन में। सुनील लोधी को फिल्म हनुमान अंश के लोकप्रिय भजन मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार दई से विशेष पहचान मिली है। आप इस कार्यक्रम में जा सकते हैं, प्रवेश निशुल्क है रविंद्र भवन में आज शाम 6:30 से।

आइए अब चलते हैं समन्वय भवन में, जहां सांस्कृतिक शाम की कल शुरुआत हुई नर्मदाष्टकम नमामि देवी नर्मदे से। इसके बाद कथक के जरिए मंच पर राधा कृष्ण की अटखेलियां और प्रेम का रंग उतरा। ठुमरी कान्हा खेले कहां ऐसी होरी गुइयां, तीन रंग की गोरी रंगे चोली, राधा कहे बार जोरी, पर कलाकारों ने भावपूर्ण प्रस्तुति दी। फिर फैज अहमद फैज की गजल गुलों में रंग भरे बाद ए नौबहार चले को कथक में पिरोया गया। सभी कथक प्रस्तुतियों की कोरियोग्राफी क्षमा मालवी ने की। कार्यक्रम में सरजन अकादमी के निदेशक सुनील शुक्ला और क्षमा मालवी का सम्मान भी किया गया। वहीं दूसरी ओर गुरुवार को समन्वय भवन में वीआईटी भोपाल यूनिवर्सिटी के संस्कृति समागम में नवदीप ने बडाली संगीत घराने की विरासत को अपने अंदाज में मंच पर उतारा। जब उन्होंने तू माने या ना माने, दिलदारा, दमादम मस्त कलंदर, सूफी कलाम छेड़ा तो दर्शक भी सुरों के साथ जुड़ते नजर आए।

और श्रोताओं, अब आपको बताते हैं हम मौसम की जानकारी। मॉनसून का सीजन खत्म हो चुका है और गुरुवार से अक्टूबर शुरू हो चुका है। भोपाल में इस महीने दिन में गर्मी बनी रह सकती है, जबकि रातें धीरे धीरे ठंडी होती जाएंगी। रात का पारा मॉनसून की विदाई से पहले ही 20 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। नवरात्रि के आसपास रात में ठंडक और बढ़ने के आसार हैं। महीने के आखिरी सप्ताह में गुलाबी ठंड दस्तक दे सकती है। अक्टूबर में कभी कभी बादल और बौछारों का दौर भी आ सकता है। अक्टूबर में सामान्य बारिश 31.5 मिलीमीटर है। इस महीने सामान्य अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री और न्यूनतम 19.1 डिग्री के आसपास रह सकता है। मॉनसून की विदाई के बाद भी कभी कभार बादल और बौछारों वाला मौसम हो सकता है। अक्टूबर की शुरुआत के साथ दिन का तापमान बढ़ा है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री और न्यूनतम 19.6 डिग्री दर्ज किया गया। लगातार तीसरे दिन रात का पारा 20 डिग्री से नीचे रहा। मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि उत्तर पश्चिमी हवाओं से रात में ठंडक बनी हुई है, जबकि तेज धूप से दिन गर्म हो रहे हैं। शुक्रवार को मौसम शुष्क रहेगा और बारिश के आसार नहीं है। तड़के 4 से सुबह 7 बजे तक ठंडक ज्यादा महसूस हो सकती है। गुरुवार को दिन रात के तापमान में 15.2 डिग्री का अंतर रहा। आगे भी सुबह शाम ठंडक और दोपहर में भी गर्मी बनी रह सकती है।

माँ का प्रादर्श आप देख सकते हैं मानव संग्रहालय में आज 11 बजे से। तो श्रोताओं, ये था परिक्रमा कार्यक्रम। 90.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को। हमारे कार्यक्रमों को आप सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं मिक्सलर एप्लीकेशन पर भी। तो जुड़े रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश की। लीजिए प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ और सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्होंने लंदन से कानून की पढ़ाई की थी। ये बात उन दिनों की है जब भारत अंग्रेजों के चंगुल में फंसा हुआ था और देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा था। मोहनदास करमचंद गांधी भी इसमें सम्मिलित हो गए। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष आरम्भ कर दिया। इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता उन्हें महात्मा गांधी कहने लगी। महात्मा गांधी ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी करवाया। उन्होंने विश्वभर में अंग्रेजों के अत्याचारों और दमन नीति के विरुद्ध वातावरण तैयार किया। महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति इस धरती पर युगों के बाद जन्म लेते हैं। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए ही कार्य नहीं किया बल्कि देश के निर्धनों की स्थिति सुधारने के प्रयास भी किए। छुआछूत की समस्या का हल करने के लिए उन्होंने अछूतों को हरिजन अर्थात भगवान के लोगों की संज्ञा दी। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया और हिंदू मुसलमानों को एक समान समझा। उनके विचारों में सभी धर्म एक ईश्वर को पाने के अलग अलग साधन थे। 30 जनवरी 1948 को सांप्रदायिक सद्भाव के लिए महात्मा गांधी शहीद हो गए। महात्मा गांधी के निधन पर सारा देश रो पड़ा था। आज महात्मा गांधी हमारे बीच नहीं हैं, परंतु सारा विश्व उनकी विचारधारा को आज के युग के लिए सबसे उपयुक्त मान रहा है।
2: अरे गजबीय काका, जल्दी से 2 थाली खाना लगा दो। अरे बहुत तेज भूख लगी है।
3: हाँ बेटा हाँ, बस अभी लो। क्या बात है, आजकल बहुत घुमाई फिराई चल रही है।
4: अरे हाँ काका, कॉलेज की छुट्टियाँ लगी तो सुबह से ही घूमने निकल पड़े। ए रोहित, तेरा पिछला हिसाब बाकी था ना, इस बार बिल तू देगा भैया।
2: अरे दे दूंगा ना यार, क्यों टेंशन लेता है। अरे काका, ये रेडियो पर कौन सा गाना आ रहा है।
3: अरे बेटा, ये गांधी जी का सबसे प्रिय भजन है। इस भजन का उन पर गहरा प्रभाव रहा। पता है, हमारे पिताजी ने भी महात्मा गांधी के सत्याग्रह में भाग लिया था।
2: सत्याग्रह? काका ये सत्याग्रह क्या होता है।
4: काका आज तो आप सत्याग्रह के बारे में बता ही दो और इसको गांधी जी के बारे में बता दो।
2: हाँ बताओ ना काका।

0: घड़ी कमर में लटकाऊंगा, से सवेरे कर आऊंगा, मुझे रुई की पोनी दे दे, तकली खूब चलाऊंगा, माखादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं, सम्मितों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊं, रघुपति राघव गाऊं, रघुपति राघव गाऊं।
1: यही मोहनदास समूचे विश्व में महात्मा गांधी के नाम से जाने गए। एक धार्मिक परिवार में जन्म लेने के कारण मोहनदास में नैतिक मूल्यों और संस्कारों का स्वतः विकास होने लगा।

0: मनु, ओ बेटा मनु, अरे कहाँ चला गया मनु?
1: हाँ आया बा।
0: भाभी बता रही थी कि बच्चों के साथ खेल रहा था।
1: हाँ बा, हम आँख में चाली खेल रहे थे।
0: ओहो, अरे बेटा तू क्यों नहीं समझता, उसके साथ खेलने से, उसको छूने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है।
1: धर्म भ्रष्ट? पर बात तूने ही तो बताया था कि राम भगवान ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। अपने धर्म में अछूतों को ना छूने की बात कहाँ लिखी है बा?

0: पाठशाला नहीं चलना क्या?
1: अभी आया। अच्छा बा, मैं चलता हूँ।
2: ठीक है बेटा, पर अपना ध्यान रखना।
3: पाठशाला में उस दिन शिक्षा विभाग के अंग्रेजी निरीक्षक जाइल्स विद्यालय का निरीक्षण करने आने वाले थे।
4: बच्चों, आज हमारी पाठशाला में शिक्षा विभाग के अंग्रेजी अफसर आने वाले हैं। वो जो पूछें उसका सही सही जवाब देना, कोई शरारत नहीं होना चाहिए।
5: जी मैडम।
6: जी गुड मॉर्निंग।
7: हम इन लोगों का डिक्टेशन टेस्ट लेना मांगता है, कोई प्रॉब्लम?
6: जी नहीं सर।
7: गुड क्लास, लेट्स सी आप लोगों ने क्या क्या सीखा है। हम जो भी बोलेगा आप लोग अपना अपना पाटी में लिखना मांगता है।
5: जी मैडम।
7: गुड, देन राइट इन इंग्लिश। डॉग, टेबल, कैट, आउल एंड कैटल।

0: इट्स टाइम ओवर नाउ, ऑल ऑफ यू अपना अपना पार्टी दिखाओ. करेक्ट, गुड गुड गुड गुड गुड गुड गुड. ओह वेरी गुड वेरी गुड. ओह नाइस वेरी नाइस. हे यू, नाम क्या है तुम्हारा?
1: जी मोहनदास.
0: पूरा क्लास में सिर्फ तुम्हारा स्पेलिंग्स गलत है. तुमको केटल लिखना भी नहीं बनता. बैठ जाओ अपनी जगह.
2: सर सर ये पढ़ाई में जरा कमजोर है.
0: ओह आई सी. ओके टीचर, अब हम जाना मांगता है. हम दोबारा आएगा.
2: जी सर.
0: गुड डे
2: सर.
3: मोहन, मैं तुम्हें बार बार बाजू वाले छात्र की पट्टी में झांककर शब्द के हिज्जे सुधारने का इशारा करता रहा, पर तुम तो टस से मस न हुए.
1: लेकिन माँ साहब, नकल करना तो चोरी है और चोरी करना तो पाप है ना?
4: मोहनदास ने अपने सिद्धांत बचपन में ही बना लिए थे. उनकी बातों से सभी चकित रह जाते. जब गांधी जी केवल 13 वर्ष के थे, उनका विवाह कस्तूरबा से हो गया. एक ही उम्र के होने के कारण दोनों साथ खेला करते. मैट्रिक पास करने के बाद मोहनदास का नाम भावनगर के सामलदास कॉलेज में लिखाया गया.
5: माँ, मैं पास हो गया. काका, मैं पास हो गया.
6: शाबाश मोहन बेटा, जीते रहो, भाभी बधाई हो. तो मोहन बेटा, बता आगे क्या पढ़ने का विचार है?
5: काका, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ.
6: डॉक्टर?
7: छी, ये काम तुझसे ना होगा.
6: अरे तू मुर्दे कैसे चीरेगा?
5: फिर
6: देख बेटा, हम चाहते हैं तू अपने बापू की तरह पोरबंदर का दीवान बने, और इसके लिए कानून का ज्ञान बहुत जरूरी है.
5: कानून का?
6: हाँ. अच्छा बता, कानून पढ़ने विलायत जाएगा?
5: विलायत? हाँ, मैं कानून पढ़ूंगा, विलायत जाऊंगा.
7: मेरा मनु इतने सालों तक मेरे आंखों से दूर रहेगा, ये मैं कैसे सहन कर पाऊंगी? विलायत जाकर लोग बिगड़ जाते हैं, कहीं ये मांस मदिरा का सेवन करने लग गया तो.
6: भाभी, मोहन पर विश्वास रखो, उसे हमारी मर्यादाओं का भान है. मोहन, तू तो विलायत जाने की तैयारी कर.
5: बा, केवल 3 वर्षों की तो बात है, और रही बात मेरे बिगड़ने की, तो मैं भगवान का नाम लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ, जिन बातों से तुम डरती हो ना, उन्हें मैं कभी नहीं करूंगा, और अपने कुल की मर्यादा का मैं सदैव ध्यान रखूंगा.
4: इस तरह मोहनदास चल पड़े लंदन की ओर. लंदन में उन्होंने एक एंग्लो इंडियन परिवार के साथ रहना शुरू किया. लंदन की कपकपाती सर्दी भी उन्हें अपनी प्रतिज्ञा से डिगा न सकी. उन्होंने मांस मदिरा का सेवन जीवन पर्यंत नहीं किया. लंदन में मिलने वाली नित नई चुनौतियों ने उनके व्यक्तित्व को नया रुख दिया. मोहनदास अब धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने लगे थे. विलायत में उन्हें स्वदेश की रह रहकर याद सताती, और वो दिन आ ही गया जब मोहनदास करमचंद गांधी की भारत वापसी हुई. गांधी जी ने बंबई आकर वकालत शुरू कर दी. एक बार किसी ने उन्हें गरीब स्त्री मणिबाई का मुकदमा दे दिया.
6: मणिबाई वल्द केशु भाई, हाजिर हो.
8: मुकदमे का प्रोसीजर शुरू किया जाए. मणिबाई के मुकदमे की पैरवी करेंगे बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी.
5: थैंक यू मिलॉर्ड. मैं कहना चाहूंगा कि मेरी मोकिल मिलॉर्ड, मेरी मोकिल मणिबाई, मोकिल मणि, मोकिल मणि, आई एम सॉरी मिलॉर्ड, मैं कुछ देर का ब्रेक चाहूंगा.
8: इट्स ओके मिस्टर गांधी, अदालत 10 मिनट के बाद कंटिन्यू किया जाएगा.
5: मणि भाई, मुझे क्षमा करना, मुझ में ये केस लड़ने की हिम्मत नहीं है. ये रही तुम्हारी फीस, तुम कोई दूसरा वकील कर लो.
4: गांधी जी के लिए उनका यह पहला केस किसी बड़े झटके से कम न था। उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक स्वयं पर भरोसा न हो जाए वे कोई केस नहीं लड़ेंगे। बंबई में गांधी जी की वकालत चलने वाली न थी, इसलिए उन्होंने राजकोट जाना तय किया। राजकोट में वो सिर्फ अर्जी दावा लिखने का काम किया करते। यहां उनकी वकालत ठीक ठाक चलने लगी। इसी बीच गांधी जी को दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का एक पत्र मिला, जिसके अनुसार उन्हें दक्षिण अफ्रीका एक दीवानी मुकदमे की पैरवी करने जाना था। दक्षिण अफ्रीका में उस समय भारतीयों को तुच्छ समझा जाता। उन्हें वहां तिरस्कार पूर्वक काला कुली कहकर बुलाया जाता। जब गांधी जी अफ्रीका पहुंचे,
9: यह ट्रेन आपको सीधे प्रिटोरिया पहुंचा देगी। मिस्टर गांधी, यह रहा आपके पहले दर्जे का टिकट।
5: धन्यवाद सेठ जी, मैं प्रिटोरिया पहुंचकर मामले को समझ लूंगा और आपके वकील से भी बात कर लूंगा। आप विश्वास रखें, निर्णय आशा के अनुरूप ही होगा।
9: धन्यवाद, अलविदा।
5: अलविदा। एक्सक्यूज मी, कुड यू टेल मी विच स्टेशन इज दिस?
8: या, इट्स मैसबर्ग।
5: ओह, थैंक यू।
10: Are you Anandil?
5: Yes.
10: How you came here? Get lost. Immediately move to third class. That is the only place you coolies deserve.
5: But I have ticket of first class.
10: First class? Leave or you will be thrown out of here.
5: I won't.
10: You? You bloody?
5: What are you doing?
10: I won't leave you.
8: You all Indian coolies, you will have to submit your fingerprints in police station.
5: But what is our fault?
10: Your fault is that you are an Indian.
4: गांधी जी ने अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ सत्याग्रह का बिगुल फूंक दिया। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका आना जाना लगा रहा। वहां गांधी जी के आह्वान पर भारतीयों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष आरंभ कर दिया था।
5: अब अफ्रीका में रंगभेद और नहीं चलेगा। भारतीयों, अब जागने का समय हो गया है। रंगभेद के खिलाफ हमें सत्याग्रह छेड़ना होगा। बुरे कानून के सामने ना झुकना ही सत्याग्रह है। अब अंग्रेजी अत्याचार और ना चलेंगे। क्या आप लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं?

0: 1915 में गांधी जी इंग्लैंड होते हुए भारत आ गए। इधर गांधी देश के कोने कोने में घूमकर भारतीय जनता से जागृति का आह्वान कर रहे थे और उधर अंग्रेजी राज अपने रंग दिखा रहा था।
1: आज की ताजा खबर जलियांवाला बाग में डायन ने निर्दोषों को भूना। आज की ताजा खबर हजारों लोग मारे गए हत्यारा डायन निर्दोष साबित। रोलेट एक्ट पारित हुआ। आज की ताजा खबर अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार। आज की ताजा खबर जलियांवाला बाग में डायन।
0: इसी समय गांधी जी ने गुजरात के एक गाँव में हाथ से चलने वाला चरखा खोज निकाला। बाद में यही चरखा असहयोग आंदोलन का प्रमुख हथियार बना।
2: महात्मा गांधी अमर रहे।
3: बिना संघर्ष किए स्वराज की मंजिल तय नहीं हो सकेगी। हमें असहयोग आंदोलन छेड़ना होगा। मैं भारतीय जनता से आह्वान करता हूँ, वे सरकारी पदों, सरकारी शिक्षण संस्थानों, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करें, खादी अपनाएं और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दें। वंदे मातरम।

0: महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की।
1: असहयोग आंदोलन जोर शोर से शुरू हुआ। भारतीयों के मन में बसे आक्रोश को अब स्वर मिल चुका था। आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार की नाक में दम कर दिया।
0: महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की।
2: सर सर, जगह जगह सभाएं हो रही हैं, नारे लगाए जा रहे हैं और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही है।
3: ठूस दो सबको जेल में।
2: सर, जेलों में और जगह नहीं है। जेलें आंदोलनकारियों से भरी जा चुकी हैं और विद्रोह थमने का नाम नहीं ले रहा है। गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है।
3: Who is this?
1: असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। शहर शहर, गांव गांव सभाएं होती, जोशीले भाषण दिए जाते। सभी कुछ भारतीयों के अनुकूल चल रहा था कि चौरी चौरा की घटना ने समूचे आंदोलन को झंझोर दिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। सारे देश में निराशा की लहर दौड़ गई। गांधी जी को यंग इंडिया में छपे एक लेख के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, पर अंग्रेजी सरकार उन्हें अधिक दिनों तक कैद न रख सकी। गांधी जी के जेल से छूटते ही प्रदर्शनों, विरोध सभाओं में सक्रियता आ गई। 26 जनवरी 1930 को देश भर में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। गांधी जी ने भारत से सत्याग्रह आंदोलन का आह्वान किया। नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा आरंभ हुई।
0: महात्मा गांधी की
4: जय,
0: महात्मा गांधी की
4: जय,
0: महात्मा गांधी की
4: जय।
5: अंग्रेजी कानून का सभी जगह विरोध किया जाए, इसकी शुरुआत हम नमक कानून तोड़कर करेंगे।
0: महात्मा गांधी की
4: जय,
0: महात्मा गांधी की
4: जय,
0: महात्मा गांधी की
4: जय।

0: अब अंग्रेजों का भारत में टिकना मुश्किल हो गया था। गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। गांधी जी और अन्य नेताओं को जेल भेज दिया गया। गांधी जी शीघ्र ही आजाद हो गए। जेल से छूटने के बाद गांधी जी ने बंगाल की यात्रा की। अंग्रेजों पर अब दबाव बढ़ता जा रहा था और 15 अगस्त 1947 को भारत में आजादी के सूरज का उदय हुआ। अंग्रेज जाते जाते देश को दो धड़ों में बांट गए। इस घटना ने गांधी जी को गहरा आघात दिया। 1948 जनवरी की 30 तारीख थी। रोज की तरह लोग बिरला हाउस की प्रार्थना सभा में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इन लोगों में नाथुराम गोडसे भी शामिल था।
1: अरे आज गांधी जी अभी तक नहीं आए।
2: गांधी जी तो कभी देर नहीं करते। जरा गौर से देखो, ये तुम्हारी घड़ी तो खराब नहीं है।
1: अरे लो, गांधी जी आ गए।
3: आपको क्या लगता है? अभी आ गए। लो आ गए।

उस दिन भारत को रोशन करने वाली रोशनी सदा के लिए बुझ गई। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे महात्मा जी का पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: और अब समय है हमारे कार्यक्रम कला कलोलिनी का। नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा,
2: और संदीप के साथ मैं हूं मनीषा।
1: और आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे नृत्य सम्राट उदय शंकर की। श्रोताओं, भारतीय इतिहास में ऐसे कुछ विरले व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में देश का नाम विश्व में रोशन किया है, और अपने असाधारण योगदान से अपना और राष्ट्र का नाम अग्रिम पंक्ति में पहुंचाया और दूसरों को अपनी अद्वितीय प्रतिभा से प्रेरणा दी। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम ऐसे एक महान कलाकार की चर्चा करेंगे जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किसी भी स्वरूप में कोई औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया, परंतु उनकी प्रस्तुतियां रचनात्मक होती थी। हालांकि ये बात अलग है कि बचपन से ही वे भारतीय शास्त्रीय और लोक नृत्य शैलियों के संपर्क में रहे।
2: हाँ श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में आधुनिक नृत्य के निर्माता, सुप्रसिद्ध नर्तक, नृत्य निर्देशक और बैले निर्माता नृत्य सम्राट उदय शंकर जी की। उन्होंने यूरोप और अमेरिका को भारतीय नृत्य की संस्कृति से दुनिया के मानचित्र पर प्रभावशाली ढंग से स्थापित किया। हाँ, उन्होंने तांडव नृत्य, शिव पार्वती, लंका दहन, रिदम ऑफ लाइन, श्रम और यंत्र, रामलीला और भगवान बुद्ध के नाम से नवीन नृत्यों की रचना की। इसमें वेशभूषा, यंत्र संगीत, ताल और लय आदि का आविष्कार भी किया। कला की दुनिया में कई ऐसे नाम हैं जो तमाम बंधनों और समय की सीमाओं को लांघकर अमर हो गए हैं। उदय शंकर उन्हीं महान हस्तियों में से एक थे जिन्होंने नृत्य कला को केवल एक प्रदर्शन कला नहीं बल्कि संस्कृति सेतु बना दिया।
1: इसलिए तो उन्हें भारत के आधुनिक नृत्य का जन्मदाता भी कहा जाता है। हम इस बात को यहाँ बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि जिस समय भारतीय शास्त्रीय नृत्य केवल परंपराओं तक सीमित था, उस दौर में उदय शंकर ने उसे विश्व पटल पर समकालीन रूप देकर नई पहचान दिलाई। जब भारतीय नृत्य विश्व पटल पर अपने लिए एक बड़ा सम्मान अर्जित कर रहे थे, उसी 1930 के दशक में भारत में भी शास्त्रीय नृत्यों के रूपों का पुनरुत्थान हो रहा था। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ राष्ट्रवाद की भावना भी जागृत हो रही थी, और उस समय विदेशी शासन के बावजूद भारतीय अपनी स्वदेशी कलाओं पर गर्व कर रहे थे। उस समय उदय शंकर जो की प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, पर जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि शास्त्रीय नृत्य की किसी भी शैली में उनका कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था।
2: ये तो सही है कि वे प्रशिक्षित नर्तक नहीं थे, परंतु उनके नृत्य बहुत रचनात्मक होते थे। अनेक नृत्य परंपराओं को और साथ ही उनकी तकनीकी कुछ चुनी हुई चीजों को लेकर अपने नृत्य नाटकों की रचना करने में उन्हें कमाल की महारत हासिल थी। वे अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। इस विषय में उनका योगदान अपने मन में आई भावनाओं और विषय को विस्तार पूर्वक लोगों तक पहुंचाने के लिए उपयुक्त शैली और रूप के साथ रचनात्मक तरीके से दर्शकों तक पहुंचा देने का हुनर रखते थे। नृत्य के पारंपरिक तरीके से परिचित होने के बाद भी उन्होंने उन सभी को अलग रखा, एक और अलग एकीकृत रचना को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उनके इसी तरह के प्रयोग देखकर लोगों के सामने उनकी बहुमुखी प्रतिभा निखर कर सामने आई। उस्ताद अलाउद्दीन खां और विष्णुदास शिराली, जो कि सुविख्यात पंडित विष्णु दिगंबर के शिष्य थे, उनके साथ उदय शंकर ने पेरिस में अपने एकल और युगल बैले नृत्य के लिए रचनात्मक संगीत के साथ प्रयोग किए।
1: जी हाँ, उदय शंकर ने केवल भारतीय वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जिसने उनकी रचनाओं और नृत्यों के संगीत को एक अनोखा रंग प्रदान किया, और हम ये भी कह सकते हैं कि उनके कई नवाचारों ने हमारे संगीत के रुझान को और समृद्ध किया है। और इस बात का एक ठोस आधार ये भी है कि उनकी प्रशिक्षण पद्धति में स्पष्ट दिखाई देता है, जिसमें नर्तकों को उनके द्वारा प्रस्तुत बैले नृत्यों के लिए तैयार किया गया जो संभागीय रहता था, और इसमें उनकी नृत्य तकनीक, लोक नृत्य, तात्कालिक नृत्य मंच और वेशभूषा डिजाइन, श्रृंगार, प्रारंभिक शारीरिक आयाम, भावपूर्ण गतिविधियां, शरीर की संवेदनशीलता का विकास, एकाग्रता, कल्पनाशीलता, सामूहिक भावना और उसका अवलोकन, चरणों का ज्ञान, गति का मनोविज्ञान, रंग और रेखा की समझ, नृत्य और नाटक का संबंध, ये सब शामिल रहा।
2: श्रोताओं, यहाँ इस बात को भी बताना हम जरूरी समझते हैं कि इनके छोटे भाई रविशंकर वही हैं जिन्हें हम सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के नाम से जानते हैं। उदय शंकर के पिता संस्कृत के माने हुए विद्वान थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और बाद में वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने गए और वहां से वो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी बने। पिता को अपने काम के सिलसिले में बहुत अधिक घूमना पड़ता था, इसलिए उदय शंकर के परिवार ने अपना ज्यादातर समय अपने मामा के परिवार में अपनी माँ और छोटे भाइयों के साथ नसरतपुर में बिताया।
1: उदय शंकर की शिक्षा भी इसी कारण अलग अलग जगह पर हुई, जिसमें नसरतपुर, गाजीपुर, वाराणसी और झालावाड़ शामिल हैं। नृत्य के अलावा उदय शंकर चित्रकला, संगीत, शिल्पकला और फोटोग्राफी में भी महारत रखते थे। शिक्षा उन्होंने अपने गाजीपुर के स्कूल में अपने शिक्षक अंबिकाचरण मुखोपाध्याय से हासिल की थी। नृत्य कला का सारा श्रेय उन्होंने अपनी माँ को दिया। एक साक्षात्कार में अपने बचपन की यादों को ताजा करते हुए उन्होंने कहा था कि मेरी ये कला माँ की बदौलत है। बचपन में उनकी माँ उन्हें लड़कियों की तरह कपड़े पहनाती थी, क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं थी। वो उन्हें साड़ी और गहने पहनाती थी और संगीत की धुनों पर थिरकना सिखाती और फिर नाचने के लिए भी कहती थी। तब उन्हें जो भी नृत्य करने का मन करता वो कर लेते, पर उन्हें नृत्य करना नहीं आता था, लेकिन वो कर लेते और उन्होंने किया, और इसके लिए वो सदा अपनी माँ को आभारी मानते रहे। इसकी शुरुआत उनकी माँ ने ही कराई।
2: बचपन में त्योहारों के दौरान होने वाले नृत्यों के अलावा लोक नृत्यों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। हालांकि बचपन में उनकी दिलचस्पी मुख्यतः चित्रकला में थी, ये प्रतिभा उनमें इतनी प्रबल थी कि झालावाड़ के महाराजा ने उनके पिता को उदय को सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला दिलाने को मना लिया और यहां से डिप्लोमा कोर्स पूरा करने के बाद 1920 में वे रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में दाखिला लेने के लिए लंदन चले गए।
1: हाँ, और इसके अलावा उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन और हर नजरिए से पूर्णता मिले, बस इसी पर जोर रहता था। वे जानते थे कि वे अपने दर्शकों में और उत्सुकता कैसे जगा सकते हैं। बहुत कम समय में बेहतरीन नृत्य प्रस्तुत कराने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। विभिन्न भारतीय देवी देवताओं के बारे में उन्होंने ऐसा दृष्टिकोण रखा जिसने एक अमिट छाप छोड़ दी।
2: जिन दर्शकों ने उनके इंद्र, कार्तिकेय और शिव के एकल नृत्य देखे हैं, वे उनके द्वारा रचित कलात्मक और मनमोहक छवियों को लंबे समय तक ज्यों की त्यों अपने मन मस्तिष्क में सजाए रहते थे। मंच पर नृत्य प्रस्तुति के समय उनका शारीरिक सौंदर्य अद्भुत नजर आता था, जो दर्शकों के मन में समा जाता था। वे अपने इस विशिष्ट गुण से दर्शकों पर सदा जादू कर देते थे।
1: जी हाँ, बात आपने बिल्कुल ठीक ही की है। उनमें जो ये दुर्लभ गुण था उसे दोहराया नहीं जा सकता है। बस जिन्होंने उन्हें मंच पर प्रस्तुति देते हुए देखा है, उनके मन में उनकी स्मृति बसी हुई है। सुप्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर की प्रतिभा की और विस्तार से चर्चा करने से पहले हम आपको अब उनके जन्म के बारे में जानकारी दे दें। उदय शंकर का जन्म 8 दिसंबर 1920 राजस्थान के उदयपुर शहर में हुआ था। वैसे तो वे मूलतः नरेल, जो बांग्लादेश में आता है, वहां के एक बंगाली परिवार से ताल्लुक रखते थे।
2: उनके पिता का नाम श्याम शंकर चौधरी था, अपने समय के सुप्रसिद्ध वकील थे और राजस्थान में ही झालावाड़ के महाराज के यहाँ काम करते थे। उनके पिता को नवाबों द्वारा हर चौधरी की उपाधि दी गई थी, किंतु उन्होंने हर चौधरी में से हर को हटा दिया। अपने नाम के साथ सिर्फ चौधरी का प्रयोग करना ही पसंद करते थे। उदय शंकर की माँ हेमांगिनी देवी भी एक बंगाली जमींदार परिवार से ताल्लुक रखती थी। इनके अन्य बच्चों के नाम राजेंद्र शंकर, देवेंद्र शंकर, भूपेंद्र शंकर और रविशंकर थे।
1: श्रोताओं, चित्रकला की प्रतिभा उनमें इतनी प्रबल और विलक्षण थी कि उन्होंने 5 साल का कोर्स 3 साल में ही पूरा कर लिया। उनके कॉलेज के प्रिंसिपल ने ही तब उदय को पूरी तरह से भारतीय संस्कृति में रमने के लिए प्रेरित किया। ब्रिटिश संग्रहालय में भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला के बारे में पढ़ते हुए बिताए गए वो असंख्य घंटे ही थे जो उदय शंकर को नृत्य की ओर वापस ले आए।
2: फिर क्या था, उदय शंकर के मन में भारतीय मूर्तियों की विभिन्न नृत्य मुद्राओं में देवी देवताओं के चित्रों के प्रति विशेष रूप से आकर्षण पैदा हो गया और उन्होंने तब उन मुद्राओं का अनुसरण करना आरंभ किया। हालांकि वे प्रशिक्षित नर्तक नहीं थे, फिर भी वे अपने आप को रोक नहीं पाए। बस फिर तो वो चित्र ही उनके लिए प्रेरणा बन गए और फिर उदय शंकर ने उन चित्रों को नृत्य की गति में ढाल दिया।
1: कॉलेज में पढ़ते हुए ही 1922 में उन्होंने अपना पहला नृत्य प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन लीग ऑफ मर्सी द्वारा आयोजित किया गया, जो महारानी विक्टोरिया के शाही चार्टर द्वारा स्थापित एक ब्रिटिश संस्था थी और इस नृत्य प्रस्तुति की किंग जॉर्ज पंचम ने भी सराहना की थी। एक और महत्वपूर्ण बात इस कार्यक्रम की ये रही कि इसमें दर्शकों में प्रसिद्ध रूसी बैले नृत्यांगना अन्ना पावलोवा भी मौजूद थी और उन्होंने उदय शंकर को नृत्य करते देखा तो उन्हें उदय शंकर की नृत्य शैली बहुत पसंद आई और बाद में अन्ना पावलोवा ने उदय शंकर को कुछ भारतीय नृत्य बनाने की जिम्मेदारी दी। तब उदय शंकर ने अन्ना पावलोवा को राधा कृष्ण और हिंदू विवाह के नृत्य तैयार कर दिए जो उन्हें बहुत पसंद भी आए।
2: ये दोनों बैले नृत्य जो उदय शंकर ने तैयार किए थे पश्चिम में बहुत पसंद किए गए क्योंकि तब तक वहां के लोगों ने ऐसा पहले कुछ कभी नहीं देखा था। अन्ना पावलोवा के साथ कई नृत्यों की कोरियोग्राफी करने में उदय की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये अन्ना पावलोवा ही थी जिन्होंने उदय शंकर को अपनी भारतीय तकनीक और शैली में सुधार के लिए प्रेरित किया। उदय शंकर ने स्वयं एक साक्षात्कार में कहा कि अन्ना ने मेरी आंखें खोल दी, ऐसा जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पश्चिमी शैली का अनुकरण ना करूं क्योंकि पश्चिम के लोग नृत्य में वो सब कुछ देखना पसंद करेंगे जो कि भारतीय कला से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है।
1: इस तरह अन्ना पावलोवा के साथ एक साल बिताने के बाद उदय शंकर ने 1924 में पेरिस में अपनी नृत्य मंडली को शुरू तो किया लेकिन पावलोवा की कंपनी से दूर जाने से उनकी मुश्किलें बढ़ने लगी क्योंकि अन्ना पावलोवा के साथ उनकी कंपनी से जुड़ने के लिए मिली सफलता और सार्वजनिक प्रशंसा के साथ पेशेवर और आर्थिक स्थिरता मिली थी और कंपनी छोड़ने के बाद उदय शंकर बेरोजगार हो गए थे और जब जीवन में पहली बार बिना किसी संरक्षण के परिस्थितियां बेहद मुश्किल हो गई थी और उन परिस्थितियों से निपटने के लिए वो बहुत छोटे छोटे आयोजनों में भी नृत्य के कार्यक्रम देने लगे। एक दो साल इसी तरह जीवन संघर्ष चलता रहा और यही वो कार्यक्रम और आयोजन थे जहां उदय शंकर ने दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाकर उनसे एक अटूट रिश्ता बनाया।
2: समय निकला और बदला भी और इसके साथ ही 1926 के आसपास उदय शंकर के लिए और भी चीजें बदलने लगी। उस समय उनके ट्रुप में उनके भाई रविशंकर, देवेंद्र शंकर और उनकी माँ के साथ उनके कुछ दोस्त भी शामिल थे। तब दुनिया भर के तमाम देशों में इस ट्रुप ने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए और उदय शंकर ने अपनी अलहदा नृत्य शैली के साथ नए नए प्रयोग किए और अपने नृत्य में पश्चिमी रंगमंचीय तकनीक को अपनाने के लिए मशहूर हो गए।
1: अब देखा जाए तो उदय शंकर के संघर्ष और उपलब्धियों की लंबी दास्तान है। उनके इस काम में कई उतार चढ़ाव भी आए लेकिन खास बात यह रही कि उन्होंने लगातार 13-14 घंटे अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और हालात को सहते हुए मजबूती के साथ उनका मुकाबला किया पर स्वयं को टूटने नहीं दिया।
2: और फिर अन्ना पावलोवा के ही ट्रुप के दो पूर्व सदस्यों एडिलेड और सोकी नाम की दो बहनों के साथ काम किया और कुछ समय बाद उन्होंने पेरिस की पियानो वादिका सिमोनो वाडियर के साथ मिलकर काम किया और सिमकी नाम के साथ नृत्य की दुनिया में अपना धमाल मचाया। कहा जाता है कि सिमकी के साथ तो एक नए युग की ही शुरुआत हुई। तब उदय शंकर ने नए नृत्यों की कोरियोग्राफी शुरू की जिसमें एकल और युगल दोनों ही तरह के नृत्य शामिल थे।
1: और फिर तो उदय शंकर और सिमकी नृत्य में साझेदारी जल्दी बेहतर लोकप्रिय हो गई और उन्हें बहुत सारे शोज करने के लिए जल्दी जल्दी आमंत्रित भी किया जाने लगा। काम, शोहरत, इज्जत सब कुछ सामने आ गया। उन्हीं दिनों यूरोप के दौरे के दौरान उदय शंकर की मुलाकात स्विस चित्रकार और मूर्तिकार एलिस बोनर से हुई। वे उदय शंकर के नृत्य पर मोहित और प्रभावित हो गईं और उन्होंने उदय शंकर की नृत्य मुद्राओं की मिट्टी से मॉडल और चित्रों के द्वारा एक श्रृंखला तैयार की।
2: तब तक उदय शंकर सुप्रसिद्ध नृत्य निर्देशक और बैले निर्माता के रूप में जाने जाते थे। तब उन्हें भारत में आधुनिक नृत्य के जन्मदाता के रूप में जाना जाने लगा था। उदय शंकर के भाव और भंगिमाओं को देखकर वो चकित हो गए। उदय शंकर के नृत्य के पीछे उन्होंने भारत के प्राचीन स्वरूप, संस्कृति और मूर्तिकला के भाव को समझा। तब उन्हें लगा कि भारतीय मंदिरों पर बनी मूर्तियां उदय शंकर के इस नृत्य के माध्यम से प्रतिबिंबित हो रही हैं। उनकी उत्सुकता इतनी बड़ी थी कि वे इसे जानने के लिए भारत आईं और उदय शंकर के नृत्य को उन्होंने अजंता एलोरा की गुफाओं, काशी के घाटों और सांस्कृतिक चित्रों में देखा।
1: उन पर आधारित एलिस की कलाकृतियां BHU के भारत कला भवन म्यूजियम की दर्शक दीर्घा में प्रदर्शित हैं, जहां उदय शंकर के नृत्य को और दूसरी भारतीय कलाओं के तालमेल को बताया गया है। उदय शंकर ने एलिस बोनर के साथ 1930 में भारत भ्रमण कर नृत्यों की भाव भंगिमाओं का चित्रांकन किया। एलिस 1931 में ही उदय शंकर के साथ काशी भी आई और तब यहाँ केसी घाट ने उन्हें फिर वापस कहीं और जाने नहीं दिया।
2: उस समय भारत या बनारस में नृत्य को अच्छे नजरिए से नहीं देखा जाता था। इस कारण उदय शंकर को कहीं से भी कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली। तब एलिस बोनर ने बनारस से यूरोप, अमेरिका आदि देशों में उनके कार्यक्रम तथा वेशभूषाओं की व्यवस्था देखने का जिम्मा उठाया और इस तरह एलिस बोनर और उदय शंकर ने लगभग 30 साल तक एक साथ काम किया। एलिस बोनर भारतीय कला और संस्कृति से प्रभावित होकर भारत तो आई उन्हें देखने ही थी, लेकिन 80 घाट पर जहां वो रहने लगी उस जगह आज एलिस बोनर इंस्टीट्यूट है।
1: और इधर उदय शंकर के संगीत और नृत्य प्रेम से गाजीपुर स्थित बिरनो ब्लॉक नसरतपुर के लोग आज भी शिद्दत से उन्हें याद करते हैं। उनकी यादें आज भी गाँव के लोगों के मन में बसी हैं, जो उन्हें याद रखे हैं। नसरतपुर के पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि गाँव में उदय शंकर का परिवार बंगाली बाबू के नाम से मशहूर था और पूरा परिवार शुरू से ही व्यवहार कुशल और व्यक्तित्व का धनी था। उनके परिवार के सदस्य सदा गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के लिए सदैव तैयार रहते थे। गांव वासियों के प्रति उनका उदार रवैया ग्रामवासी कभी भुला नहीं पाएंगे।
2: उदय शंकर को आधुनिक भारतीय नृत्य का प्रणेता माना गया है, क्योंकि उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के सभी आयामों में पश्चिमी रंगमंचीय तकनीक के साथ अपने नए रंग भरकर 1920 से 1930 तक के दशक में उसे यूरोप, अमेरिका सहित दुनिया भर के अनेक देशों में प्रतिष्ठित किया। अपने कुछ मित्रों की सलाह पर वर्ष 1938 में उदय शंकर ने भारत लौटकर हिमालय पर्वत की गोद में बसे प्रकृति की खूबसूरत नेमत से भरपूर अल्मोड़ा शहर को अपनी भावी योजनाओं को अंजाम देने के लिए चुना।
1: ऐसा भी कहा जाता है कि गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर की प्रेरणा से उन्होंने अपना स्कूल भारत में संचालित करने का मन बनाया था और इसके लिए वर्ष 1939 में अल्मोड़ा शहर में उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर की स्थापना की गई। इस काम में उनके साथ कथकली के प्रख्यात गुरु शंकरन नंबूदरी, भरतनाट्यम के कंडप्पा पिल्लई, मणिपुरी के अम्बी सिंह और संगीत के मैहर घराने के उस्ताद अलाउद्दीन खान शामिल थे।
2: और इसमें उनके इस समूह में गुरुदत्त, मैडम सिमकी, अमला, नरेंद्र शर्मा, जोहरा सैगल, लक्ष्मी शंकर, विष्णु रास, मंगेश राव, प्रभात गांगुली, शिशिन भट्टाचार्य, माधवन नायर, कनकलता तथा उनके अपने भाई रविशंकर भी छात्र रूप में शामिल हो गए। लेकिन इतने गुणी व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने के बावजूद ये केंद्र मात्र 4 वर्ष ही अस्तित्व में रहा। उनके अभिनव प्रयोगों के बावजूद उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर धन की कमी के कारण 1942 में बंद हो गया। बड़े भारी मन से उदय शंकर ने अल्मोड़ा छोड़कर वापस जाने का फैसला कर लिया। तब उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर का सारा सामान लंबे समय तक अल्मोड़ा में ही पड़ा रहा।
1: हम यहाँ सामान का जिक्र श्रोताओं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें उदय शंकर के माने गए कथकली नृत्य गुरु पंडित शंकरन नंबूदरी का दिया हुआ उपहार भी शामिल है, जिसके बारे में उदय शंकर का कहना था कि इससे उनका अंतरंग जुड़ाव है। तो हुआ यूं कि अल्मोड़ा में बाकी पड़े सारे सामान के साथ उदयशंकर इंडिया कल्चरल सेंटर में होने वाले कार्यक्रम से पहले एक विशाल और भव्य धातु निर्मित पानस यानी कि ऊंचा दीपक, जिसे हमारे यहाँ समई कहा जाता है और केरला में इसे पानस कहा जाता है, उसे प्रज्वलित किया जाता है। तो वो पानस अर्थात समय भी था और इस पानस अर्थात समय को भी उसी सामान के साथ रखा गया था जिसकी नीलामी होनी थी। पीतल धातु से बने एक क्विंटल वजन से भी ज्यादा वजनी इस पानस को उदयशंकर को उनके गुरु पंडित नंबूदरी ने उपहार में दिया था।
2: उदयशंकर ने अपने इन गुरु से केरल जाकर उनके गांव में ही रह रह कर नृत्य की भंगिमाओं एवं बारीकियों को सीखा था। ये पानस यानी समय 1 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचा है और इसमें दीपक जलाने के लिए लगभग 2 लीटर तेल की आवश्यकता होती है और एक साथ 100 बत्तियां जलती हैं और बत्तियां जलाने वाले हिस्से की परिधि भी लगभग 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। इस पानस को 2 भागों में खोला जा सकता है और इस प्रयोग से पहले जोड़कर इसे पूरा किया जाता है, तब इसका उपयोग हो पाता है।
1: श्रोताओं, किसी विशेष अवसर पर इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से पहले इसके सभी हिस्सों को खोलकर अलग कर लिया जा सकता है और दीप प्रज्वलन के लिए उसे पुनः जोड़ा जाता है। ये इतना भारी है कि इसकी ऊपरी चक्कर को खोलने के लिए 3-4 व्यक्ति पकड़कर घुमाते हैं, तब कहीं ये खुल पाता है। इस पानस की नीलामी के समय उदयशंकर मन से बहुत द्रवित थे। वे दुखी मन से बोले थे कि चाहे इस पानस का मूल्य कम भी मिले, लेकिन ये पानस केवल उस व्यक्ति को ही मिले जो कला का पारखी हो और इस अमूल्य धरोहर को संजो कर रख सके, क्योंकि इससे मेरा अंतरंग जुड़ाव है।
2: उदयशंकर की इच्छा के अनुसार ये पानस हरिकिशन लाल शाह गंगोला और उनके पुत्र जगदीश लाल शाह गंगोला ने खरीदा, जो गंगोला परिवार की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। यहाँ श्रोताओं, हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि इस पानस को 1943-44 में नीलामी के बाद पहली बार 1954 में अल्मोड़ा में आयोजित शरद उत्सव में प्रज्वलित किया गया था।
1: जी, और तब से अल्मोड़ा नगर में आयोजित विभिन्न समारोहों में इस पानस अर्थात समय के दीप प्रज्वलित कर अनेक शख्सियतों ने यहाँ आयोजित कार्यक्रमों का शुभारंभ किया है, जिनमें प्रमुख हैं मैहर घराने के उस्ताद अलाउद्दीन खां, प्रख्यात सितार वादक और उदयशंकर के छोटे भाई भारत रत्न पंडित रविशंकर, उनकी पत्नी अन्नपूर्णा देवी, जोरा सेगल, नृत्यांगना सोनल मानसिंह और उदयशंकर के पुत्र आनंद शंकर। गंगोला परिवार के सदस्यों का कहना है कि उदयशंकर जैसे कलाकार का ये पानस समय वर्तमान में भी अल्मोड़ा में उदयशंकर इंडिया कल्चरल सेंटर की सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए उदयशंकर के योगदान का गवाह है और आज भी ये रंगकर्मी और संस्कृति प्रेमियों के लिए नृत्य सम्राट उदयशंकर के महान योगदान का एक प्रेरक स्तंभ बना हुआ है।
2: अब बात करें उदयशंकर के निजी जीवन की, तो उन्होंने अपने मित्र अक्षय नंदी की छोटी बहन और उनके ट्रुप में काम करने वाली 11 वर्ष छोटी खूबसूरत नृत्यांगना अमला नंदी से 1939 8 मार्च को विवाह कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। अमला ने 1942 में उनके पुत्र आनंद शंकर को जन्म दिया, जो आगे चलकर एक गायक और संगीतकार बने। जीवन में चले उतार चढ़ाव, ऊंच नीच को सुलझाते हुए जीवन की डगर पर चलते हुए अमला ने उदय शंकर की दूसरी संतान खूबसूरत पुत्री ममता शंकर को जन्म दिया, जो एक बेहतरीन अभिनेत्री, नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं और कोलकाता में उदयन डांस कंपनी भी चलाती हैं।
1: और चलिए अब बात करते हैं भारतीय आधुनिक नृत्य कला के जन्मदाता उदय शंकर के ड्रीम प्रोजेक्ट की। जी हाँ, उनका ये प्रोजेक्ट था नृत्य पर एक फिल्म निर्माण करने का। वो चाहते थे कि उनकी कला का प्रचार प्रसार हो, इसलिए एक संस्थान की स्थापना भी वो करना चाहते थे। इधर उनकी आयु भी बढ़ती जा रही थी, वो सोचते थे कि उनका नृत्य बना रहे, बचा रहे, बसा रहे। और सन 1965 में एक ऐसा संस्थान बनाया गया बंगाल के कोलकाता शहर में। इस संस्थान में अमला शंकर को निर्देशक बनाया गया।
2: अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं और बात करते हैं उदय शंकर के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी उनकी बनाई नृत्य विधा को संजोए रखने के लिए बनाई गई फिल्म कल्पना की। ये काम जोर शोर से चलने लगा। फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट तैयार की गई। इस फिल्म का लेखन, निर्देशन, नृत्य निर्देशन स्वयं उदय शंकर ने किया। और फिल्म में हीरो की भूमिका उदय शंकर और हीरोइन की भूमिका अमला शंकर ने निभाई। फिल्म की पटकथा अमृतलाल नागर ने लिखी और गीत सुमित्रा नंदन पंत और भील लोकगीत देवीलाल समर के थे और संगीत विष्णुदास शिराली ने रचा था।
1: श्रोता, 1948 में बनी फिल्म कल्पना एक नृत्य प्रधान फिल्म थी जो एक युवा नर्तक के नृत्य अकादमी स्थापित करने के सपने के इर्द गिर्द घूमती है। ये पहली फिल्म थी जिसमें एक भारतीय शास्त्रीय नर्तकी को प्रमुख भूमिका में प्रस्तुत किया गया था और इस फिल्म को पूरी तरह से एक नृत्य बैले और एक फैंटेसी के रूप में फिल्माया गया था। ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप रही थी, लेकिन 2008 में गोवा शहर में इसे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के खजाने के अनुभाग के एक भाग के रूप में अभिलेखागार में अन्य दुर्लभ रत्नों के साथ दिखाया गया था।
2: उदय शंकर को अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी थी। हुआ ये कि फिल्म बनना शुरू हुई तो पैसों की कमी के कारण उदय शंकर को अपना अल्मोड़ा वाला उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर बंद कर देना पड़ा, जिसका उदय शंकर को बहुत गहरा धक्का लगा। और तब उनकी पत्नी अमला शंकर ने ही बड़े धैर्य और साहस का परिचय देते हुए अपने पति उदय शंकर को संभाला और किसी तरह इस फिल्म को पूरा करने में सहयोग दिया।
1: लेकिन अमला शंकर और उदय शंकर की सारी मेहनत, हिम्मत और धैर्य सब जवाब दे गए जब रिलीज के बाद फिल्म कल्पना पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि अब इस फिल्म की हिफाजत किसी बेशकीमती नगीने की तरह की जाती है और संघ 2010 में मार्टिन स्कॉर्सेसे, जो कि एक प्रसिद्ध अमेरिकी फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक हैं, उनकी कंपनी वर्ल्ड सिनेमा फाउंडेशन ने इस फिल्म के डिजिटल संरक्षण का बीड़ा उठाया है। वैसे ये बात बिल्कुल सही है, उदय शंकर द्वारा बनाई गई कल्पना नामक फिल्म भारतीय सिनेमा की अनोखी, अनूठी प्रयोगात्मक कृति मानी जाती है। इस फिल्म में नृत्य कला, दृश्य कला और फिल्मांकन को एक साथ पिरोकर उदय शंकर ने दर्शकों को एक नई राह दिखाई है।
2: बिल्कुल, इसके साथ ही रचनात्मकता और भारतीय नृत्य कला में अमूल योगदान के लिए उदय शंकर को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 1960 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया और उसके बाद सन 1962 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से भी नवाजा गया। और पुरस्कारों का सिलसिला यही नहीं थमा, सन 1971 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण यानी देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया और सन 1975 में उन्हें देशी कोतम नामक विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन का सर्वोच्च सम्मान दिया गया।
1: हिंदी भाषा के प्रमुख साहित्यकार, आलोचक, संपादक, संस्कृति कर्मी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अशोक वाजपेयी का कहना है कि उदय शंकर का नृत्य कम से कम तीन विश्वासों से प्रेरित नृत्य था। एक, शास्त्रीयता में विश्वास, दो, आधुनिकता में विश्वास और तीसरा, आत्मविश्वास। जिन कलाकारों ने भारतीय नृत्य में पश्चिमी रुचि जगाई उनमें उदय शंकर का नाम पहली पंक्ति में आता है। हम में से वे सभी जो भारतीय नृत्य के इतिहास और उसके आधुनिक काल से परिचित हैं, वो ये भी जानते हैं कि उदय शंकर ने एक तरह की शास्त्रीय आधुनिकता विकसित करने का प्रयास किया था।
2: एक नर्तक और नृत्य चिंतक के रूप में वे एक ओर तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का वैभव, सुषमा, ऊर्जा, लालित्य पश्चिम के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे जो तब तक हमारी नृत्य परंपरा से अनभिज्ञ था। दूसरी ओर वे इस परंपरा में प्रयोग की संभावना और उसमें आधुनिक नवाचार की तलाश करना चाह रहे थे। पश्चिम में उस समय आधुनिकता के अंतर्गत उनकी अपनी परंपरा लगातार प्रश्नांकित की जा रही थी। कई बार उसे हाशिए पर डालकर कई कल्पनाशील और दुस्साहसी सृजनात्मकता का बोलबाला था। कलाओं में आख्यान को अपदस्थ कर अमूर्तन पर आग्रह बढ़ रहा था। उदय शंकर इन वृत्तियों को भी किसी हद तक अपने नृत्य में समाहित और संबोधित करना चाह रहे थे। वे भारतीय नृत्य के पारंपरिक रूपकारों को पुनः संयोजित कर एक नए किस्म के समावेशी और साहसिक शास्त्रीयता विकसित करना चाहते थे।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक नर्तक और नृत्य चिंतक के रूप में वे एक ओर तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का वैभव सबके सामने रखना चाहते थे जो अब तक हमारी नृत्य परंपरा से अनभिज्ञ था, तो दूसरी ओर वे इस परंपरा में प्रयोग की संभावना और उसमें आधुनिक नवाचार की तलाश करना चाह रहे थे। श्रोताओं, उस समय जिन कलाकारों ने भारतीय नृत्य में पश्चिमी रुचि जगाई, उनमें उदय शंकर का नाम पहली पंक्ति में आता है। उन्हें किसी भी तरह का शासकीय या सार्वजनिक समर्थन भी प्राप्त नहीं था। उस समय उनके वित्तीय साधन अल्प और सीमित थे। ये बात तो है, क्योंकि वो नृत्य के किसी पारंपरिक परिवार से नहीं आते थे, इसलिए उन्हें किसी भी तरह का सामूहिक समर्थन भी नहीं मिला था। उनका प्रयत्न सदा एकांतिक रहा।
2: उनका दुस्साहस, उनकी नृत्य परिकल्पना और नृत्य के प्रति उनकी जिजीविषा का ही ये फल था कि इसी काम से उनकी सार्थकता प्रकट होती है। उस समय उनके अपने व्यक्तित्व का बड़ा मोहक आकर्षण था और उनके इसी व्यक्तित्व की सफलता और सार्थकता में बड़ी भूमिका रही। उदय शंकर ने विभिन्न शैलियों के नृत्य से उनके कई तत्वों को जोड़कर अपनी एक विशिष्ट और लगभग अद्वितीय शैली बनाई थी। यदि इन शैलियों की परंपराओं में हमेशा व्यक्तित्व का भी महत्व होता, उसका केंद्र बिंदु भी परंपरा के अंदर ही लेता है, बाहर नहीं।
1: पर उदय शंकर किसी पारंपरिक शैली के नृत्यकार नहीं बने। हालांकि नृत्य की प्रत्येक पारंपरिक शैली से उन्होंने कुछ न कुछ जरूर लिया, फिर चाहे वो कथक हो, ओडिसी, भरतनाट्यम या कथकली, कोई भी नृत्य विधा क्यों ना हो, नृत्य की हर शैली का प्रभाव उनके नृत्य में स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन फिर भी किसी एक शैली में समाहित होता नजर नहीं आता। पर यह बात कहना गलत नहीं होगा कि उनकी थोड़ी बहुत परंपरा भी बनी, जिसमें नरेंद्र शर्मा और अमला शंकर, जो उनकी पत्नी भी थी, उन जैसे महत्वपूर्ण नर्तक भी हुए, पर कुल मिलाकर ये शैली बहुत आगे नहीं चल पाई। इसमें वे नृत्य में नवाचार के प्रतीक बने, मान्य और लोकप्रिय भी हुए, और इन्हीं नवाचारों के क्षेत्र में शास्त्रीयता में उदय शंकर से सभी ने प्रेरणा ली है।
2: नवाचार में दुस्साहस क्या और कैसे होता है, ये सब उदय शंकर के नृत्य को देखकर ही हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। क्योंकि उदय शंकर ने अपने नृत्य में जो आत्मविश्वास दिया, अपनी नृत्य बैले शैली में आधुनिक शैली में जो प्रयोग किए, उन्हें भी उदय शंकर के पथ प्रदर्शक अपने नृत्य प्रयोग के विस्तार के रूप में जानते हैं। क्योंकि उदय शंकर ने विभिन्न शैलियों के बीच लगातार संवाद का जो सिलसिला शुरू किया था, वो भी किसी न किसी रूप में चलता रहा। उदय शंकर को मंच पर नृत्य करते हुए देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। सुप्रसिद्ध रूसी बैले नर्तकी अन्ना पावलोवा ने जब उदय शंकर को पहली बार मंच पर नृत्य करते हुए देखा था, तो बोली थी कि लगा जैसे अजंता में चिन्हित किसी देवता ने मानव शरीर धारण कर लिया है।
1: इसी तरह इटली की मूर्तिकार एलिस बोनर ने ज्यूरिख में उनका नृत्य देखकर कहा कि उदय शंकर के शरीर में चित्र और पत्थर की प्रतिमाओं की थिरकन है। इसी तरह उदय शंकर की उंगलियां, हथेलियां, आंखें और देह की भंगिमाओं का अनूठा मेल देखकर ही उनकी पत्नी अमला ने उदय शंकर पर मोहित होकर उनसे विवाह किया था। वे लिखती हैं, शिव तांडव तथा अग्नि पूजा देखकर मैं पागल हो गई कि कोई इतना सुंदर नृत्य कैसे कर सकता है। ये बात मैंने पहली बार समझी। उदय शंकर के द्वारा बनाई गई फिल्म कल्पना, जो 154 मिनट की थी, दृश्यों की गतिशीलता में इस फिल्म में दृश्य और ध्वनि का अद्भुत मेल दिखाई और सुनाई देता है। इस फिल्म में लगभग 200 वाद्यों का प्रयोग किया गया है। लोगों ने इस फिल्म में प्रयुक्त तबला सुना तो दंग रह गए कि एक ही वाद्य यंत्र से कोई इतनी आवाजें कैसे निकाल सकता है भला।
2: इसी तरह एक बार पेरिस से जब उदय शंकर भारत आए, तो मंदिरों में घूमते हुए वो केरल में कथकली नृत्य को देख के भौचक्के रह गए। उन्होंने लिखा कि बिना जाने बिना देखे मैं अपने नृत्य में ये लाता रहा हूँ। उदय शंकर का नृत्य ऐसा ही था। नृत्य पर प्रयोग की गई भारतीय संस्कृति को समेटे उनकी ये दृष्टि सदा जीवंत रहेगी। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को आधुनिक जामा पहनाकर भारतीय संस्कृति को विश्व के हर कोने तक पहचान दिलाने में अहम योगदान दिया है।
1: जी हाँ, और इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश संग्रहालय में राजपूत चित्रकला और मुगल चित्रकला की शैलियों का भी गंभीर अध्ययन किया और भारतीय नृत्य को एक समकालीन रूप देकर विचार न केवल मजबूत हुआ, बल्कि उन्होंने ये कर दिखाया। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वे भारतीय आधुनिक नृत्य के शिल्पी थे। यहाँ ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि कला की दुनिया में ऐसे कई नाम हैं जो समय की सीमाओं को पार कर अमरत्व पा गए हैं। उदय शंकर भी उन्हीं महान हस्तियों में से एक नाम है, जिन्होंने नृत्य को केवल एक प्रदर्शन की कला नहीं, बल्कि सांस्कृतिक सेतु का रूप दिया। जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य केवल परंपराओं तक सीमित था, उस दौर में उदयशंकर ने उसे विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाई। 26 सितंबर 1977 को कोलकाता में वे हमारे बीच से सदा सदा के लिए विदा हो गए। कोलकाता में उदयशंकर सेंटर ऑफ डांस आज भी उनकी समूह नृत्य परंपरा को संरक्षित और जीवित रखे हुए है, जिन्होंने कला को सीमाओं से मुक्त कर दिया।
2: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम कला कल्लोलिनी में अभी आपने सुना प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर जी के बारे में। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इजाजत दीजिए मनीषा
1: और संदीप शर्मा। लेकिन जाने से पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का और लेखन प्रमिला मुंशी दिवाकर का। तो फिर मिलेंगे कला कल्लोलिनी में एक और कला मनीषी के साथ, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: पूर्वी बंगाल और आसाम की यात्रा कर स्वामी जी बेलूर मठ लौट आए, पर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा था। शिष्यों ने उन्हें परिश्रम न करने की सलाह दी, पर वे कहां मानने वाले थे। पठन पाठन शिष्यों और दर्शनार्थियों से शास्त्रों की आलोचना पूर्ववत चल रही थी, साथ ही साथ चल रहा था वैद्य जी का इलाज। इलाज के दौरान कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। स्वामी जी को नींद नहीं आती थी।
1: उन्हीं दिनों मठ में एक नया एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका खरीदा गया। नई चमकदार पुस्तकों को देखकर एक शिष्य ने कहा,
2: इतनी सारी मोटी मोटी पुस्तकें, एक जीवन में इन्हें पढ़ लेना संभव ही नहीं।
1: शिष्य नहीं जानते थे कि स्वामी जी ने इन पुस्तकों में से 10 खंडों का अध्ययन समाप्त कर 11वें खंड को पढ़ना शुरू किया है। उन्होंने कहा,
3: मैंने 10 खंड पढ़ लिए हैं। अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लो, बता दूंगा।
2: क्या आपने इन्हें पढ़ लिया है?
3: और क्या, बिना पढ़े ही कह रहा हूँ।
0: इसके बाद स्वामी जी का आदेश पाकर शिष्य उन पुस्तकों में से चुन चुन कर कठिन विषयों में प्रश्न करने लगा। स्वामी जी ने उन प्रश्नों के जवाब तो दिए ही, कहीं कहीं उस पुस्तक की भाषा तक ज्यों के त्यों बोलने लगे। शिष्य स्वामी जी की असाधारण याददाश्त देख विस्मित होकर पुस्तकों को यथास्थान रखते हुए कहने लगा,
2: आश्चर्य! नहीं नहीं नहीं, ये मानवीय शक्ति नहीं हो सकती, असंभव।
3: देखा, एकमात्र ब्रह्मचर्य का पालन ठीक ठीक कर सकने पर सभी विद्याएं एक पल में सीख ली जा सकती हैं। मनुष्य का श्रुति घर स्मृति घर बन जाता है। इस ब्रह्मचर्य के अभाव से ही हमारा देश

0: मांगी। माताजी ने अनुमति दी कि उन्हीं के नाम पर संकल्प होगा। इससे स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए। यथा समय कुमार टुली से प्रतिमा मठ में लाई गई। पूजा के पहले दिन शारदा माता जी ने अपने बाग बाजार वाले निवास स्थान से मठ में आगमन किया। उनकी अनुमति लेकर ब्रह्मचारी कृष्णलाल महाराज सप्तमी के दिन पुजारी के आसन पर बैठे।
1: पंडित ईश्वरचंद भट्टाचार्य महाराज ने भी श्री माताजी के निर्देश पर देवगुरु बृहस्पति की तरह तंत्र धारक का आसन ग्रहण किया। यथाशास्त्र श्री दुर्गा माता की पूजा समाप्त हुई। श्री माताजी की इच्छा के अनुसार मठ में पशु का बलिदान नहीं हुआ। बलि के अनुकल्प के रूप में चीनी का नैवेद्य और मिठाई के ढेर प्रतिमा की दोनों ओर शोभायमान थे।
0: गरीब दुखी तथा असहायों को देहधारी ईश्वर मानकर संतोष पूर्वक भोजन कराना इस पूजा का विशेष अंग माना गया। इसके अतिरिक्त वेलूड़, बाली तथा उत्तरपाड़ा के परिचित तथा अपरिचित अनेक ब्राह्मण पंडितों को भी निमंत्रित किया गया और वे सभी आनंद पूर्वक सम्मिलित हुए थे। उस समय से मठ के प्रति उनका पूर्व विद्वेष दूर होकर ये विश्वास हो गया था कि मठ के सन्यासी गण यथार्थ में हिंदू सन्यासी हैं। श्री दुर्गा पूजा के बाद स्वामी जी की इच्छा के अनुसार मठ में प्रतिमा के सहयोग से श्री लक्ष्मी पूजा तथा श्री काली पूजा भी शास्त्र विधि के अनुसार अनुष्ठित हुई।
1: काली पूजा के बाद स्वामी जी अपनी माँ के साथ कालीघाट गए। बाल्यकाल में एक बार स्वामी जी को कोई कठिन रोग हुआ था। उस समय उनकी माँ ने मनोती मांगी थी कि पुत्र के रोग मुक्त होने पर काली देवी की विशेष पूजा देंगी और काली मंदिर में उनको लोटपोट करा लाएंगी। बाद में वे ये बात भूल गई थी। इस समय स्वामी जी की अस्वस्थता की बात सुनकर उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त करके पुत्र के पास समाचार भेजा। जननी के आदेश के अनुसार कालीघाट की आदि गंगा में स्नान करके भीगे वस्त्र सहित स्वामी जी श्री काली माता के पद कमलों में 3 बार लोटपोट हुए।
0: इसके बाद 7 बार मंदिर की प्रदक्षिणा समाप्त कर उन्होंने सभा मंडप के पश्चिम भाग में खुले आंगन में बैठकर होम करना प्रारंभ किया। यज्ञ की पवित्र अग्नि प्रज्वलित हुई। होम कुंड में घृत की आहुति देते हुए कामदेव सदृश कांति वाले सन्यासी मानो ब्रह्मा के सदृश लग रहे थे। अनेक लोग स्वामी जी को घेर कर उनके यज्ञ संपादन का दर्शन करने लगे। स्वामी जी ने मठ में लौटकर आनंद से कहा,
2: काली घाट में अभी भी कैसा उदार भाव देखा। मुझे विलायत से लौटा हुआ जानकर भी मंदिर के अध्यक्षों ने मंदिर में प्रवेश करने में किसी प्रकार बाधा न दी, बल्कि बड़े आदर के साथ मंदिर में ले जाकर इच्छा के अनुसार पूजा करने में मेरी सहायता की।

बेलूड़ मठ और उसके आसपास के स्थान स्वामी जी को अत्यंत प्रिय थे। मठ में गंगा के किनारे अथवा बेलूड़ ग्राम में वे प्राय ही टहलते। मठ के प्रांगण में स्थित आम के पेड़ के नीचे उनके बैठने का प्रमुख स्थान था। वहां खाट पर बैठ वे वार्तालाप करते, पुस्तकें पढ़ते अथवा पत्र, निबंध आदि लिखते। उनके वर्तमान समाधि मंदिर के कोने में स्थित बेल के पेड़ के नीचे उनका एक अन्य प्रिय स्थान था। उनका शयन कक्ष पुराने मठ भवन के दुमंजिले पर गंगा की ओर दक्षिण पूर्वी कोने पर स्थित था। उनके दिन का काफी समय इसी कमरे में बीतता। यही कमरा उनके भोजनालय और कार्यालय के रूप में भी काम आता। इसी कमरे में उनके वस्त्र, बिस्तर, आसन, चायदानी, मेज, कुर्सी, आलमारी, खड़ाऊ, लिखने के उपकरण, वाद्य यंत्र तथा अन्य उपयोग की चीजें जैसे पहले थीं, अब भी ठीक उसी प्रकार रखी हुई हैं। वो कमरा और कोई उपयोग में नहीं लाता, केवल कोई कोई वहां जाकर ध्यान आदि करता है। अपने कमरे की साज सज्जा को किस तरह से देखते थे ये एक बार उन्होंने

0: नहीं कहा था। एक दिन उनके कुछ दोस्तों ने कहा,
1: स्वामी जी, बचपन में विवाह करने के लिए कहने पर तुम कहते थे, विवाह नहीं करूंगा, मैं क्या बनूंगा देखना। तो तुमने जो कहा था वही किया स्वामी जी।
2: हाँ भाई, किया तो है। तुम लोग देख तो रहे हो, कुछ खा नहीं पाता और उस पर इतना परिश्रम। बाप रे, कितनी मेहनत की है। आज अमेरिकी लोगों ने देखो कैसी प्यार से खाट, बिछावन तथा गद्दी दी है। थोड़ा खा भी पा रहा हूं, परंतु भाई, भोग मेरे भाग में नहीं है। गद्दी पर सोते ही रोग बढ़ जाता है, दमे से प्राण निकलने लगते हैं। पुनः फर्श पर लेटता हूं तभी चैन मिलता है।
3: अपने सदा के अभ्यास के अनुसार वे बड़े तड़के में ही शैया त्याग देते और बाकी मठवासियों को भी जगाकर ध्यान, जप आदि में लग जाने को कहते। स्वास्थ्य ठीक रहा तो स्वयं भी सबके साथ मंदिर में ध्यान करने बैठते। इसके बाद उनका सुबह का कार्य था गौ सेवा तथा उद्यान की देखभाल। स्वामी ब्रह्मानंद के ऊपर सब्जी तथा फूल के बगीचे की जिम्मेदारी थी। उसके बगल में ही गायों के चरने का मैदान था। इन दोनों भूखंडों के सीमा विभाग को लेकर वे स्वामी ब्रह्मानंद के साथ कितनी ही बार बालकोचित प्रेम कलह में लग जाते ताकि गायें बगीचा चर न जाएं, और मठ के सन्यासीगण बड़े आनंद का उपभोग करते।
0: मठ के छोटे बड़े सारे कर्मों में स्वामी जी की तीक्ष्ण दृष्टि रहती थी और मठवासियों में से भी प्रत्येक उनकी सेवा करने की अवसर पाने को तत्पर रहता। नाव में होकर मठ से कलकत्ता जाते समय मल्लाह लोग उन्हें अपनी अपनी नाव में ले जाने के लिए झगड़ते। कभी कभी वे केवल कौपीन पहने मठ में चारों ओर घूमते अथवा एक बड़े लबादे से शरीर को ढककर गांव के निर्जन पथों पर अकेले ही घूमते। कई बार वे गंगा के तट पर अथवा मठ के भीतर किसी वृक्ष की घनी छाया में बैठे रहते। फिर अन्य किसी किसी समय वे अपने कमरे में बैठकर पुस्तकों के पन्ने पलटते या चित्र देखते। कभी कभी वे रसोई घर में जाकर रंधन कार्य का निरीक्षण करते और स्वयं अपनी इच्छा से दो एक अच्छी पकवान भी तैयार करते।
3: पशु पक्षियों के प्रति शैशव काल से ही स्वामी जी के मन में एक स्वाभाविक आकर्षण था। उनमें से किसी के भी उद्यान में घुसते ही ब्रह्मानंद शिकायत करते और स्वामी जी पशुओं का पक्ष लेकर प्रमाणित करने लगते कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। मठ में उन्होंने कुछ गायें, बत्तख, कुत्ते, बकरियां, सारस तथा हिरन पाल रखे थे। एक बकरी का नाम उन्होंने हंसी रखा था और उसी के दूध से उनकी सवेरे की चाय बनती थी। एक बकरी के बच्चे को वो प्रेम पूर्वक मटरू कहकर पुकारते थे और उसके गले में उन्होंने घुंघरू पहना दिए थे। मटरू दिन रात उनके पीछे पीछे घूमता रहता और वो भी उसके साथ छोटे बच्चों के समान दौड़ दौड़ कर खेला करते।
0: वे तत्कालीन समाज में प्रचलित अदब कायदों की विशेष परवाह नहीं किया करते थे। कभी पाँव में खड़ाऊ पहने, कभी नंगे बदन, कभी गेरुआ पहने तो कभी केवल कौपीन पहने, वे जैसी खुशी घूमते रहते। कभी कभी उनके हाथ में हुक्का या लाठी होती। कोट, शर्ट, कॉलर, जूता इत्यादि का कोई झंझट ही नहीं था। उन दिनों वे पूर्णतया स्वच्छंद अपने निर्जन मानस भूमि पर निवास कर रहे थे। नए लोग श्रद्धा पूर्वक उनका दर्शन करने को आ पहुंचते। वे स्वामी जी की अवस्था देखकर कहते, अच्छा तो ये ही विश्व विजयी स्वामी जी विवेकानंद है।
3: अपने पशु पक्षियों से उन्हें इतना प्रेम था कि कुछ दिन बाद मटरू के मर जाने पर उन्होंने खेत पूर्वक कहा था,
2: बड़े आश्चर्य की बात है, मैं जिससे भी थोड़ा प्यार करता हूँ वही मर जाता है।
3: इन जंतुओं के आहार आदि की व्यवस्था वे स्वयं ही करते और स्वामी सदानंद इसमें उनके प्रधान सहायक थे। वे उन सबके साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप आदि भी करते, मानो वे मनुष्यों के समान ही समझदार और बुद्धिमान हों, जैसे वे जानवर नहीं मानव हों। एक दिन उन्होंने हंसते हुए कहा था,
2: मटरू अवश्य ही पिछले किसी जन्म में मेरा कोई संबंधी रहा होगा।
3: बीच बीच में वे बकरे हंसी के पास जाकर दूध के लिए अनुरोध करते, मानो दूध देना या न देना उनकी इच्छा पर निर्भर हो। इन प्राणियों के प्रति उनके स्नेह की स्पष्ट छाप 7 सितंबर को भगिनी क्रिस्टीन के नाम लिखे उनके पत्र में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।
2: वर्षा का जो जल मठ में जमा हो जाता है, उसके निष्कासन के लिए एक गहरी नाली खोदी जा रही है। उसी कार्य में हाथ बटाकर मैं अभी अभी लौटा हूं। मेरा विशाल काय सारस तथा बतखें सब बड़े आनंद में हैं। मेरा पाला हुआ काला हिरन मठ से भाग गया था। उसे ढूंढ निकालने में कई दिनों तक हमें बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। मेरी एक बतख कल दुर्भाग्यवश मर गई। उसे लगभग सप्ताह भर से सांस लेने में कष्ट हो रहा था। इन सब घटनाओं को देखकर हमारे एक वृद्ध रसिक साधु कह रहे थे, महाराज जब इस कलयुग में नमी और वर्षा से बतख को जुकाम हो जाता है और मेंढक छींकने लगते हैं, तो फिर जीवित रहने से कोई लाभ नहीं। एक बतख के पंख झड़ रहे थे। इसका कोई उपचार न मालूम होने के कारण एक पात्र में थोड़े जल में किंचित कार्बोलिक एसिड मिलाकर उसे उसमें कुछ मिनट के लिए ये सोचकर डाल दिया गया था कि या तो वो पूरी तौर से चंगी होठेगी अथवा मर जाएगी, परंतु अब वो ठीक है।
0: मठ के कुत्ते का नाम था बाघा। वो मठ के अन्य सभी जानवरों की रखवाली करता, दादागिरी भी करता और सोचता कि मठ में उसका एक विशिष्ट स्थान है। एक बार उसकी अत्यधिक शैतानी से तंग आकर उसे गंगा के उस पार ले जाकर छोड़ दिया गया था, परंतु बाघा को यह व्यवस्था स्वीकार न थी। उसे मठ से लगाव था और विशेषकर स्वामी जी को छोड़कर वो रह ही नहीं सकता था। दिन भर बड़े कष्ट में बिताने के बाद शाम तक उसने उपाय सोच लिया और एक नाव में चढ़ बैठा। जब नाव के मल्लाहों और यात्रियों ने उसे भगाने का प्रयास किया तो भी वो उतरा नहीं, बल्कि दांत निकालकर गरजते हुए उन्हें धमकी देने लगा।
3: किसी तरह उसे चुपचाप पार उतरा देना ही उचित समझकर सबने उसे इस पार छोड़ दिया। इस पार आकर वो रात उसने इधर उधर छिपकर बिताई। भोर के 4 बजे जब स्वामी जी स्नान घर में प्रवेश करने जा रहे थे, उसी समय पांव किसी चीज से टकरा जाने पर वे चौंक उठे और ध्यान से देखा तो वो बाघा निकला। बाघा उनके चरणों में लौटकर विनय पूर्वक क्षमा मांग रहा था और फिर से मठ में रहने की याचना कर रहा था। उसने ठीक समझ लिया था कि इस विपत्ति से एकमात्र स्वामी जी ही उसका उद्धार कर सकते हैं। इसीलिए अन्य किसी की भी नींद खुलने से पहले ही जहां पर स्वामी जी की शरण पाई जा सकती है वहीं बैठकर वो प्रतीक्षा कर रहा था। स्वामी जी ने उसकी पीठ थपथपाकर स्नेह दिखाते हुए उसे आश्वस्त किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने सबको बोल दिया कि बाघा चाहे जो भी करे अब उसे मठ से भगाया नहीं जा सकेगा।
0: बाघा की और भी कई बातें बड़ी अद्भुत थी। ग्रहण के बाद संध्या पूजन के समय शंख घंटे बजने पर ये भी सबके साथ स्नान करने गंगा में उतरता था। स्वामी जी के देह त्याग के काफी दिनों बाद जब बाघा की मृत्यु हुई तो उसका शव गंगा में विसर्जित कर दिया गया। ज्वार के पानी के साथ उसका शरीर बहकर चले जाने पर भी भाटे के समय सबने विस्मय पूर्वक देखा कि वो मठ की सीमा में ही गंगा की मिट्टी पर पड़ा है। इससे मठ के प्रति बाघा के लगाव का परिचय पाकर एक ब्रह्मचारी ने वरिष्ठ सन्यासियों की अनुमति लेकर बाघा को वहीं पर दफना दिया।

0: उन दिनों जाड़े के मौसम में प्रायः बड़े दिन की छुट्टियों में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करता था। उस वर्ष दिसंबर में कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन होने तथा स्वामी जी के बेलूर मठ में उपस्थित रहने के कारण अनेक नेता उन्हें न केवल विश्व प्रसिद्ध साधु के रूप में बल्कि भारतीय नवजागरण के एक देश प्रेमी अग्रदूत मानकर उनसे मिलने को आया करते थे। स्वामी जी अपने बिगड़े हुए स्वास्थ्य की बात भूलकर सदा ही इन देश नायकों के साथ वार्तालाप को प्रस्तुत रहते थे और श्रोतागण भी इससे मुग्ध हो जाते तथा स्वामी जी की बातें उनके मन में अंकित हो जाती।
1: स्वदेश की अनेक समस्याओं पर उन्होंने चिंतन किया था और उनके समाधान भी ढूंढ निकाले थे, परंतु सुयोग्य कर्मियों के अभाव में उन विचारों के कार्यान्वित करने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। अतएव आग्रह करने वाले श्रोता मिलने पर वे उत्साह पूर्वक दीर्घ काल तक इन बातों पर चर्चा करते थे। एक दिन मठ के विस्तृत प्रांगण में टहलते हुए वे उत्साह और आवेग पूर्ण भाव से लगभग 1.5 घंटे तक एक विषय पर बोलते रहे। इन साक्षात्कारों का उल्लेख करते हुए एक अखबार में छपा था,
2: पिछले कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर कलकत्ते में हमारी उनके साथ अंतिम बार भेंट हुई थी। उस समय उत्साह के साथ उन्होंने हम लोगों से जिस विशुद्ध तथा उच्च कोटि की हिंदी में धारा प्रवाह वार्तालाप की, वैसी भाषा बोल पाना किसी उत्तर भारतीय हिंदी भाषी के लिए भी अत्यंत गौरव की बात होगी।
0: राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के समय श्रीयुत मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी, वे भी स्वामी जी के दर्शनार्थ बेलूर मठ आए थे, परंतु उन्हें दर्शन नहीं हो सके। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है,
3: ब्रह्म समाज के घनिष्ठ संपर्क में आने के बाद विवेकानंद को देखे बिना रह पाना मेरे लिए संभव न था, इसलिए मैं बड़े उत्साह के साथ लगभग सारा रास्ता ही पैदल चलता हुआ बेलूर मठ गया था। मठ का शांत वातावरण मुझे बड़ा अच्छा लगा। स्वामी जी उस समय अस्वस्थ होकर कलकत्ते के मकान में थे, इस कारण उनसे भेंट होना संभव नहीं, ये जानकर मैं बड़ा निराश और दुखी हुआ था।
1: उस समय स्वामी जी की अस्वस्थता के कारण सामान्य आगंतुकों को उनके पास मिलने नहीं दिया जाता था। एक दिन लोकमान्य तिलक मठ के दक्षिणी भाग में बेल के पेड़ के नीचे नाव से उतरे और उन्होंने अपना नाम लिखा हुआ एक कार्ड एक वृद्ध साधु को दे दिया, परंतु साधु ने बताया कि स्वामी जी बीमार हैं और उनसे भेंट नहीं हो सकती। तिलक अपना कार्ड छोड़कर चले गए। संध्या के समय जब स्वामी जी नीचे उतरे तो कार्ड पाते ही उन्होंने तिलक से मिलने की इच्छा व्यक्त की, परंतु वे तो जा चुके थे। ये सुनकर स्वामी जी बड़े नाराज हो गए और बोले कि उन वृद्ध साधु ने अनुचित कार्य किया है और कहा कि वे वृद्ध साधु निश्चयानंद का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, उनके लिए उचित था कि वे तिलक का नाम जानते और स्वामी जी के साथ उनकी भेंट कराते। स्वामी जी ने पत्र लिखकर तिलक से पुनः आने का अनुरोध किया और 2 दिनों के भीतर ही तिलक आए भी।
0: तिलक के साथ मठ के दक्षिणी ओर के मैदान में टहलते हुए स्वामी जी ने उनके साथ बातचीत की। उनके निकट दूसरा कोई भी न था, तो भी दूर से दिख रहा था कि स्वामी जी प्रेरणा के आवेग में सिर तथा हाथ हिलाते हुए बोलते जा रहे थे और तिलक धैर्य तथा शांति के साथ सुन रहे थे। निश्चयानंद के मतानुसार तिलक का कार्यक्षेत्र महाराष्ट्रीय ब्राह्मण समाज के बीच ही सीमित था। स्वामी जी के संपर्क में आने के बाद से ही वो जनता के बीच में फैल गया। उनके मतानुसार लोकमान्य तिलक ने और भी कई बार मठ में आकर स्वामी जी के साथ बातचीत की थी और एक दिन स्वामी जी ने मुगलाई चाय बनाकर उन्हें पिलाई थी। जायफल, जावित्री, इलायची, लवंग, जाफरान आदि को एक साथ मिलाकर उबालने के पश्चात उस काढ़े में चाय की पत्ती, दूध तथा चीनी मिलाकर वो चाय बनी थी।

0: दीन दरिद्र अभागों के लिए स्वामी जी का मन रोता रहता था, अतः वे हमेशा उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते थे। उसी संदर्भ में एक घटना का वर्णन सुनिए।
1: उन दिनों मठ की जमीन की सफाई करने तथा मिट्टी काटने के लिए प्रतिवर्ष कुछ संथाल स्त्री पुरुष आया करते थे। उनके साथ मिलकर स्वामी जी उनके सुख दुख पर चर्चा करते तथा तरह तरह से हास परिहास भी किया करते। उनमें से एक का नाम केष्टा था। वो स्वामी जी का प्रिय पात्र तथा कामकाज में बड़ा होशियार। स्वामी जी जब उससे बातें करने जाते तो कभी कभी वो कह उठता,
2: अरे स्वामी जी बाप, तू हमारे काम के समय यहाँ ना आया कर। तेरे साथ बात करने से हमारा काम बंद हो जाता है और बाद में बूढ़ा बाबा आकर डांटता है।
3: नहीं नहीं, बूढ़ा बाबा नहीं डांटेगा, तू अपने देश की बातें बता। अच्छा ये बता, आज यहाँ खाना खाएगा क्या?
2: नहीं बाप, नहीं नहीं, अब हम तुम लोगों का छुआ नहीं खाते। अब मेरा ब्याह जो हो गया है, तुम्हारा छुआ नमक खाने से हमारी जात जाएगी रे बाप।
3: तो नमक मत खा, बिना नमक का तरकारी पका देंगे, तब तो खाएगा ना।
0: केष्टा राजी हो गया। स्वामी जी ने उसके लिए पूड़ी, तरकारी, मिठाई, दही आदि की व्यवस्था कर दी।
2: अरे स्वामी जी बाप, ऐसी चीजें कहाँ से पाई? हमने तो ऐसा खाना कभी नहीं खाया बाप, कभी नहीं खाया।
1: स्वामी जी ने स्वयं सामने बैठकर उन्हें खाना खिलाया और बोले,
3: तुम लोग नारायण हो, आज मेरा नारायण को भोग देना पूरा हुआ।
0: भोजन के बाद संथाल लोग तृप्त होकर चले गए तो स्वामी जी ने शरद बाबू से कहा,
3: इन्हें देखा मानो साक्षात नारायण है। ऐसा सरल चित्त, ऐसा निष्कपट सहज प्रेम पहले कभी नहीं देखा।
0: तदनंतर मठ के सन्यासियों की ओर उन्मुख होकर वे बोले,
3: देखो वे लोग कैसे सरल हैं, इनके दुख थोड़ा दूर कर सकोगे? नहीं तो गेरुए वस्त्र पहनने से क्या लाभ हुआ? पर हिताये सर्वस्व अर्पण, इसी को सच्चा सन्यास कहते हैं। अच्छी चीजें कभी इन्हें भोग करने को नहीं मिली। जी में आता है कि मठ सब बेचकर इन्हीं गरीब दुखी दरिद्र नारायणों में बांट दूं। हमने तो वृक्ष के नीचे वास करने को ही सार समझा है। आह, देश के लोग खाने पहनने को नहीं पाते, फिर हम कैसे अपने मुख में अन्न डालते हैं? हाय।
1: कहते कहते उनके आंखों से आंसुओं की धार बह चली। थोड़ा संभल कर वे बोले,
3: देश के गरीब दुखियों के लिए कोई नहीं सोचता है रे। जो लोग राष्ट्र के मेरुदंड हैं, जिनके परिश्रम से अन्न उपजता है, जिन लोगों के एक दिन काम बंद कर देने से नगर में हाहाकार मच जाता है, हाय, उन्हें सहानुभूति दिखाने वाला, उनके दुख शोक में सांत्वना देने वाला देश में कोई नहीं है रे। देखना, हमारी सहानुभूति के अभाव में मद्रास अंचल के हजारों पैरिया धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हम लोग दिन रात उनसे यही कहे जा रहे हैं, छूना मत, छूना मत। देश में क्या अब दया धर्म नहीं बचा है रे भाई? केवल छुआछूत मानने वालों का दल है। ऐसे आचार व्यवहार के मुख पर मारो झाड़ू, मारो लाठी। तुम लोग बुद्धिमान लड़के हो, यहां इतने दिनों से आ रहे हो, अब तक क्या किया है बोलो तो? दूसरों के लिए क्या एक जन्म दान में नहीं दे सकते? अगले जन्म में आकर वेदांत आदि पढ़ लेना, इस बार परोपकार के लिए शरीर दान दे दो, तभी समझूंगा कि मेरे पास आना सार्थक हुआ है।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। दिन के 12 बजे हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। दोपहर कालीन सभा में आप सभी का हम पुनः स्वागत करते हैं। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, तराने आजादी।
1: आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी। तराने आजादी सुनने वाले सभी श्रोताओं को दीप्ति का बहुत बहुत नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीप्ति को दें इजाजत। नमस्कार, सुनते रहें 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक गई राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब समय है कार्यक्रम भारत भारती का।

निमाड़ का सांस्कृतिक इतिहास अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली है। यहाँ का जनजीवन कला और संस्कृति से संपन्न है। विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियों से घिरा यह अंचल नर्मदा नदी का पावन तट पाकर यहाँ के जनजीवन को आनंद विभोर करता रहता है। तो अब बिना देर किए आनंद लेते हैं निमाड़ी लोक गायन का। कलाकार हैं शिव गुप्ता और उनके साथी।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: एक प्रस्तुत है संत सिंगाजी निमाड़ के, संत निर्गुणी पंथ के संत के विचारों को निमाड़ी भाषा में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम भारत भारती में अब समय है एक छोटे से अंतराल का।
1: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

निमाड़ का सबसे फेमस गीत लोकगीत, जब भाभी के घर ननंद जाती है तो भाभी अपने बच्चे घर, जब बच्चा होता है निमाड़ में, तो कुछ खिलौना लेके जाती है

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

शबरी को मतंग ऋषि ने कहा था कि तेरे आंगन में राम आएंगे। शबरी ने इंतजार किया कि मेरे राम मेरे आंगन में आएंगे, प्रभु का इंतजार किया। अरे हम बूढ़ी हुई गई रे वाट देखत देखत, ए राम कब आओगे।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: एक लड़का लड़की आपस में बात कर शादी का पहला, उनकी कल्पना कवि की है।

0: की।
1: आज कार्यक्रम भारत भारती में आप आनंद ले रहे थे निमाणी लोक गायन का, जिसे प्रस्तुत किया शिव गुप्ता और उनके साथियों ने। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
3: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।
4: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: 2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन, प्रवेश निःशुल्क।

मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञानवर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आज़ाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज मैं आपको इस कार्यक्रम में सुना रहा हूं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पशु से मनुष्य।

0: दुर्गा माली डॉक्टर मेहरा बारट लॉ के यहां नौकर था। 5 रुपए मासिक वेतन पाता था। उसके घर में स्त्री और 2-3 छोटे बच्चे थे। स्त्री पड़ोसियों के लिए गेहूं पीसा करती थी। 2 बच्चे जो समझदार थे इधर उधर से लकड़ियां गेहूं उपले चुन लाते थे, किंतु इतना यत्न करने पर भी वे बहुत तकलीफ में रहते थे। दुर्गा डॉक्टर साहब की नजर बचाकर बागीचे से फूल चुन लेता और बाजार में पुजारियों के हाथ बेच दिया करता था। कभी कभी फलों पर भी हाथ साफ किया करता। यही उसकी ऊपरी आमदनी थी। इससे नोन तेल आदि का काम चल जाता था। उसने कई बार डॉक्टर महोदय से वेतन बढ़ाने की प्रार्थना की, परंतु डॉक्टर साहब नौकर की वेतन वृद्धि को छूत की बीमारी समझते थे, जो एक से अनेकों को ग्रस लेती है। वे साफ कह दिया करते, भाई मैं तुम्हें बांधे तो हूं नहीं, तुम्हारे यहां निर्वाह नहीं होता तो कहीं और चले जाओ, मेरे लिए मालियों का काल नहीं है। दुर्गा में इतना साहस न था कि वो लगी हुई रोजी छोड़कर नौकरी ढूंढने निकलता। इससे अधिक वेतन पाने की आशा भी नहीं, इसलिए वो इसी निराशा में पड़ा हुआ जीवन के दिन काटता और अपने भाग्य को रोता था। डॉक्टर महोदय को बागवानी से विशेष प्रेम था। नाना प्रकार के फूल पत्ते लगा रखे थे। अच्छे अच्छे फलों के पौधे दरभंगा, मलिहाबाद, सहारनपुर आदि स्थानों से मंगवाकर लगाए थे। वृक्षों को फलों से लदे देखकर उन्हें हार्दिक आनंद होता था। अपने मित्रों के यहाँ गुलदस्ते और शाक भाजी की डालियां तोहफे के तौर पर भिजवाते रहते थे। उन्हें फलों को आप खाने का शौक न था, पर मित्रों को खिलाने में उन्हें असीम आनंद प्राप्त होता था। प्रत्येक फल के मौसम में मित्रों की दावत करते और पिकनिक पार्टियां उनके मनोरंजन का प्रधान अंग थी। एक बार गर्मियों में उन्होंने अपने कई मित्रों को आम खाने की दावत दी। मलिहाबादी में सुफेदे के फल खूब लगे हुए थे। डॉक्टर साहब इन फलों को प्रतिदिन देखा करते थे। ये पहले ही फले थे, इसलिए वे मित्रों से उनकी मिठास और स्वाद का बखान सुनना चाहते थे। इस विचार से उन्हें वही आमोद था जो किसी पहलवान को अपने पट्टों के करतब दिखाने से होता है। इतने बड़े सुंदर और सुकोमल सुफेदे स्वयं उनकी निगाह से न गुजरे थे। इन फलों के स्वाद पर उन्हें इतना विश्वास था कि वे एक फल चखकर उनकी परीक्षा करना आवश्यक न समझते थे। प्रधानता इसलिए कि एक फल की कमी एक मित्र को रसास्वादन से वंचित कर देगी। संध्या का समय था, चैत का महीना। मित्रगण आकर बगीचे के हौज के किनारे कुर्सियों पर बैठे थे। बर्फ और दूध का प्रबंध पहले से ही कर लिया गया था, पर अभी तक फल न तोड़े गए थे। डॉक्टर साहब पहले फलों को पेड़ में लगे हुए दिखलाने के बाद उन्हें तोड़ना चाहते थे, जिसमें किसी को यह संदेह न हो कि फल इनके बाग के नहीं है। जब सब सज्जन जमा हो गए तब उन्होंने कहा, आप लोगों को कष्ट होगा, पर जरा चलकर फलों को पेड़ में लटकते देखिए, बड़ा ही मनोहर दृश्य है। गुलाब में भी ऐसी लोचन प्रिय लाली न होगी, रंग से स्वाद टपक पड़ता है। मैंने इसकी कलम खास मलिहाबाद से मंगवाई थी और उसका विशेष रीति से पालन किया है। मित्रगण उठे, डॉक्टर साहब आगे आगे चले। रविशों के दोनों ओर गुलाब की क्यारियां थी। उनकी छटा दिखाते हुए वे अंत में सुफेदे के पेड़ के सामने आ गए, मगर आश्चर्य, वहां एक फल भी न था। डॉक्टर साहब ने समझा शायद वो ये पेड़ नहीं है। 2 पग और आगे चले, दूसरा पेड़ मिल गया और आगे बढ़े, तीसरा पेड़ मिला। फिर पीछे लौटे और एक विस्मित दशा में सुफेदे के वृक्ष के नीचे आकर रुक गए। इसमें संदेह नहीं कि वृक्ष यही है, पर फल क्या हुए? 20-25 आम थे, एक का भी पता नहीं। मित्रों की ओर अपराधपूर्ण नेत्रों से देखकर बोले, आश्चर्य है, इसमें एक भी फल नहीं है। आज सुबह मैंने देखा था, पेड़ फलों से लदा हुआ था। ये देखिए फलों का डंठल है, यह अवश्य माली की शरारत है। मैं आज उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। उस पाजी ने मुझे कितना धोखा दिया। मैं बहुत लज्जित हूं कि आप लोगों को व्यर्थ कष्ट हुआ। मैं सत्य कहता हूं, इस समय मुझे जितना दुख है उसे प्रकट नहीं कर सकता। ऐसे रंगीले कोमल कमनीय फल मैंने अपने जीवन में कभी ना देखे थे। उनके यौन लुप्त हो जाने से मेरे हृदय के टुकड़े हुए जाते हैं। ये कहकर वे नैराश्य वेदना से कुर्सी पर बैठ गए। मित्रों ने सांत्वना देते हुए कहा, नौकरों का सब जगह यही हाल है, ये जाती ही पाजी होती है। आप हम लोगों के कष्ट का खेद ना करें, ये सुफेदे ना सही दूसरे फल सही। एक सज्जन ने कहा, साहब मुझे तो सब आम एक से ही मालूम होते हैं। सुफेदे, मोहन भोग, लंगड़े, बम्बई, फजली, दशहरी, इनमें कोई भेद ही मालूम नहीं होता। न जाने आप लोगों को कैसे उनके स्वाद में फर्क मालूम होता है। दूसरे सज्जन बोले,
1: भाई यहां भी वही हाल है, जो इस समय फल मिले वही मंगवाइए, जो गए उनका क्या अफसोस।
0: डॉक्टर साहब ने व्यथित भाव से कहा, आमों की क्या कमी है, सारा बाग भरा पड़ा है, खूब शौक से खाइए और बांधकर घर ले जाइए। वे हैं और किस लिए, पर वो रस और स्वाद कहां। आपको विश्वास ना होगा, उन सुफेदों पर ऐसा निखार था कि सेब मालूम होते थे। सेब भी देखने में ही सुंदर होता है, उसमें वो रुचिवर्धक लालित्य, वो सुधा में मृदुता कहां। इस माली ने आज वो अनर्थ किया है कि जी चाहता है नमक हराम को गोली मार दूं, इस वक्त सामने आ जाए तो अधमरा कर दूं। माली बाजार गया हुआ था। डॉक्टर साहब ने साइज से कुछ आम तुड़वाए, मित्रों ने आम खाए, दूध पिया और डॉक्टर साहब को धन्यवाद देकर अपने अपने घर की राह ली। लेकिन मिस्टर मेहरा वहां हौज के किनारे हाथ में हंटर लिए माली की बाट जोहते रहे। आकृति से जान पड़ता था मानो साक्षात क्रोध मूर्तिमान हो गया था। कुछ रात गए दुर्गा बाजार से लौटा, वो चौकन्नी आंखों से इधर उधर देख रहा था। ज्यों ही उसने डॉक्टर साहब को हौज के किनारे हाथ में हंटर लिए बैठे देखा, उसके होश उड़ गए, समझ गया कि चोरी पकड़ ली गई। इसी भय से उसने बाजार में खूब देर की थी। उसने समझा था डॉक्टर साहब कहीं सैर करने गए होंगे, मैं चुपके कटहल के नीचे अपनी झोपड़ी में जा बैठूंगा, सवेरे कुछ पूछताछ भी हुई तो मुझे सफाई देने का अवसर मिल जाएगा, कह दूंगा सरकार मेरे झोपड़े की तलाशी ले ले, और इस तरह मामला दब जाएगा। समय सफल चोर का सबसे बड़ा मित्र है, एक एक क्षण उसे निर्दोष सिद्ध करता जाता था, किंतु जब वो रंगे हाथों पकड़ा जाता है तब उसके बच निकलने की कोई राह नहीं रहती। रुधिर के सूखे हुए धब्बे रंग के दाग बन सकते हैं, पर ताजा लहू आप ही आप पुकारता है। दुर्गा के पैर थम गए, छाती धड़कने लगी। डॉक्टर साहब की निगाह उस पर पड़ गई थी, अब उल्टे पांव लौटना व्यर्थ था। डॉक्टर साहब उसे दूर से ही देखते उठे कि चलकर उसकी खूब मरम्मत करूं, लेकिन वकील थे, विचार किया कि इसका बयान लेना आवश्यक है। इशारे से निकट बुलाया और पूछा, सुफेदे के पेड़ में कई आम लगे हुए थे, एक भी दिखाई नहीं देता, कहां चले गए। दुर्गा ने निर्दोष भाव से उत्तर दिया, हुजूर मैं अभी बाजार गया हूं, तब तक तो सब आम लगे थे, इतनी देर में कोई तोड़ ले गया हो तो मैं नहीं कह सकता। तुम्हारा संदेह किस पर है।
1: सरकार अब मैं किसे बताऊं, इतने नौकर चाकर हैं, न जाने किसकी नीयत बिगड़ गई हो।
0: मेरा संदेह तुम्हारे ऊपर है, अगर तोड़कर रखे हो तो लाकर दे दो, या साफ साफ कह दो कि मैंने तोड़े हैं, नहीं तो बुरी तरह पेश आऊंगा। चोर केवल दंड से ही नहीं बचना चाहता, वो अपमान से भी बचना चाहता है। वो दंड से उतना नहीं डरता जितना अपमान से। जब उसे सजा से बचने की कोई आशा नहीं रहती, उस समय भी वो अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता। वो अपराधी बनकर छूट जाने से निर्दोष बनकर दंड भोगना बेहतर समझता है। दुर्गा इस समय अपराध स्वीकार करके सजा से बच सकता था, पर उसने कहा, हुजूर आप मालिक हैं, जो चाहे करें, पर मैंने आम नहीं तोड़े, सरकार ही बताएं, इतने दिन मुझे आपकी ताबेदारी करते हो गए, मैंने एक पत्ती भी छुई है। तुम कसम खा सकते हो। गंगा की कसम, जो मैंने आमों को हाथ से छुआ हो, मुझे इस कसम पर विश्वास नहीं। तुम पहले लोटे में पानी लाओ, उसमें तुलसी की पत्तियां डालो, तब कसम खाकर कहो कि अगर मैंने तोड़ी हूं तो मेरा लड़का मेरे काम ना आए, तब मुझे विश्वास आएगा। हुजूर सांच को आंच क्या, जो कसम कहिए खाऊंगा, जब मैंने काम किया ही नहीं तो मुझ पर कसम क्या पड़ेगी। अच्छा बातें ना बनाओ, जाकर पानी लाओ। डॉक्टर महोदय मानव चरित्र के ज्ञाता थे, सदैव अपराधियों से व्यवहार रहता था। यद्यपि दुर्गा जबान से हेकड़ी की बातें कर रहा था, पर उसके हृदय में भय समाया हुआ था। वो अपने झोंपड़े में आया, लेकिन लोटे में पानी लेकर जाने की हिम्मत न हुई, उसके हाथ थरथराने लगे। ऐसी घटनाएं याद आ गईं जिनमें झूठी गंगा उठाने वाले पर दैवी कोप का प्रहार हुआ था। ईश्वर के सर्वज्ञ होने का ऐसा मर्मस्पर्शी विश्वास उसे कभी नहीं हुआ था। उसने निश्चय किया, मैं झूठी गंगा की कसम ना उठाऊंगा, यही ना होगा निकाल दिया जाऊंगा, नौकरी फिर कहीं ना कहीं मिल जाएगी, और नौकरी ना मिले तो मजूरी तो कहीं गई नहीं, कुदाल भी चलाऊंगा तो सांझ तक आधा सेर आटे का ठिकाना हो जाएगा। वो धीरे धीरे खाली हाथ डॉक्टर साहब के सामने आकर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब ने कड़े स्वर में पूछा, पानी लाया। हुजूर मैं गंगा ना उठाऊंगा। तो तुम्हारा आम तोड़ना साबित है,
1: अब सरकार जो चाहे समझे। मान लीजिए मैं नहीं आम तोड़े तो आपका गुलाम ही तो हूं, रात दिन ताबेदारी करता हूं, बाल बच्चे आम के लिए रोवे तो कहां जाऊं। आपकी जान बख्शी जाए फिर ऐसा कसूर ना होगा। डॉक्टर महोदय इतने उदार न थे, उन्होंने यही बड़ा उपकार किया कि दुर्गा को पुलिस के हवाले न किया और ना ही हंटर लगाए। उसकी इस धार्मिक श्रद्धा ने उन्हें कुछ नरम कर दिया था, मगर ऐसे दुर्बल हृदय को अपने यहां रखना संभव था। उन्होंने उसी क्षण दुर्गा को जवाब दे दिया और उसकी आधे महीने की बाकी मजदूरी जब्त कर ली। कई माह के पश्चात मेहरा बाबू प्रेमशंकर के बाग की सैर करने गए। वहां से कुछ अच्छी अच्छी कलमें लाना चाहते थे। प्रेमशंकर को भी बागवानी से प्रेम था और दोनों मनुष्यों में यही समानता थी, अन्य सभी विषयों में एक दूसरे से भिन्न थे। प्रेमशंकर बड़े संतोषी, सरल और सहृदय मनुष्य थे। वे कई साल अमेरिका रह चुके थे, वहां उन्होंने कृषि विज्ञान का खूब अध्ययन किया था और यहां आकर इस वृत्ति को अपने आजीविका का आधार बना लिया था। मानव चरित्र और वर्तमान सामाजिक संगठन के विषय में उनके विचार विचित्र थे, इसलिए शहर के सभ्य समाज में लोग उनकी उपेक्षा करते थे और उन्हें झक्की समझते थे। इसमें संदेह नहीं कि उनके सिद्धांतों से लोगों को एक प्रकार की दार्शनिक सहानुभूति थी, पर उनके क्रियात्मक होने के विषय में उन्हें बड़ी शंका थी। संसार कर्म क्षेत्र है, मीमांसा क्षेत्र नहीं। यहां सिद्धांत सिद्धांत ही रहेंगे, उनका प्रत्यक्ष घटनाओं से संबंध नहीं। डॉक्टर साहब बागीचे में पहुंचे तो उन्होंने प्रेमशंकर को क्यारियों में पानी देते हुए पाया। कुएं पर एक मनुष्य खड़ा पंप से पानी निकाल रहा था। मेहरा ने उसे तुरंत ही पहचान लिया, वो दुर्गा माली था। डॉक्टर साहब के मन में उस समय दुर्गा के प्रति एक विचित्र ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ। जिस नराधम को उन्होंने दंड देकर अपने हाथ से अलग कर दिया था, उसे नौकरी क्यों मिल गई? यदि दुर्गा इस समय फटेहाल रोनी सूरत बनाए दिखाई देता तो डॉक्टर साहब को उस पर दया आ जाती। वे संभवतः उसे कुछ इनाम देते और प्रेमशंकर से उसकी प्रशंसा भी कर देते। उनकी प्रकृति में दया थी और अपने नौकरों पर उनकी कृपा दृष्टि रहती थी, परंतु उनकी इस कृपा और दया में लेश मात्र भी भेद न था, जो अपने कुत्तों और घोड़ों से भी थी। इस कृपा का आधार न्याय नहीं, दीन पालन है। दुर्गा ने उन्हें देखा, कुएं पर खड़े खड़े सलाम किया और फिर अपने काम में लग गया। उसका यह अभिमान डॉक्टर साहब के हृदय में भाले की भांति चुभ गया। उन्हें यह विचार कर अत्यंत क्रोध आया कि मेरे यहां से निकलना इसके लिए हितकर हो गया। उन्हें अपनी सहृदयता पर जो घमंड था उसे बड़ा आघात लगा। प्रेमशंकर जो ही उनसे हाथ मिलाकर उन्हें क्यारियों की सैर कराने लगे, क्यों ही डॉक्टर साहब ने उनसे पूछा, ये आदमी आपके यहां कितने दिनों से है? यही 6 या 7 महीने हुए होंगे। कुछ नोच खसोट तो नहीं करता? ये मेरे यहां माली था, इसके हथलपकेपन से तंग आकर मैंने इसे निकाल दिया था। कभी फूल तोड़कर बेचाता, कभी पौधे उखाड़ ले जाता, और फलों का तो कहना ही क्या, वे इसके मारे बचते ही न थे। एक बार मैंने मित्रों की दावत की थी, मलिहाबादी सुफेदे में खूब फल लगे थे। जब सब आकर बैठ गए और मैं उन्हें फल दिखाने ले गया तो सारे फल गायब। हजी कुछ ना पूछिए, उस समय उस घड़ी कितनी भद हुई। मैंने उसी क्षण इन महाशय को दुत्कार बताई, बड़ा ही दगाबाज आदमी है और ऐसा चतुर इसको पकड़ना मुश्किल है। कोई वकीलों ही जैसा काइया आदमी हो तो इसे पकड़ सकता है। ऐसी सफाई और ढिठाई से ढुलकता है कि इसका मुंह देखते रह जाइए। आपको तो कभी चरका नहीं दिया? अजी नहीं, कभी नहीं, मुझे इसने शिकायत का कोई अवसर नहीं दिया। यहां तो खूब मेहनत करता है, यहां तक कि दोपहर की छुट्टी में भी आराम नहीं करता। मुझे तो इस पर इतना भरोसा हो गया कि सारा बागीचा इस पर छोड़ रखा है। दिन भर में जो कुछ आमदनी होती है वो शाम को मुझे दे देता है और कभी पाई का अंतर नहीं पड़ता। यही तो इसका कौशल है कि आपको उल्टे छुरे मुड़े और आपको खबर भी नहीं। आप इसे वेतन क्या देते हैं? यहां किसी को वेतन नहीं दिया जाता, सब लोग लाभ में बराबर के साझेदार हैं। महीने भर में आवश्यक व्यय के पश्चात जो कुछ बचता है उसमें से 10 रुपए प्रति सैकड़ा धर्म खाते में डाल दिया जाता है, शेष रुपए समान भागों में बांट दिए जाते हैं। पिछले महीने में 140 रुपए की आमदनी हुई थी, मुझे मिलाकर 7 आदमी हैं, 20 रुपए हिस्से पड़े। अब की नारंगियां खूब हुई हैं, मटर की फलियों, गन्ने, गोभी आदि सच्ची आमदनी हो रही है, 40 रुपए से कम ना पड़ेंगे। डॉक्टर मेहरा ने आश्चर्य से पूछा, इतने में आपका काम चल जाता है? जी हाँ, बड़ी सुगमता से। मैं इन्हीं आदमियों के से कपड़े पहनता हूं, इन्हीं कैसा खाना खाता हूं और मुझे कोई दूसरा व्यसन है नहीं। यहां 20 रुपए मासिक उन औषधियों का खर्च है जो गरीबों को दी जाती है। ये रुपए संयुक्त आय से अलग कर लिए जाते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। ये साइकिल जो आप देखते हैं संयुक्त आय से ही ली गई है, जिसे जरूरत होती है इस पर सवार होता है। मुझे ये सब अधिक कार्यकुशल समझते हैं और मुझ पर पूरा विश्वास रखते हैं। बस मैं इनका मुखिया हूं, जो कुछ सलाह देता हूं उसे सब मानते हैं। कोई भी ये नहीं समझता कि मैं किसी का नौकर हूं। सब के सब अपने को साझेदार समझते हैं और जी तोड़कर मेहनत करते हैं। जहां कोई मालिक होता है और दूसरा कोई नौकर, तो उन दोनों में तुरंत द्वेष पैदा हो जाता है। मालिक चाहता है कि इससे जितना काम लेते बने लेना चाहिए। नौकर चाहता है कि मैं कम से कम काम करूं। उसमें स्नेह या सहानुभूति का नाम तक नहीं आता। दोनों यथार्थ में एक दूसरे के शत्रु होते हैं। इस प्रतिद्वंदिता का दुष्परिणाम हम और आप देख ही रहे हैं। मोटे और पतले आदमियों के पृथक पृथक दल बन गए हैं और उनमें घोर संग्राम हो रहा है। कल चिन्हों से ज्ञात होता है कि ये प्रतिद्वंदिता अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। इसकी जगह अब सहकारिता का आगमन होने वाला है। मैंने अन्य देशों में इस घातक संग्राम के दृश्य देखे हैं और मुझे घृणा हो गई है। सहकारिता ही हमें इस संकट से मुक्त कर सकती है। अच्छा, तो ये कहिए कि आप सोशलिस्ट हैं। जी नहीं, मैं सोशलिस्ट या डेमोक्रेट कुछ नहीं हूं। मैं केवल न्याय और धर्म का दीन सेवक हूं। मैं निस्वार्थ सेवा को विद्या से श्रेष्ठ समझता हूं। मैं अपनी आत्मिक और मानसिक शक्तियों को, बुद्धि सामर्थ्य को धन और वैभव का गुलाम नहीं बनाना चाहता। मुझे वर्तमान शिक्षा और सभ्यता पर विश्वास नहीं। विद्या का धर्म है आत्मिक उन्नति का फल। उदारता, त्याग, सदिच्छा, सहानुभूति, न्यायपरता और दयाशीलता। जो शिक्षा हमें निर्बलों को सताने के लिए तैयार करे, जो हमें धरती और धन का गुलाम बनाए, जो हमें भोग विलास में डुबाए, जो हमें दूसरों का रक्त पीकर मोटा होने का इच्छुक बनाए, वो शिक्षा नहीं है। अगर मूर्ख लोभ और मोह के पंजे में फंस जाए तो वे क्षम्य है, परंतु विद्या और सभ्यता के उपासकों की स्वार्थ अंधता अत्यंत लज्जाजनक है। हमने विद्या और बुद्धि बल की विभूति को शिखर पर चढ़ने का मार्ग बना लिया। वास्तव में वो सेवा और प्रेम का साधन था। कितनी विचित्र दशा है कि जो जितना ही बड़ा विद्वान है उतना ही बड़ा स्वार्थ सेवी है। बस हमारी सारी विद्या और बुद्धि, हमारा सारा उत्साह और अनुराग धन लिप्सा में ग्रसित है। हमारे प्रोफेसर साहब 1,000 से कम वेतन पाए तो उसका मुंह ही सीधा नहीं होता। हमारे दीवान और माल के अधिकारी लोग 2,000 मासिक पाने पर भी अपने भाग्य को रोया करते हैं। हमारे डॉक्टर साहब चाहते हैं कि मरीज मरे या जिए, मेरी फीस में बाधा ना पड़े। और हमारे वकील साहब, क्षमा कीजिएगा, ईश्वर से मनाया करते हैं कि ईर्ष्या और द्वेष का प्रकोप और सोने की दीवार खड़ी कर लूं। समय धन है, इसी वाक्य में हम ईश्वर वाक्य समझ रहे हैं। इन महान पुरुषों में से प्रत्येक व्यक्ति सैकड़ों नहीं हजारों लाखों की जीविका हड़प जाते हैं और फिर भी उन्हें जाति का भक्त बनने का दावा है। वो अपने स्वजाति प्रेम का डंका बजाता फिरता है। पैदा दूसरे करें, पसीना दूसरे बहाएं, खाना और मूछों पर ताव देना इनका काम है। मैं समस्त शिक्षित समुदाय को केवल स्वार्थी ही नहीं वरन अनर्थकारी भी समझता हूं। डॉक्टर साहब ने बहुत धैर्य से काम लेकर पूछा, तो क्या आप चाहते हैं कि हम सबके सब मजूरी करें? जी नहीं, हालांकि ऐसा हो तो मनुष्य जाति का बहुत उपकार हो। मुझे जो आपत्ति है ये केवल दशाओं में इस अन्यायपूर्ण समता से है। यदि एक मजदूर 5 रुपए में अपना निर्वाह कर सकता है, तो एक मानसिक काम करने वाले प्राणी के लिए इससे दुगनी तिगुनी आय काफी होनी चाहिए। और वो अधिकता इसलिए कि उसे कुछ उत्तम भोजन वस्त्र तथा सुख की आवश्यकता होती है। मगर 5 और 5,000, 50 और 50,000 का अस्वाभाविक अंतर क्यों? इतना नहीं, हमारा समाज 5 और 5 लाख के अंतर का भी तिरस्कार नहीं करता, वरन उसकी भी प्रशंसा करता है। शासन प्रबंध, वकालत, चिकित्सा, चित्र रचना, शिक्षा, दलाली, व्यापार, संगीत और इसी प्रकार की सैकड़ों अन्य कलाएं शिक्षित समुदाय की जीवन वृत्ति बनी है, पर इनमें से एक भी धन उपार्जन नहीं करती। इनका आधार दूसरों की कमाई पर है। मेरी समझ में नहीं आता कि वो उद्योग धंधे जो जीवन की सामग्रियां पैदा करते हैं, जिन पर जीवन का अवलंबन है, क्यों उन पेशों से नीचे समझे जाएं जिनका काम केवल मनोरंजन या अधिक से अधिक धन उपार्जन में सहायता करना है। आज सारे वकीलों को देश निकाला हो जाए, सारे अधिकारी वर्ग लुप्त हो जाएं और सारे दलाल स्वर्ग को सिधारें, तभी संसार का काम चलता रहेगा, बल्कि और भी सरलता से। किसान भूमि जोतेंगे, जुलाहे कपड़े बुनेंगे, बढ़ई लोहार, राज चर्मकार सब के सब पूर्ववत अपना काम करते रहेंगे। उनकी पंचायतें उनके झगड़ों का निपटारा करेंगी, लेकिन यदि किसान न हो तो सारा संसार क्षुधा पीड़ा से व्याकुल हो जाए। परंतु किसान के लिए 5 रुपए बहुत समझा जाता है, और वकील साहब या डॉक्टर को 5,000 भी काफी नहीं।
0: डॉक्टर, आप अर्थशास्त्र के उस महत्वपूर्ण सिद्धांत को भूले जाते हैं जिसे श्रम विभाजन कहते हैं। प्रकृति ने प्राणियों को भिन्न भिन्न शक्तियां प्रदान की हैं और उनके विकास के लिए भिन्न भिन्न दशाओं की आवश्यकता है। मैं ये कब कहता हूं कि प्रत्येक मनुष्य को मजदूरी करने पर मजबूर किया जाए? नहीं, जिसे परमात्मा ने विचार की शक्ति दी है वो शास्त्रों की विवेचना करे, जो भावुक हो वो काव्य की रचना करे, जो अन्याय से घृणा करता हो वो वकालत करे। मेरा कथन ये है कि विभिन्न कार्यों की हैसियत में इतना अंतर न रहना चाहिए। मानसिक और औद्योगिक कामों में इतना फर्क न्याय के विरुद्ध है। ये प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल ज्ञात होता है कि आवश्यक और अनिवार्य कार्यों पर अनावश्यक और अनिवार्य कार्यों की प्रधानता हो। कतिपय सज्जनों का मत है कि इस साम्य से गुणी लोगों का अनादर होगा और संसार को उनके सद्विचारों और सत्कार्यों से लाभ न पहुंच सकेगा। किंतु वे भूल जाते हैं कि संसार के बड़े से बड़े पंडित, बड़े से बड़े कवि, बड़े से बड़े आविष्कारक, बड़े से बड़े शिक्षक धन और प्रभुता के लोभ शिक्षक बन जाते हैं। संसार में आज अनगिनत लेखक और कवि, वकील और शिक्षक उपस्थित हैं। वे सब के सब पृथ्वी पर भार रूप हो रही हैं। जब उन्हें मालूम होगा कि दिव्य कलाओं में कुछ लाभ नहीं है तो वही लोग कवि होंगे जिन्हें कवि होना चाहिए। संक्षेप में कहना यही है कि धन की प्रधानता ने हमारे समस्त समाज को उलट पलट दिया है।
1: डॉक्टर मेहरा अधीर हो गए और बोले, महाशय, समाज संगठन का ही रूप देवलोक के लिए चाहे उपयुक्त हो, पर भौतिक संसार के लिए उस भौतिक काल में वो कदापि उपयोगी नहीं हो सकता। प्रेमशंकर जी ने फिर जवाब दिया, केवल इसी कारण से अभी तक धनवानों का, जमींदारों का और शिक्षित समुदाय का प्रभुत्व बना हुआ है वकील साहब। पर इसके पहले भी कई बार इस प्रभुत्व को धक्का लग चुका है और चिन्हों से ज्ञात होता है कि निकट भविष्य में फिर इसकी पराजय होने वाली है। कदाचित वो हार निर्णयात्मक होगी। समाज का चक्र साम्य से आरंभ होकर फिर साम्य पर ही समाप्त होता है। एकाधिपत्य, रईसों का प्रभुत्व और वाणिज्य प्राबल्य उसकी मध्यवर्ती दशाएं हैं। वर्तमान चक्र ने मध्यवर्ती दशाओं को भोग लिया है और वो अपने अंतिम स्थान के निकट आता जाता है, किंतु हमारी आंखें अधिकार और प्रभुत्व के मद में ऐसी भरी हुई हैं कि हमें आगे पीछे कुछ नहीं सूझता। चारों ओर से जनतावाद का घोर नाद हमारे कानों में आ रहा है, पर हम ऐसे निश्चिंत हैं मानो वो साधारण मेघ की गरज है। हम अभी तक उन्हीं विद्याओं और कलाओं में लीन हैं जिनका आश्रय दूसरों की मेहनत है। हमारे विद्यालयों की संख्या बढ़ती जाती है, हमारे वकील खाने में पांव रखने की जगह बाकी नहीं। गली गली फोटो स्टूडियो खुल रहे हैं। डॉक्टरों की संख्या मरीजों से भी अधिक हो गई है, पर अब भी हमारी आंखें नहीं खुलती। हम इस अस्वाभाविक जीवन, इस सभ्यता के तिलिस्म से बाहर निकलने की चेष्टा ही नहीं करते। हम शहरों में कारखाने खोलते फिरते हैं इसलिए कि मजदूरों की मेहनत से मोटे हो जाएं। 30 रुपए और 40 रुपए सैकड़े लाभ की कल्पना करके फूले नहीं समाते, पर ऐसा कहीं देखने में नहीं आता कि किसी शिक्षित सज्जन ने कपड़ा बुनना या जमीन जोतना शुरू किया हो। यदि कोई दुर्भाग्यवश ऐसा करे तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है। हम उसी को मन प्रतिष्ठा के योग्य समझते हैं जो तकिया गद्दी लगाए बैठा रहे, हाथ पैर ना हिलाए और लेन देन पर, सूद बट्टे पर लाखों के वारे न्यारे करता हो। यही बातें हो रही थी कि दुर्गा माली एक डाली नारंगियां, गोभी के फूल, अमरूद, मटर की फलियां आदि सजाकर लाया और उसे डॉक्टर साहब के सामने रख दिया। उसके चेहरे पर एक प्रकार का गर्व था, मानो उसकी आत्मा जागृत हो गई है। वो डॉक्टर साहब के समीप एक मोटे मोढ़े पर बैठ गए और बोला, हुजूर को कैसी कलम चाहिए? आप बाबूजी को एक चिट पर उनके नाम लिखकर दे दीजिए, मैं कल आपके मकान पर पहुंचा दूंगा। आपके बाल बच्चे तो अच्छी तरह हैं। डॉक्टर साहब ने कुछ सकुचाकर कहा, हाँ लड़के अच्छी तरह हैं। तुम यहां अच्छी तरह हो? जी हाँ, आपकी दया से बहुत आराम में हूं। डॉक्टर साहब उठकर चले तो प्रेमशंकर उन्हें विदा करने साथ साथ फाटक तक आए। डॉक्टर साहब मोटर पर बैठे तो मुस्कुराकर प्रेमशंकर से बोले, मैं आपके सिद्धांतों का कायल नहीं हुआ, पर इसमें संदेह नहीं कि आपने एक पशु को मनुष्य बना दिया। यह आपके सत्संग का फल है, लेकिन क्षमा कीजिएगा, मैं फिर भी कहूंगा कि इससे होशियार रहिएगा। यूजेनिक्स यानी सुप्रजनन शास्त्र अभी तक ऐसे किसी प्रयोग का आविष्कार नहीं कर सका है जो जन्म के संस्कारों को मिटा दे।
0: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पशु से मनुष्य। अपने अगले एपिसोड में फिर किसी ऐसी ही कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम संस्कृति संवाद के अंतर्गत भारत के दर्शनीय स्थल। श्रोताओं, इस बार भारत के दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर हम आपको उस शहर में ले चलते हैं जो 1912 तक भारत की राजधानी हुआ करता था।
1: हाँ श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कौन सा होगा वो शहर।
0: चलिए एक और क्लू आपको देते हैं। इस शहर में विवेकानंद जी के गुरु रहा करते थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे।
1: अरे क्यों नहीं समझेंगे भाई, इतना आसान क्लू जो आपने दे दिया है।
0: जी हाँ, अंग्रेजों का कलकत्ता और आज का कोलकाता है ये शहर।
1: हाँ श्रोताओं, एक कहावत कलकत्ता के नाम से मैं आपको सुनाता हूँ। किसी ने पूछा कि अगर किसी कलकत्तियन के पास ढेर सारा फालतू वक्त हो तो वो क्या करता है, तो उसे जवाब मिला, भाई कहीं उसे आने जाने के लिए बस या ट्राम पकड़ लेना चाहिए। अब सवाल करने वाले को ये बात कुछ हजम नहीं हुई। उसने फिर पूछा, चलो अगर मान लो उसके पास वक्त बहुत कम है, उसे बहुत जल्दी पहुंचना है, तो फिर उसे क्या करना चाहिए, तो फिर उसे जवाब मिला, फिर तो उसे पैदल ही निकल जाना चाहिए।
0: श्रोताओं, कलकत्ता वालों ने अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर ये जोक खुद ही गढ़ा है।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि उनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रफ्तार इतनी धीमी है कि अगर किसी को कहीं जल्दी पहुंचना हो तो वे पैदल ही जाना पसंद करते हैं।
1: हाँ, कोलकाता की बात चली है तो सबसे पहला सवाल जहन में यह उठता है कि आखिर यह नाम पड़ा तो पड़ा कैसे। श्रोताओं, इतना तो आप जानते हैं कि यह शहर अंग्रेजों का बसाया हुआ था और इसे कलकत्ता कहा करते थे वे लोग। वजह यह थी कि उन्होंने जिन तीन गांवों को मिलाकर के यह शहर बनाया था उनमें से एक नाम था कालीकता, बाकी के दो गांव थे सुतानाटी और गोविंदपुर।
0: लेकिन ये कालीकता नाम भी असली नहीं है। असली नाम है काली क्षेत्र, जिसका मतलब है देवी काली का क्षेत्र। साल 1698 की बात है। उस समय ये तीनों गांव मुगल साम्राज्य में हुआ करते थे और इनकी जागीरदारी एक चौधरी परिवार के पास हुआ करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय भारत में अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई थी और उसे बंगाल में किसी स्थायी ठिकाने की तलाश थी। तो किसी तरह हाथ पांव मारकर उसने इन गांवों की जागीरदारी अपने नाम ट्रांसफर करवा ली।
1: बिल्कुल ठीक, और कंपनी को यह जगह बहुत पसंद आई। उन्होंने भी सोच समझ करके इसको बसाया और यह काम किया था एक समझदार अफसर जॉब चारनाक ने। उसने देखा कि इन तीनों गांवों के पश्चिम में हुगली नदी है, उत्तर में एक सकरी खाड़ी है और पूर्व में नमकीन झीलें हैं। हुगली नदी इस इलाके को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, तो यह जगह उनके लिए बहुत ही महफूज थी।
0: इस तरह यहाँ अपनी बस्ती बसाने का फायदा ये था कि ये कुदरती तौर पर महफूज थी। इसके अलावा कोई आफत आने पर एक तो हुगली नदी बाढ़ का काम करती, दूसरे इस नदी के जरिए समुद्र की ओर भागा जा सकता था जहां अंग्रेजी नेवी की अजेय ताकत इनकी रक्षा करती। चारनाक हालांकि 1693 में ही गुजर चुका था, लेकिन उसकी सलाह को कंपनी ने गांठ बांध लिया था और कोशिश करके 1698 में इस जगह की जागीरदारी प्राप्त कर ही ली।
1: बिल्कुल ठीक, और जैसा कि अंग्रेज हर जगह करते थे उन्होंने यहाँ भी वही किया। उन्होंने फौरन इस जगह की किलेबंदी शुरू कर दी और 1712 में यहाँ फोर्ट विलियम नामक एक मजबूत किला तैयार कर लिया और 1772 में कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी की राजधानी बना और इसके बाद पूरे भारत के ब्रिटिश एम्पायर की राजधानी। लेकिन 1912 में यह जगह दिल्ली को मिल गई और तब से दिल्ली ही भारत की राजधानी हो गई।
0: अब कोलकाता के संबंध में कुछ दिलचस्प तथ्य और हम आपको बताते हैं।
1: बताइए।
0: अंग्रेजों के जमाने में कलकत्ता इतना महत्वपूर्ण हुआ करता था कि वे इसे लंदन के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा शहर कहा करते थे। आसान शब्दों में कहें तो उनकी नजर में ब्रिटिश एम्पायर के लिए लंदन के बाद सबसे अहम शहर कलकत्ता ही था।
1: श्रोताओं, आप में से बहुत से लोग ये भी जानते होंगे कि कलकत्ता को सिटी ऑफ पैलेस भी कहा जाता है, मगर लाख टके का सवाल तो यह है कि क्यों। वह यूं कि जब अंग्रेज लोग कलकत्ता में बसना शुरू किए तो यहाँ इमारतों के निर्माण के लिए गॉथिक, ब्रॉक, रोमन, इस्लामिक और ओरिएंटल डिजाइनों के एक ही तरह के पैटर्न का इस्तेमाल हुआ।
0: अंग्रेज अफसर खास करके पश्चिमी डिजाइनों के बड़े बड़े महलनुमा बंगले बनवाया करते थे। यहाँ तक कि यहाँ के बंगाली बाबू भी इस मामले में पीछे न रहे। जब बंगाल में जमींदारी प्रणाली आई तो जमींदारों के पास अनाप शनाप पैसा आया। इस पैसे से उन्होंने कोलकाता में शानदार हवेलियां बनवाई जिनमें हर तरह के आराम और शान और शौकत की चीजें होती थी।
1: श्रोताओं, प्रसंग बस आपको यह भी बता दें कि आज इनमें से ज्यादातर हवेलियां खंडरों में तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन उनमें से कुछ का संरक्षण किया जा रहा है और कुछ को हेरिटेज स्ट्रक्चर घोषित कर दिया गया है।
0: और इस तरह अंग्रेज जेंटलमैन और बंगाली भद्र पुरुषों के बल पर देखते ही देखते कोलकाता अनगिनत महलनुमा हवेलियों से भर गया और ये शहर सिटी ऑफ पैलेसेस कहलाने लगा।
1: फ्रांसीसी लेखक डोमिनिक लेपियर ने कलकत्ता को सिटी ऑफ जॉय कहा है। कोलकातियन सही मायने में जानते थे कि जिंदगी का मजा कैसे उठाया जाए, चाहे दुर्गा पूजा हो, न्यू ईयर हो या अन्य कोई त्योहार हो। कोलकातियन इसे पूरे जोश और खरोश के साथ मनाते थे। पैसे की चाहे कितनी कमी हो, लेकिन जीवन का आनंद उठाने में कोलकाता वाले कभी भी पीछे नहीं रहते थे।
0: एशिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इडन गार्डन कोलकाता में ही स्थित है। इसमें 1,00,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। ये भारत का ऐसा पहला स्टेडियम है जिसमें फ्लड लाइट्स लगाई गई और डे एंड नाइट मैचेस देखने की फैसिलिटी उत्पन्न की गई।
1: श्रोताओं, ईडन गार्डन की तरह ही कलकत्ता का साल्ट लेक स्टेडियम भी पूरी दुनिया में मशहूर है। बंगाली में इसे युवा भारती क्रीड़ा आंगन कहते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। यह मल्टीपर्पज स्टेडियम आज फुटबॉल मैचों व एथलेटिक इवेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। श्रोताओं, हम आपको एक बात और बता दें कि इसमें एक साथ 1,20,000 से भी ज्यादा दर्शकों के बैठने की क्षमता है। सोचिए जरा,
0: भारत की पहली मेट्रो ट्रेन दिल्ली या मुंबई में नहीं बल्कि 1984 में कोलकाता में ही शुरू हुई और ये भारत की पहली अंडरग्राउंड ट्रेन सर्विस भी थी। कोलकाता शहर की 3 निशानियां और भी हैं, विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज और ट्राम।
1: हाँ श्रोता, कोलकाता इस मायने में भी भारत के सभी शहरों से अलग है कि यह देश का पहला एकमात्र शहर है जहाँ सी पोर्ट यानी कि बंदरगाह समंदर पर नहीं है बल्कि किसी नदी पर स्थित है। जी हाँ, कलकत्ता सी पोर्ट हुगली नदी पर स्थित है। इस पोर्ट की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही की गई थी।
0: और हैंड पुल्ड रिक्शा, जी हाँ, इसे भी शायद सबसे पहले कोलकाता में ही इस्तेमाल किया गया। रिक्शा शब्द जापानी भाषा के जिन रिक्शा शब्द से आया है जिसका मतलब होता है इंसान के द्वारा खींचा जाने वाला रिक्शा। दुनिया को रिक्शे का चलन इसी देश ने दिया है। जब 1868 में मेइजी काल के जापान में ये शुरू हुआ तो इसे उस जमाने की तेज सवारी माना गया क्योंकि इसने पालकियों की जगह ले ली थी।
1: खैर, रिक्शे तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, पुल रिक्शा। इनमें से पुल रिक्शा ही जापानी जिंग रिक्शा है। इसे आप रिक्शा न कहकर के एक टांगा कह सकते हैं जिसमें घोड़े की जगह इंसान जुटता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि टांगे में घोड़े को हाँकने के लिए एक कोचवान होता है, जबकि पुल रिक्शा में इंसान ही घोड़ा और इंसान ही कोचवान होता है।
0: आज से 200 साल पहले चीन के जरिए कलकत्ता आए इस पुल रिक्शे ने हर वक्त कलकत्ता को ऑन व्हील्स ही रखा, चाहे बरसात की वजह से गलियों में पानी भरा हो, चाहे भारत बंद हो या चाहे जाम लगा हो। दौड़ती हुई ये पालकियां अपने लिए रास्ता निकाल ही लेती हैं। इसीलिए कलकत्ता में कहते हैं कि मरीज को अगर अस्पताल ले जाना हो तो इससे भरोसेमंद कोई साधन नहीं।
1: फिल्म निर्माता भी अपनी फिल्म में अगर कलकत्ता दिखाना चाहते हैं तो वे इंसानी घोड़े वाला यह तांगा दिखाना नहीं भूलते, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिकल फिल्म हो, चाहे दो बीघा जमीन हो या नए जमाने की परिणीता हो। यह साबित करने के लिए कि यह सीन असली कलकत्ते में फिल्माई गई है, पुल रिक्शा को कैनवास पर उभारना ही पड़ता है।
0: चलिए श्रोताओं, अब हम बात करते हैं कोलकाता शहर की एक और निशानी यानी कि विक्टोरिया मेमोरियल की। विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता का एक बहुत ही खास टूरिस्ट स्पॉट है।
1: जी हाँ।
0: जो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया है। ये साल 1902 की बात है जब क्वीन विक्टोरिया का निधन हुआ। उस समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय हुआ करते थे और कलकत्ता भारत की राजधानी। उन्होंने ही सुझाव रखा कि महारानी की याद में कोलकाता में एक म्यूजियम बनाया जाए, इसलिए इसे लॉर्ड कर्जन का ब्रेन चाइल्ड भी कहा जाता है।
1: श्रोता, विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने में मुगलिया व ब्रिटिश आर्किटेक्चर का मिला जुला इस्तेमाल किया गया है। इसके भीतर के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में सफेद मकराना संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। दरअसल इसे बनाने के लिए इसके आर्किटेक्ट विलियम इमर्सन ने ताजमहल का मॉडल सामने रखा था। 1921 में इसका उद्घाटन हुआ और उस जमाने में इसके निर्माण की लागत आई थी 1,05,00,000 रुपए।
0: मित्रों, आपको बता दें कि इस इमारत को बनाने में अंग्रेज सरकार ने फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। सारा का सारा पैसा या तो भारत के देशी राजाओं ने दिया या कुछ अमीर लोगों ने, जो इसी बहाने अंग्रेज सरकार का फेवर पाना चाहते थे।
1: विक्टोरिया मेमोरियल में आप ब्रिटिश राज घराने के ढेरों यादगार पेंटिंग्स व मुगल स्टाइल के पेंटिंग्स देख सकते हैं। बंगाल के नवाब का सिंहासन भी इसका एक खास आकर्षण है। इसके खूबसूरत बगीचे में हर शाम लेजर शो, ऑडियो विजुअल शो का आयोजन होता है, जो यहाँ आने वालों के लिए एक यादगार इवेंट होता है। अगर आप विक्टोरिया में जाएं, तो इसे देखना बिल्कुल ना भूलें। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत, जिसमें आज हम आपको सैर करा रहे हैं कोलकाता शहर की। तो चलिए अब चलते हैं कोलकाता शहर के न्यू मार्केट में। भोपाल के न्यू मार्केट की ही तरह कोलकाता में भी एक न्यू मार्केट है। लेकिन बस इसका नाम ही केवल न्यू है, वैसे ये काफी पुराना है। 1874 में शुरू हुआ ये मार्केट उस समय हॉग मार्केट कहलाता था। ये नाम उस वक्त के कलकत्ता कमिश्नर स्टुअर्ट हॉग के नाम पर था। आजादी के बाद इसका नाम बदलकर न्यू मार्केट रख दिया गया।
1: इस मार्केट के बारे में कहा जाता है कि यह कोलकाता का शॉपिंग इंस्टीट्यूशन है और जिस किसी चीज के बारे में भी आप सोच सकते हैं वह आपको यहां मिल जाएगी। कीमतें कम होती हैं और क्वालिटी हाई, लेकिन शर्त यह है कि आपको बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। श्रोताओं, अगर आप नए हैं तो आप नहीं जानते कि कौन सी चीज कहां मिलेगी, तो फिक्र न कीजिए, न्यू मार्केट घूमने के लिए गाइड भी उपलब्ध हैं।
0: श्रोताओं, कोलकाता शहर काली मंदिर के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। देवी काली शक्ति के 108 रूपों में से एक है, जो अपने भक्तों को हर तरह की आपदा से बचाती हैं। आपको तो याद होगा कि कोलकाता का नाम वस्तुतः कालीकता से आया है और कारण यह है कि ये क्षेत्र माँ काली का एक खास स्थान है और यहाँ आज भी आपको ढेरों काली मंदिर मिलेंगे, जैसे कि अयोध्या में ढेरों राम मंदिर मिलते हैं।
1: लेकिन इनमें से हम आपको दो खास मंदिरों की जानकारी देना चाहेंगे और वो है दक्षिणेश्वर का काली मंदिर और काली घाट का काली मंदिर। लोग भ्रमवश कभी कभी इन दोनों मंदिरों को एक ही समझ बैठते हैं। दोनों की ही भारी मान्यता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि दक्षिणेश्वर का काली मंदिर जहाँ कलकत्ता के उत्तर में स्थित है, वहीं काली घाट का काली मंदिर दक्षिण में स्थित है।
0: श्रोताओं, माँ काली का एक रूप है भवतरिणी। इस रूप में वे कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर काली मंदिर में विराजमान है। उल्लेख मिलता है कि 1847 के आसपास कोलकाता में एक रानी रोशमोई हुआ करती थी, जो माँ काली की बहुत बड़ी भक्त थी।
1: हाँ, उन्होंने निश्चय किया कि माँ काली के दर्शन करने के लिए वे वाराणसी जाएंगी। लेकिन उसी रात माँ काली उनके स्वप्न में आई और उन्होंने कहा कि मेरे दर्शन के लिए वाराणसी जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम गंगा के तट पर एक मंदिर बनवा करके उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित कर दो, मैं स्वयं उस मंदिर में विराजमान हो जाऊंगी।
0: इस पर रानी ने एक अंग्रेज जॉन हेस्ट से 20 एकड़ का शाहबान बगीचा खरीदा और उस पर यह मंदिर बनवाया। ये बगीचा एक कछुए के आकार का था। कहा जाता है कि इस आकार की भूमि शक्ति पूजा के लिए बहुत ठीक थी। उस जमाने में 9 लाख रुपए खर्च करके रानी रोशमोई ने मंदिर बनवाया। 1855 में इसका निर्माण पूरा होने के बाद इसमें माँ काली की प्रतिमा स्थापित की गई।
1: श्रोताओं, इसके आगे की कहानी तो और भी दिलचस्प है। मंदिर में मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम जिस पुरोहित ने संपन्न कराया था, उसका नाम था राम कुमार चट्टोपाध्याय। जल्द ही इस मंदिर में उनके छोटे भाई, जिनका नाम गदाई था, आकर के शिफ्ट हो गए। आपको बता दें कि गदाई और कोई नहीं रामकृष्ण परमहंस थे, जिन्हें विवेकानंद जैसे महान पुरुष ने उन्हें अपना गुरु बनाया था।
0: रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में कहा जाता था कि माँ काली उन्हें साक्षात दर्शन देती थी, और देती भी क्यों ना, वे माँ में इतने तन्मय रहते थे कि वे अपनी पत्नी शारदा को भी माँ कहते थे और माँ के रूप में ही उनकी पूजा करते थे।
1: आखिरी समय में रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, जिससे उन्हें अपार कष्ट होता था। कई लोगों ने उनसे कहा कि आप तो माँ काली के भक्त हैं, अगर आप उनसे प्रार्थना करेंगे तो यह बीमारी ठीक हो जाएगी। जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, नहीं, यह कर्म फल है, इसे तो भोगना ही अच्छा है। अगर बिना भोगे दुनिया से चले गए तो इसे भोगने के लिए मुझे फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा।
0: और अब चर्चा काली घाट के काली मंदिर की। ये मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि शक्तिपीठ वे स्थल हैं जहां देवी सती का कोई ना कोई अंग गिरा था। तो जिस जगह पर ये मंदिर स्थित है, वहां पर देवी के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था।
1: श्रोता, सुनने में आता है कि सैकड़ों साल पहले इस जगह पर जंगल हुआ करते थे। एक बार किसी भक्त ने यहाँ पर रोशनी की एक किरण देखी। जब उसने इसका स्रोत ढूंढने की कोशिश की तो पाया कि यह रोशनी पत्थर के अंगूठे से आ रही है। इस अंगूठे के पास ही एक स्वयंभू शिवलिंग भी था। इस पर भक्त ने उस स्थान पर उपासना आरंभ कर दी।
0: श्रोताओं, जहाँ दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के निर्माण काल के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी मिलती है, वहीं काली घाट के मंदिर की प्राचीनता का सही अनुमान हम नहीं लगा सकते। यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मुद्राएं तक मिली हैं, इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये कितना पुराना हो सकता है।
1: हाँ, कहते हैं कि ओरिजिनल काली मंदिर एक छोटी सी झोपड़ी मात्र थी, जिस पर आज से 500 साल पहले किसी राजा मानसिंह ने पक्का मंदिर बनवाया। लेकिन जिस रूप में यह मंदिर आज हमें मिलता है, उसका निर्माण तो सन 1809 में बरिशा के चौधरी परिवार ने करवाया था।
0: श्रोताओं, कोलकाता की दुर्गा पूजा तो आपने सुनी है कि कितनी भव्य और कितनी विशेष होती है। पूर्वी भारत में शक्ति की आराधना का चलन बहुत पुराना है और दुर्गा जी तो शक्ति के 108 रूपों में से सबसे प्रबल है। वे एकमात्र ऐसी देवी हैं जो सिंह की सवारी करती हैं, जिनकी आराधना करके राम जी ने रावण को मारा, जिनका स्मरण करके कृष्ण जी ने कंस का संहार किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिसकी स्तुति करते हैं। उनकी शान में बंगाली लोग अपना सबसे बड़ा त्योहार दुर्गा पूजा मनाते हैं।
1: बंगाली जन दुर्गा पूजा को अकाल बोधन भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है शक्ति का असमय जागरण। कोलकाता में तो यह त्योहार इतने बड़े पैमाने पर इतने जोश और खरोस के साथ मनाया जाता है कि देश विदेश के सैलानी भी इसे देखने के लिए यहाँ डेरा डाल देते हैं।
0: 10, 20, 50, 100 नहीं, कई हजार पंडाल यहाँ बनते हैं और भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि वो बेकाबू हो जाती है। ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल ठप हो जाती है, कई बार तो पैदल चले बिना पंडाल तक पहुँचना संभव ही नहीं रहता।
1: श्रोताओं, वैसे तो दुर्गा पूजा की परंपरा राम ने शुरू की थी, परंतु आज जिस तड़क भड़क के साथ ये त्योहार मनाया जाता है ना, उसका आरंभ सन 1606 में तरहपुर व नादिया के राजाओं ने शारदीय दुर्गोत्सव के नाम से शुरू किया था।
2: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है संस्कृति संवाद, जिसके अंतर्गत आज हम भारत के दर्शनीय स्थलों में आपको सैर करा रहे हैं कलकत्ता शहर की। और चलिए अब बात करते हैं कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज की। श्रोताओं, रुडयार्ड किपलिंग नाम तो आपने सुना ही होगा, वही जिन्होंने जंगल बुक लिखी थी, जिसमें मोगली नाम का एक मशहूर करेक्टर है, जिस पर किसी जमाने में एक हिंदी सीरियल बना और जिसका एक गाना बच्चे गुनगुनाया करते हैं कि जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है फूल खिला है।
0: किपलिंग एक जगह लिखते हैं, अरे ये लंदन यहाँ कैसे, इसे देखने के लिए तो भारत आना बनता है।
1: किपलिंग ने ये लाइनें हावड़ा ब्रिज को देखकर ही लिखी थी। कोलकाता की यह पहचान है कि जिस तरह भोपाल का नाम आते ही भोपाल की झील आंखों में तैरने लगती है, उसी तरह कोलकाता का नाम आते ही हावड़ा ब्रिज भी आंखों के सामने तैरने लगता है। वैसे ये कोलकाता का मोनोग्राम भी है।
0: कोई कोलकाता जाए और ये ब्रिज न देखे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बल्कि हम तो यही कहेंगे कि वो कोलकाता गया ही नहीं। यमलोक में जिस तरह यमराज होते हैं और क्षीर सागर में विष्णु, उसी तरह कोलकाता में हावड़ा ब्रिज है, इस शहर के शरीर में धड़कते हुए दिल की तरह। किसी ने तो यहाँ तक लिखा है कि बाकी दुनिया को कोलकाता की पहचान बताने का काम ये ब्रिज ही करता है।
1: हाँ श्रोताओं, हावड़ा ब्रिज एक सस्पेंशन टाइप कैंटिलीवर ब्रिज है, जो हुगली नदी के दोनों किनारों पर जुड़वा नगरों कलकत्ता और हावड़ा को आपस में जोड़ता है। इसे बनाने का श्रेय अंग्रेजों को है, उन्होंने इंजीनियरिंग की बेहतरीन कारीगरी दिखाते हुए इसे 6 सालों की कठिन मेहनत के बाद 1942 में तैयार किया और 1943 में ट्रैफिक के लिए इसे खोल दिया गया।
0: उस वक्त ये न्यू हावड़ा ब्रिज कहलाता था, लेकिन आजादी के बाद 1965 में इसका नाम रविंद्र सेतु रख दिया गया। मगर हकीकत तो यह है कि जनता आज भी इस नामकरण को शायद नहीं मानती, वो तो आज भी इसे हावड़ा ब्रिज ही कहती है।
1: श्रोताओं, बाय द वे, सस्पेंशन ब्रिज उसे कहते हैं जिसमें ब्रिज का डेक सस्पेंशन केबल के नीचे लटका रहता है। ब्रिज के दोनों सिरों पर सस्पेंशन टावर होते हैं जिनमें स्टील केबल बंधी हुई होती है, और इस तरह के ब्रिज ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में दो ऊंची पहाड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, और सबसे पहले ये तिब्बत व भूटान में बनाए गए थे आज से लगभग पूरे 500 साल पहले।
0: दूसरी ओर कैंटिलीवर ब्रिज उसे कहते हैं जो कैंटिलीवर्स के सहारे हवा में लटकता रहता है बिना किसी नट बोल्ट के। मतलब ये हुआ कि हावड़ा ब्रिज लोहे की मजबूत रस्सियों के सहारे एक छोर से दूसरे छोर तक हवा में लटका हुआ है, न कोई नट बोल्ट और ना ही ब्रिज को टेक देने के लिए कोई पिलर वगैरह।
1: देखा जाए तो पैदल चलने वालों के लिए छोटे छोटे और हल्के फुल्के कैंटिलीवर ब्रिज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर हावड़ा ब्रिज हुगली नदी के दोनों किनारों को जोड़ती हुई 8 लेन वाली 705 मीटर लंबी संरचना, चौड़ाई 71 फीट और ऊंचाई 269 फीट, जिसे बनाने में 26,500 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ, जिस पर से रोज 1.5 लाख गाड़ियां, 4 लाख पैदल लोग गुजरते हैं। वास्तव में कैंटिलीवर नाम का यह एक अजूबा ही है।
0: ये दुनिया का सबसे बिजी कैंटिलीवर ब्रिज है और पूरी दुनिया में 10 सबसे लंबे कैंटिलीवर ब्रिजों में 6वें नंबर पर है। ये केवल हावड़ा और कोलकाता को ही नहीं जोड़ता, बल्कि पुराने कलकत्ता और नए कोलकाता को भी जोड़ता है। तभी तो शायद एक व्यक्ति ने अपनी डायरी में लिखा, सालों बाद कलकत्ता आना हुआ, सब कुछ बदल चुका था सिवाय हावड़ा ब्रिज के।
1: श्रोताओं, कलकत्ता की हम बात करें और वहां की ट्राम सर्विस की बात ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। श्रोताओं, ट्राम सर्विस भी कलकत्ता की एक अनोखी पहचान है। हालांकि किसी जमाने में यह मुंबई, दिल्ली, कानपुर जैसे कई शहरों में हुआ करती थी, लेकिन आज आप इसे और कहीं नहीं देख पा सकते। इसके अंतर्गत पटरियों पर दौड़ती हुई ट्रामें कारें लोगों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराती हैं।
0: कोलकाता की ट्राम सर्विस को अगर आप ट्रेन जैसी दिखने वाली बस सर्विस कहें तो ज्यादा ठीक होगा। सड़कों पर ही बिछी लोहे की पटरियों पर ट्रामें दौड़ती रहती हैं। न कोई रेलवे फाटक और न ही कोई बाड़ बंदी। आती हुई ट्राम के सामने से लोग आराम से ही निकलते रहते हैं।
1: श्रोताओं, ये बात है साल 1873 की, जब सियालदह और आर्मेनियन घाट स्ट्रीट के बीच लोहे की पटरियों पर घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली ट्राम सेवा की शुरुआत हुई थी। लेकिन पर्याप्त सवारियां ना मिलने की वजह से 8-10 महीने में ही यह सेवा बंद हो गई।
0: लेकिन सन 1900 में एक ब्रिटिश कंपनी ट्रामवेज कंपनी लिमिटेड ने इसकी फिर से शुरुआत की। इस बार ट्राम को घोड़ों से नहीं खींचा जाता था, बल्कि ये बिजली से चलती थी। देखते ही देखते ये नई ट्राम सेवा कोलकाता की पहचान बन गई और आज इसे इस शहर की एक जिंदा विरासत माना जाता है।
1: श्रोताओं, कोलकाता को इस आधे घंटे के प्रोग्राम में समेटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए कोलकाता से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां, जैसे वहां का वस्त्र उद्योग, वहां का पहनावा, वहां का रहन सहन, वहां का खान पान और वहां का रसगोला, इन सब की चर्चा हम करेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और स्वर थे प्रमोद शर्मा
0: और कंचन राजानी के।
1: श्रोताओं, अब हमें आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
1: अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भारत भारती। आज इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं लोक गायिका मालिनी अवस्थी की गायी कुछ रचनाएं।
1: आज कोशिश करूंगी कि उत्तर प्रदेश की जो छटा है दिखा सकें, तो कुछ मौसम की चीजें होंगी जो आप सुनना भी चाहते हैं। और कार्यक्रम का प्रारंभ राग मिश्र तिलक कामोद में एक ठुमरी से कर रही हूँ।

उत्तर प्रदेश महोत्सव हम सब मना रहे हैं। सच जानिए मैं बड़े पशुपेश में थी, क्या सुनाऊं, क्योंकि ये लग रहा था क्या छोड़ूं, जो गाती हूँ सारा उत्तर प्रदेश का है और ऐसा ऐसी धरोहर है, ऐसा ऐसा खजाना है। आप लोग सब विद्वान और एक से एक अच्छे लोगों को सुना आपने, इसलिए जहाँ पर जिस मंच पे मेरी गुरु गा चुकी हूँ वहाँ पे ठुमरी और दादरा के बारे में बताने की मेरी ना हैसियत है ना मेरी औकात। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा ये गुइयां जो है ये खास उत्तर प्रदेशी है। गुइयां यानी सहेली। आपको याद हो हम लोग के बचपन में एक कहावत भी चलती थी, झगड़ा हो जाए दो सहेलियों में तो कहते थे गुइयां खुट्टी। अभी भी कभी कभी उसकी मिसाल दी जाती है कि अच्छा गुइयां खुट्टी हो गई क्या। गुइयां यानी सहेली, नायिका,

छांव में कौन खड़ा रहता है? कन्हैया कृष्ण खड़े हुए हैं। अब जब खड़े रहे होंगे, फिर ऋतुएं भी आई होंगी, मौसम भी बदला होगा।

हम सब जानते हैं कि भाषा का, संस्कृति का, साहित्य का, संगीत का, सबका मूल लोक में है। ठुमरी दादरा को भी लें तो बंदिशें लोक भाषा में हैं, कभी ब्रज में हैं, कभी बनारस पूर्वी में हैं। ऐसे ही आपको एक बड़ी खूबसूरत चीज सुना रही हूँ, पुरानी बंदिश बनारस के बड़े विद्वान श्रद्धेय रामू जी की बंदिश है और अप्पा जी ने उनसे सुनी, मुझे सिखाई। आप लोगों की नजर कर रही हूँ क्योंकि उस बंदिश कैसी है वो आप जब शुरू होगी तो आप समझ जाएंगे।

जगह का भाग अलग है। मैंने पहले धमाल सुनाया, भाग सुनाया, फिर उलारा सुनाया जो होली खेले रघुवीरा। जोगीरा गाते हैं हमारे यहाँ पूरब में, पूरब में बनारस में खास करते हैं। दो बंद जोगीरा के सुना रही हूँ।

केला फागुन में मन के तराना, अरे मन के तराना खन केला फागुन में मन के तराना, अरे भावे न पिया बिन मौसम सुहाना।

0: वाह भाई वाह,
1: वाह खिलाड़ी वाह।
0: आपको लग रहा होगा ये क्या होता है, दो टोलियां बनती हैं और सवाल जवाब होता है, तो पुरुषों की तरफ वाह खिलाड़ी, औरतों की तरफ वाह भाई वाह वारी सखी।

गली धोखा नजरिया मिलाई देखा।

आईला ना आईला अरे कैला बिगाड़ कैला बिगाड़ गैला ना आईला अरे कैला बिगाड़ अब के फागुनवा ना खोल अब

लगता कि क्या बात है, कचौड़ी गली सुन कैला बलमो। दरअसल बड़ा करुण प्रसंग है। सेजिया पे लोटे काला नाग हो बिरह। अब मिर्जापुर कैला गुलजार, बगल का जिला है जहां से कजरी की उत्पत्ति मानते। मिर्जापुर में गुलजार, कचौड़ी गली में रोज नैन मटक्का होता था, चले गए तुम तो।

कही गई कजरी है। बनारस जो लोग जानते हैं, बनारस किसके हैं भैया? बनारस जाने वाले दो चार लोग हैं, अच्छा कई लोग हैं। बनारस का थोड़ा भूगोल जानते होंगे भैया। थोड़ा सा आवाज मॉनिटर में, सिर्फ मेरी, बाकी ना बढ़ाना, लाउड हो जाए। बनारस में कचौड़ी गली जान है, गंगा में चौक से लेकर गंगा में जाकर खुलती है। ये इतने तेज अब गंगा की बात आई, जोरदार ताली हो जाए सचिन के लिए। उसका इतिहास कभी और बताएंगे, विषय अलग है। लेकिन चौक में आकर पूरी छह गलियां है तो चौक खुलती है। वहीं पर दालमंडी, दालमंडी पर सारी जितनी कलाकार गायिकाएं थी पहले रहती थी, जितनों को आप नाम सुन रखा, विद्याधरा भाई, विद्याधरी भाई, काशी बाई, हुसना बाई, बड़ी मोती बाई, छोटी मोती बाई, सिद्धेश्वरी देवी, रसूलन बाई, सब दालमंडी। तो दालमंडी से निकलो तो सीधे कचौड़ी गली, गौहर जान भी दालमंडी। तो जो उस चीज को समझ करके, कहाँ चले गए अचानक, सुना है कहीं चले गए, यही मिर्जापुर, यही जहां गए वहीं से लगता है उड़ेला जहजिया। तब नया नया नया पता चला था कि जहाज सैया चले गई ना रंगून। मेरी व्यथा तुम्हारे बिन कैसी है,

आज से पतली हो गई तुम्हारी धनिया, माने तुम्हारी प्रिया, ये हरा वाला धनिया नहीं है। पानवा से पातर भइल तोर धनिया, लोक में देखिए उपमा कहाँ से दी जाती है, बिंब भी क्या होते हैं। अरे पान

कहीं गए नहीं थे। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, वो अंग्रेजों के मुखबिर थे। तो जो क्रांतिकारी जो घटनाएं होती थी सारी देशभक्तों को बताया करते थे, और अचानक अंग्रेजों के हत्थे चढ़ गए, अंग्रेजों ने उनको मौत के घाट उतार दिया। तब गौहर जान ने कहा

0: आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने लोक गायिका मालिनी अवस्थी को सुना। अब आज का भारत भारती कार्यक्रम खत्म करने की प्रमिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।
1: भारत भारती।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आ मृत्यु आ आ तू या आने के लिए निकली ही होगी तो आ ही जा अभी मुरझाने के डर से डर जाए फूल अंगूर भी रस पीने सूख जाने से डर जाऊं क्यों तुझसे मैं किस लिए मेरे इस प्याले में पीते पीते कभी न खत्म होने वाली है अभी भरी आंसुओं की मदिरा बस

आ आ यदि तू भूखी है, नैवेद्य के लिए और अभी दिन, यद्यपि यौवन युक्त फिर भी सारे मेरे छोटे मोटे काम खत्म हो गए हैं, फिर भी सारे मेरे छोटे मोटे काम खत्म हो गए हैं इस दिन के, किसी तरह जुगाड़ कर ऋण चुकता किया, जन्मार्जित जो जो सब ऋषि ऋण के लिए, श्रुति जननी चरण तीर सेवन करके, आश्रय कर ध्रुव पद का संतन उसके, आ मृत्यु आ आ तू या आने के लिए, निकली ही होगी तो आ ही जा।

और आचरण करके एक तप, ऐसे आशा के श्मशान में घोर तपस्या देवर्ण के लिए रणवाद्य बजा के धड़ धड़ और बढ़ भागे हमला करके ठीक उसी क्षण को जब हो गई प्रभु की प्रथम रणाज्ञा और उसी रणयज्ञ अग्नि में जली अस्थि अस्थि मांस मांस ईंधन जैसी और उसी रणयज्ञ अग्नि में जली अस्थि अस्थि मांस मांस ईंधन जैसी आ मृत्यु आ आ तू या आने के लिए निकली ही होगी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 33वें वाचन। ऋषि हैं गृत्समत एवं भार्गव शौनक, देवता हैं रुद्र, छंद है त्रिष्टु।
1: आते पितर मरुताम सुम्नमेतु मानः सूर्यस्य संदृशो युयोथाः अभिनो वीरो अर्वति क्षमेत प्र जाये महि रुद्र प्रजाभिः। हे मरुतों के पिता रुद्रदेव, आपका सुख हमें प्राप्त हो। हमें सूर्य के उत्तम प्रकाश से कभी भी दूर न करें। हमारी वीर संतति संग्राम में शत्रुओं को पराजित करे। हम उत्तम संतति से प्रसिद्धि प्राप्त करें। त्वादत्ते भी रुद्र शंतमे भी शतम हिमा अशीय भेषजे भी व्यस्मद्वेषो वितरम व्यमहो व्यमीवाश्च तयस्वा विशूचीहि। हे रुद्रदेव, हम आपके द्वारा प्रदान की गई सुखदाई औषधियों के सेवन से 100 वर्ष तक जीवित रहें। आप हमारे द्वेष भावों तथा पापों को दूर करके हमारे शरीर में व्याप्त समस्त रोगों को नष्ट करें। श्रेष्ठो जातस्य रुद्र श्रियासी तवस्तमस्तवसाम वज्रबाहो परशिणः पारमं हसः स्वस्ति विश्वा अभीति रपसो युयोधि। हे रुद्रदेव, आप सबसे श्रेष्ठ ऐश्वर्यशाली हैं। हे आयुधधारी रुद्रदेव, आप बलवानों में सबसे अधिक बलवान हैं। हमें पापों से मुक्त करके उनके कारण आने वाली विपत्तियों को हमसे दूर करें। मा त्वा रुद्र चुक्रुधामा नमोभिर् मा दुष्टुति वृषभ मा सहूति उन्नो वीराम अर्पय भेषजे भिर भिषक्तमं त्वा भिषजाम श्रुणोमि। हे रुद्रदेव, वैद्यों से भी उत्तम वैद्य के रूप में आप जाने जाते हैं, अतः औषधियों के द्वारा हमारी संतति को बलशाली बनाएं। हम झूठी तथा निंदित स्तुतियों के द्वारा आपको क्रोधित न करें। साधारण लोगों के समान बुलाकर भी हम आपको क्रोधित न करें। हवीमभिर् हवते यो हविर् भीरव स्तोमे भी रुद्रम दिशीय रिदुदरह सुहवो मानो अस्यै बभ्रुः सुशिप्रो रीरधन्मनायै। जिन रुद्रदेव को हविष्यान्न समर्पित करके स्तुतियों के द्वारा आवाहित किया जाता है, उन्हें हम स्तोत्रों के द्वारा शांत भी करें। कोमल हृदय वाले तेजस्वी हसमुख स्वभाव वाले तथा उत्तम प्रकार से बुलाए जाने योग्य रुद्रदेव ईर्ष्यालुओं के द्वारा हमारी हिंसा न कराएं। उन्मा ममंद वृषभो मरुत्वान त्वक्षीयसा वयसा नाधमानम घृणीवच्छाया मरपा अशीया विवासेयम रुद्रस्य सुम्नम। कामनाओं की पूर्ति करने वाले मरुतों से युक्त हे रुद्रदेव, हम ऐश्वर्य की कामना वालों को तेजस्वी अन्न से संतुष्ट करें। जिस प्रकार धूप से पीड़ित व्यक्ति छाया की शरण में जाता है, उसी प्रकार हम भी पाप रहित होकर रुद्रदेव की सेवा करते हुए उनके सुख को प्राप्त करें। क्वस्य ते रुद्र मृडया कुरहस्तो यो अस्ति भेषजो जलाशः अपभर्ता रपसो दैव्यस्याभि नु मा वृषभ चक्षमीथाः। हे रुद्रदेव, जिस हाथ से आप औषधियां प्रदान करके सुखी बनाते हैं, वह आपका सुखदायी हाथ कहाँ है? हे बलशाली रुद्रदेव, आप दैवी आपत्तियों को दूर करने वाले हैं, अतः हमारे अपराधों को क्षमा करें। प्रबभ्रुवे वृषभाय श्वितीचे महो महीम सुष्टु तिमीरयामि नमस्या कल्मलीकिनम नमोभिर गृणीमसि त्वेषम रुद्रस्य नाम। ऐश्वर्य प्रदाता, सबके पालक तथा श्वेत आभा युक्त रुद्रदेव की हम महान स्तुतियां गाते हैं। हे स्तोताओं, हम रुद्रदेव के उज्ज्वल नाम का संकीर्तन करते हैं। आप लोग भी तेजस्वी रुद्रदेव की स्तुतियों के द्वारा पूजा करो।
0: अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 33वें वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्बु त्रिपाठी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

अपवित्र कल्पना भी उतनी ही बुरी होती है जितना बुरा अपवित्र कर्म होता है। कल्पना आत्मा का नेत्र है।

ईश्वर ही हमारा आश्रयदाता है और शक्तिदाता भी। वही आपातकाल में हमारी सबसे बड़ी सहायता करता है। मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है।

ईश्वर के अनंत नाम हैं, अनंत रूप हैं, अनंत भाव हैं। उसे किसी नाम से, किसी रूप से और किसी भाव से कोई पुकारे, वह सबकी पुकार सुन सकता है, वह सबकी मनोकामना पूरी कर सकता है।

जिस हृदय में ईश्वर का प्रेम प्रवेश कर गया, उस हृदय से काम, क्रोध, अहंकार आदि सब निकल जाते हैं।

जो मनुष्य इस सत्य को पहचान जाता है कि ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, अनित्य है, वह मनुष्य जल्द ही ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर लेता है।

ईश्वर को पाने के लिए जिसका हृदय तरस रहा है उसका जन्म धन्य है, उसकी माता धन्य है, कारण उसका सर्वस्व तो इस ईश्वर में समाया हुआ है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। देश को आजाद हुए अभी कुछ साल ही बीते थे। तत्कालीन रेल मंत्री मुंबई जा रहे थे। उनके लिए प्रथम श्रेणी का डिब्बा लगा था। गाड़ी चलने पर उन्होंने कहा, बाहर बहुत गर्मी है लेकिन ये डिब्बा काफी ठंडा है। उनके पीए ने जवाब दिया, जी सर, गर्मी तेज थी इसलिए इसमें कूलर लगवा दिया है। कूलर लग गया है? मुझे बताए बिना? आप लोग कोई काम करने से पहले मुझसे पूछते क्यों नहीं? क्या बाकी जो लोग गाड़ी में चल रहे हैं उन्हें गर्मी नहीं लगती होगी? ये बहुत गलत काम हुआ है। आगे गाड़ी जहां भी रुके पहले ये कूलर निकलवाइए। इस तरह मथुरा स्टेशन पर गाड़ी रुकी और कूलर निकलवाने के बाद ही फिर गाड़ी आगे बढ़ी। आज भी उस डिब्बे में जहां कूलर लगा था लकड़ी जड़ी हुई है, जो उनके ऊंचे आदर्शों की याद दिलाती है। अपने समय के वो रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी का पूरा जीवन ही ऐसी अनेक प्रेरक घटनाओं से भरा हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 को उत्तर प्रदेश के छोटे से रेलवे टाउन मुगलसराय में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री मात्र 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। इस छोटे से शहर में उनकी स्कूली शिक्षा कुछ विशेष नहीं रही। कुछ समय बाद उन्हें वाराणसी अपने चाचा के घर रहने के लिए भेज दिया गया। घर पर सब उन्हें नन्हे कहकर पुकारते थे। वे कई मील की दूरी पैदल नंगे पांव ही तय कर स्कूल जाया करते थे। भीषण गर्मी में जब सड़कें अत्यधिक गर्म हुआ करती थीं, तब भी उन्हें ऐसे ही स्कूल जाना पड़ता था। जैसे जैसे उनकी समझ विकसित होने लगी उन्हें पराधीन भारत की दशा बेचैन करने लगी। जब गांधी जी ने ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे राजाओं की निंदा करते हुए भाषण दिया था तो वे इस निंदा से अत्यंत प्रभावित हुए। उस समय उनकी उम्र मात्र 11 साल थी, लेकिन तभी से देश की सेवा का संकल्प उन्होंने ले लिया था। असहयोग आंदोलन के लिए गांधी जी ने पूरे देश से आह्वान किया और 16 साल के नन्हे यानी लाल बहादुर शास्त्री ने पढ़ाई छोड़ देने का निर्णय कर लिया। उनके इस निर्णय से परिवार में हड़कंप मच गया। मां की उम्मीदें टूट गईं, लेकिन शास्त्री जी को तो भारत मां की उम्मीदों पर खरा उतरना था। गांधी जी के विचार उन्हें पुकार रहे थे। सभी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन असफल रहे। छोटे कद के कमजोर से दिखने वाले लाल बहादुर शास्त्री अपने संकल्प के साथ अडिग खड़े रहे। उनके करीबी भी ये जानते थे कि एक बार मन बना लेने के बाद वे अपना निर्णय बदलेंगे नहीं। बाहर से कमजोर दिखने वाले लाल बहादुर अंदर से चट्टान की तरह दृढ़ थे।

वाराणसी के काशी विद्यापीठ में पढ़ते हुए शास्त्री जी महान विद्वानों और देशभक्तों के संपर्क में आए और इस वातावरण का प्रभाव ही था कि वे आजीवन राष्ट्र सेवा का व्रत ले चुके थे। वैसे बचपन से ही उनके विचार दूसरे बच्चों से अलग और सुलझे हुए थे। तभी तो जब वे मुगल सराय के स्कूल में पढ़ते थे तब उनका नाम लाल बहादुर वर्मा पुकारा जाता था। तब उन्होंने अपने हेडमास्टर से निवेदन किया कि उन्हें लाल बहादुर वर्मा न कहकर केवल लाल बहादुर ही पुकारा जाए। जब उनके हेडमास्टर साहब ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो, तब नन्हे से लाल बहादुर ने जवाब दिया, सर मेरा मानना है कि हर इंसान की पहचान उसके काम और अपने नाम से होनी चाहिए, जाति और धर्म सूचक सरनेम से नहीं। और कमाल की बात ये थी कि नन्हे की बातें सुन उनके हेडमास्टर वसंतलाल वर्मा ने स्वयं भी अपने नाम के आगे से अपना सरनेम हटा दिया। आगे चलकर विद्यापीठ द्वारा प्रदत्त स्नातक की डिग्री शास्त्री ही उनके नाम के साथ जुड़ गई और उनका पूरा नाम पुकारा गया लाल बहादुर शास्त्री। सन 1927 में उनका विवाह ललिता देवी के साथ संपन्न हुआ। दहेज के नाम पर वो एक चरखा और हाथ से बुने कुछ मीटर कपड़े लेकर आईं, क्योंकि शास्त्री जी इससे अधिक कुछ चाहते ही नहीं थे। खादी से उनका प्रेम आजीवन रहा और किफायत उनकी जीवन शैली थी। खादी के फटे और पुराने कुर्ते उनकी आलमारी में सहेज कर रखे होते थे। वो कहते, जब नवंबर का महीना आएगा ना, जाड़े के दिन होंगे, तब ये काम आएंगे, क्योंकि तब मैं इनके ऊपर से कोट पहन लूंगा। आलम ये था कि फटे कुर्तों से वो अपनी पत्नी से कहकर रुमाल बनवा लिया करते थे। उनका मानना था कि बहुत मेहनत के साथ खादी बीनी जाती है, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। दरअसल गांधी जी का प्रभाव उन पर बहुत गहरा हुआ था। सन 1930 में जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ते हुए दांडी यात्रा की, तब भी शास्त्री जी इस संघर्ष में शामिल हुए। स्वाधीनता आंदोलन में अपनी सक्रियता के कारण वे कुल 7 वर्ष तक जेल में भी रहे और जब देश आजाद हुआ तब उन्हें अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया और जल्दी ही वे गृह मंत्री के पद पर भी आसीन हुए। सन 1951 में जब वे नई दिल्ली आए तब केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभागों का प्रभार उन्होंने संभाला। रेल मंत्री, परिवहन एवं संचार मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, गृह मंत्री, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण दायित्व उन्होंने निभाए। उनकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही थी। जब वे रेल मंत्री थे तब एक रेल दुर्घटना हुई जिसमें कई लोग मारे गए। शास्त्री जी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उनका जीवन ईमानदारी और उच्च आदर्शों का एक अनुपम उदाहरण है। समय के साथ जीवन बदल ही जाता है, लोग बदल जाते हैं, यहां तक कि समय की मांग की दुहाई देते हुए लोगों के आदर्श भी बदल जाते हैं। लेकिन शास्त्री जी के मन और विचारों पर संस्कारों की जो छाप पड़ी थी वो कभी नहीं बदली। वो उन्हीं जीवन मूल्यों और आदर्शों को भीतर सहेजे अपनी रौ में चलते रहे।

सन 1964 में नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। ये वो समय था जब देश सन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और दूसरी तरफ भयंकर सूखा पड़ने के कारण खाद्यान्न संकट भी सामने था। इन्हीं हालात में सन 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध आरंभ हुआ। ऐसे समय में शास्त्री जी ने दृढ़ और जबरदस्त आंतरिक शक्ति के साथ देश का नेतृत्व और मार्गदर्शन किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के हमलों का जोरदार जवाब दिया। भारत ने 6 सितंबर को पंजाब फ्रंट खोला और भारतीय सैनिक बरकी तक जा पहुंचे। इस स्थिति में अमेरिका से चेतावनी आई कि अगर युद्ध नहीं रुका तो भारत को गेहूं नहीं भेजा जाएगा, लेकिन शास्त्री जी का जवाब था, बंद कर दीजिए हमें गेहूं देना। इसके बाद उन्होंने अक्टूबर सन 1965 को दशहरे के दिन रामलीला मैदान में देश की जनता को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों से एक दिन का उपवास रखने की अपील की और खुद भी व्रत रखना शुरू कर दिया। युद्ध की परिस्थितियों से उबरने और कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने देश को नारा दिया, जय जवान जय किसान। उन्होंने जनता से हर खाली जगह पर खेती करने की अपील की और अपने सरकारी आवास के लॉन में खुद भी सब्जियां बोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मेहनत प्रार्थना करने के समान है और पूरा देश उनके साथ इस प्रार्थना में शामिल हो गया। वो देश में शिक्षा सुधार के हिमायती थे, रोजगार के अवसर बढ़ें इसके लिए मूल्य परक शिक्षा पर उनका जोर था। वो कहा करते थे कि जो लोग शासन करते हैं उन्हें देखना चाहिए कि लोग प्रशासन पर किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं, अंततः जनता ही मुखिया होती है। इन्हीं आदर्शों पर चलते हुए 11 जनवरी सन 1966 को ताशकंद में उन्होंने अंतिम सांस ली। देश सेवा को समर्पित अपने पूरे जीवन में शास्त्री जी उदात्त निष्ठा और क्षमता, दृढ़ संकल्प शक्ति, विनम्र सहिष्णु और उच्च आदर्शों और जीवन मूल्यों से संपन्न एक महान राष्ट्र प्रेमी के रूप में पहचाने गए। सादा जीवन और ईमानदारी की अनूठी मिसाल थे शास्त्री जी। कितने यादगार प्रसंग जुड़े हैं उनके जीवन से। सरकारी खर्चे पर मिली कार का प्रयोग उनके अपने बच्चे नहीं कर सकते थे। एक बार उनके बेटे ने कार चला ली तो किलोमीटर का हिसाब कर उन्होंने पैसा सरकारी खाते में जमा करवाया। इसी तरह एक बार उनके घर पर सरकारी विभाग की ओर से कूलर लगवाया गया। उन्होंने ये कहते हुए कूलर हटवा दिया कि इलाहाबाद के हमारे पुश्तैनी घर में कूलर नहीं है, कभी धूप में निकलना पड़ सकता है, ऐसे आदतें बिगड़ जाएंगी। उनकी टेबल पर हमेशा हरी घास सजी रहती थी। वे कहा करते थे कि सुंदर फूल लोगों को आकर्षित तो करते हैं, लेकिन कुछ ही समय में वो मुरझाकर गिर जाते हैं। घास वो आधार है जो हमेशा रहती है। मैं लोगों के जीवन में घास की तरह ही एक आधार और खुशी की वजह बनकर रहना चाहता हूँ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक गई राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: दोस्तों नमस्कार, 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने।
2: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने।
1: आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने लोक गायक शशि कुमार पांडे जी। आप मूलतः बघेली लोकगीतों की सौंधी मिट्टी की खुशबू बिखेरते हैं। आकाशवाणी दूरदर्शन के एक ग्रेट कलाकार हैं। भारत सरकार के संस्कृति विभागों द्वारा आयोजित बहुत से कार्यक्रमों में आपसे मंच शोभायमान हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्टूडियो में स्वागत।
3: धन्यवाद।
1: आज हमारे स्टूडियो का भी सौभाग्य है कि आज हमें बहुत सारे बघेलखंडी लोकगीत सुनने को मिलेंगे। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि आप लोकगीतों को, जैसे कि सभी कहते हैं कि वो अपने समय की सबसे पुरानी और सशक्त कविताएं हैं, आप लोकगीतों का वर्गीकरण कैसे करेंगे?
3: बिल्कुल सही बात है। संगीत की शुरुआत ही मेरे समझ से लोक से ही हुई है। उसको व्यवस्थित रूप तो बाद में दिया गया, जब स्वरों के विषय में लोगों ने सीखना शुरू किया तो फिर व्यवस्थित संगीत शुरू हुआ। बाकी यह प्रकृति से सीधे लोक में आया है। पानी के बहने की आवाज़, पत्तों के डोलने से उत्पन्न आवाज़, प्रकृति से जो ध्वनियाँ निकली वो संगीत के रूप में लोक में आई
1: जी,
3: और लोगों ने उनको गुनगुनाना शुरू किया और उन गुनगुनाने के साथ में उनको शब्दों के साथ मिलाने का प्रयास किया। तो पहले लोक संगीत था, इसके बाद लोक गीतों का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा मेरा मानना है। लिखा भी कई जगह मैंने इसी तरह से लगभग पाया। अब जब लोक गीत आ गए तो विभिन्न अवसरों पर उनका उपयोग होने लगा
1: जी,
3: और जब विभिन्न अवसरों पर उपयोग होने लगा तो धीरे धीरे लगभग हर अवसर पर, हर अच्छे मौके पर इनका उपयोग शुरू हुआ, लोग गाने लगे और कालांतर में बहुत संख्या हो गई। और आते आते आते आते हमारी पीढ़ी तक ये लोक संगीत आया, जब तब तक इतना इसका क्षेत्र विस्तृत हो चुका था कि अब हमको समझने के लिए या आने वाली पीढ़ी को समझाने के लिए एक तरीका अपनाया गया कि उसको व्यवस्थित रूप से हम समझ सकें और समझा भी सकें
1: जी।
3: तो फिर हम लोगों ने उसको तीन मुख्य भागों में उसको विभक्त किया। एक तो संस्कार गीत
1: जी,
3: हमारे यहाँ 16 संस्कार, बड़े महत्वपूर्ण संस्कार होते हैं और लगभग हर संस्कार में लोक गीतों का गायन होता है
1: जी।
3: दूसरा एक पक्ष होता है ऋतुपरक गीत, लोक संगीत मतलब जो सामने दृश्य है हमारे, उससे संबंधित गीत जो हमारे अंदर से फूटे वही है लोक संगीत। विवाह का दृश्य हो, या झूला पड़ा है झूला का दृश्य हो, या कि एक शिशु पैदा हुआ है उस समय खुशी का गीत, मतलब जो दृश्य हमारे सामने है उसी से संबंधित गीत अगर हमारे मन से निकले वही है
1: लोक का गीत।
3: इसी तरह से जो संस्कार गीत हैं वो तो ठीक है, उसके अलावा कुछ ऋतुएं हैं हमारे यहाँ, ऋतुओं के आधार पर त्यौहार होते हैं, त्योहारों के गीत हैं। और तीसरा श्रमिक गीत कह सकते हैं, काम करते हैं खेतों में, खलिहानों में, खदानों में, सड़कों में, कहीं भी दिन भर पसीना बहाते हैं और शाम को जब आते हैं तो फिर मस्ती के साथ वो अपने गीतों को गाते हैं और सभी महिला पुरुष मिलकर के उत्सव मनाते हैं, गाते हैं, तो वो हो गया श्रमिक गीत। तो तीन तरह से इसको विभक्त कर सकते हैं।
1: लोकगीतों में हमेशा से राम के जीवन को स्थानीय संस्कृति और जीवन शैली में गहराई से उतरते देखा गया है। प्रभु श्री राम को बघेलखंड ने बहुत आत्मीयता से रिश्तों में बांधा है। और आप अगर आज के इस मुलाकात की, बातचीत की शुरुआत हम प्रभु श्री राम के सोहर से करें तो मुझे लगता है कि हम सबका बड़ा सौभाग्य होगा।
3: बड़ी महत्वपूर्ण बात है और आपने बघेलखंड को इतना मान दिया, इसके लिए हम अभिभूत हैं और इस रेडियो के प्रति आभार भी ज्ञापित करते हैं कि इतना मान दिया और हमारी परंपराओं का हमारे यहाँ प्रचलित जो लोकगीत हैं उनको आप जानना चाह रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो बघेलखंड है, बघेलखंड में भगवान राम व्याप्त हैं
1: जी,
3: लोक गीतों में तो व्याप्त हैं ही, लोगों की दिनचर्या में व्याप्त
1: हैं।
3: और हमारे यहाँ हर जन्म लेने वाला शिशु
1: जी
3: राम होता है, और हर जन्म लेने वाली कन्या माँ जानकी स्वरूपा होती है
1: जी।
3: इसीलिए जैसे ही खबर आती है कि बेटे का जन्म हुआ है, वैसे ही हमारे यहाँ की महिलाएं अनायास ही बोल पड़ती हैं, कोई भी महिला शुरू कर देगी

0: हर गीत में राम है। प्रायः जितने शोहर हैं हमारे यहाँ उनमें अधिकांश गीतों में राम ही है, और जन्म में ही नहीं विवाह भी जब होता है तो उस समय का वर चाहे जिस वर्ग का हो चाहे जिस हैसियत का हो माली हालत उसकी क्या है ये मायने नहीं रखती है। यदि हमारे यहाँ महाराज साहब के किले में अगर शादी हो रही है तब भी वो वर राम होगा। मतलब हमारे यहाँ के लोक संगीत में भेदभाव नहीं है, वो सबको समान मानता है, चाहे राजा के घर का वर हो
1: जी
0: और चाहे सड़क के किनारे रह रहे एक मजदूर के बेटे का।
1: इतनी अच्छी बात है, समरसता का ये भाव आपको कितनी समृद्धता देता है, कितना मन में सौहार्द लाता है। लेकिन सोहर के बाद अगर हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी कि एक अगर आप हमें विवाह गीत, द्वारचार गीत या बन्ना अगर कोई अच्छा सा हमें आज हमारे श्रोताओं के लिए सुनाए।
0: हम सुनाते हैं, पर इसके क्रम में आपको बता दूं
1: जी,
0: थोड़ा सा मैं धृष्टता करना चाह रहा हूं कि विवाह के पहले हमारे यहाँ उपनयन संस्कार होता
1: जी,
0: है
1: जी,
0: और बघेलखंड में उसको बरुआ या व्रतबंध कहते हैं। तो उसमें भी भगवान राम की ही छवि देखते हैं हमारे यहाँ।
1: जी
0: हमारे यहाँ एक रस्म होती है व्रतबंध के बाद जो बटुक होता है वो काशी पढ़ने जाता है, लेकिन लोक में मान्यता ये है कि भांजा नाराज होके जा रहा है
1: जी,
0: वो रिसाता है, उसको रिस लगती है, गुस्सा लगती है किसी कारण से मामा के ऊपर, तो फिर मामा उसको मनाने जाता है।
1: जी जी जी,
0: जब मामा मनाने जाता है तो मामा के साथ में मामी और जो गोतीने पड़ोसीने होती हैं और जो परिवार की महिलाएं होती हैं कुछ पुरुष वर्ग भी साथ में जाते हैं उस बटुक के, तब वो रास्ते में गाते हैं। हमारे यहाँ एक गीत बड़ा महत्वपूर्ण होता है गईलहाई, गईल माने रास्ता और गईलहाई माने रास्ता में गाया जाने वाला गीत। तो जब भी किसी रस्म को पूरा करने के लिए हमारे घर की महिलाएं जाएंगी
1: जी,
0: तो रास्ते में गीत निर्धारित है वो गाएंगी ही।

0: ये गीत हमारे यहाँ होता है।
1: और राई नॉन भी उसारते हैं कई जगह।
0: हाँ,
1: हाँ,
0: फिर वो मामा उसको
1: कि
0: मना
1: भांजी
0: करके
1: को
0: लेता है,
1: नजर ना लग
0: वो
1: जाए।
0: कुछ नेग देता है,
1: जी
0: टिक्का लगाते हैं,
1: हाँ
0: राई नॉन उतारते हैं,
1: हाँ
0: ये सारी चीज़ें होती हैं। मामी ये सब करती है और मामा उनको कुछ पैसे या कि अपनी हैसियत के अनुसार कुछ गहना, घड़ी, कुछ भी दे करके, और फिर भांजे को वापस, छोटे होने पर व्रतबंध होने की परंपरा रही है, तो फिर उसको गोदी में लेकर के
1: लेकर
0: वापस।
1: आते हैं। सर, मुझे यहाँ ये लगता है कि हम लोग कितने धन्य हैं
0: ये
1: कि हमारे यहाँ पल पल के लिए गीत हैं,
0: हाँ बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल
1: हमको
0: बिल्कुल,
1: डीजे वाले बाबू से कहने की जरूरत नहीं
0: नहीं
1: है
0: नहीं
1: कि
0: कोई
1: कोई
0: जरूर
1: गाना
0: नहीं,
1: बजा
0: कोई
1: दो।
0: जरूर नहीं।
1: हमारे यहाँ तो हर पल पर एक गीत
0: हाँ
1: है।
0: हाँ
1: आप
0: बिल्कुल।
1: देखिए, रूठने पे गीत है, मनाने पे गीत है, और सबसे बड़ी बात कि कोई रूठा राठी होती भी नहीं,
0: नहीं
1: क्योंकि
0: कुछ
1: हमारे
0: नहीं
1: यहाँ तो
0: होता।
1: गारी भी गीत है।
0: अच्छा, कुछ भी होता है तो वो विनोद के लिए होता है,
1: हाँ
0: और उठना होता है तो विनोद के लिए, मनाना होता है तो भी विनोद के लिए। अगर कहीं सही सही हुआ है तो
1: हाँ
0: हमारे यहाँ के गीत इस तरह के हैं कि उसको विनोदपूर्ण बना देते हैं।
1: बिल्कुल। तो द्वार चार का कोई गीत आपको अगर याद आ रहा हो, राम बन्ना जब बनकर आते
0: हाँ,
1: हैं।
0: बन्ना का भी गीत है जिसमें राम है, और जैसा मैंने बताया कि हर वर राम होता है और हर कन्या माँ जानकी स्वरूपा
1: जी
0: होती है, तो उस समय जब बन्ना गाया जाता है तो बन्ना में भी लोग गाते हैं कि अब ये देखिए, ये सारे गीत जो हैं हमारे यहाँ महिला स्वरों में गाए जाते हैं, पर सुनते सुनते मुझे कुछ मुखड़े और कुछ अंतरे याद हैं,
1: जी
0: तो पूरा पूरा गीत मैं नहीं सुना पा रहा हूँ आपको, पर वानगी बतौर हम आपको कुछ गीत
1: बिल्कुल।
0: बताए दे रहा हूँ। तो जैसे ही वर आएगा वैसे कोई न कोई महिला शुरू हो जाएगी।

वर को राम ही मानेंगे। यहाँ तक कि अन्य गीत तो जो होते हैं हमारे यहाँ एक विशेष गीत होता है गारी। तो गारी मजाक वाली जो गारी गाई जाती हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो एक स्वस्थ गारी गाई जाती है उसमें राम के किसी न किसी जीवन के प्रसंग का उल्लेख होता है। एक गारी गाई जाती है हमारे यहाँ, दो लाइन याद आ रही है मुझे,

0: इस तरह से गाड़ी की शुरुआत होती
1: क्या बात है, मन चाहता है कि सुनते ही जाएं, लेकिन राम से बड़ा राम का नाम, तो क्यों ना आपसे लगे हाथ हम ये भी जान लें कि बघेल खंड में कहते हैं कि राम कण कण में व्याप्त हैं, आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे?
0: बिल्कुल सही सुना है आपने, और जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं। और रेडियो के लगभग हर श्रोता को ये मालूम होगा कि भगवान राम की तरुणाई के 11.5 वर्ष बघेलखंड में ही बीते हैं। वनवास का अधिकांश समय उन्होंने चित्रकूट में व्यतीत किया, और चित्रकूट परिसर में ही हमारा बघेलखंड निवास करता है। तो स्वाभाविक है कि वहाँ के लोकगीतों में तो राम व्याप्त हैं ही, वहाँ के संस्कारों में राम हैं, और वहाँ की संस्कृति में राम हैं, और यहाँ तक कहें कि वहाँ की दिनचर्या में राम व्याप्त हैं, वहाँ के खेतों में, वहाँ के खलिहानों में, वहाँ के फसलों में, जहाँ भी आप देखें राम हैं, वहाँ व्याप्त हैं राम, जंगलों में, शहरों में, पहाड़ों में राम है वहाँ निश्चित रूप से। इतना हमारे यहाँ के लोकगीतों में और अन्य प्रसंगों में जो राम हैं, इतना मैं समझता हूँ उसका मुख्य कारण यही है कि 11.5 वर्ष, और वो भगवान राम के 11.5 वर्ष जितना हम लोग पढ़ सके, सुन सके एक मानवीय दृष्टिकोण से, तो उनके जीवन के वो सर्वोत्कृष्ट 11.5 वर्ष थे। फिर उसके बाद से फिर उनके ऊपर विडंबनाएं आना शुरू होती हैं, तो फिर अंत तक वो धर्म संकट का ही जीवन जो हम लोग पढ़ते हैं, हालांकि अब उनके लिए क्या धर्म संकट, क्या खुशी, क्या गम, जो कुछ भी किया उन्होंने, या कि उनके चरित्र में से जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो सारा कुछ हमें दिखाने के लिए, हमें सिखाने के लिए ही है, वो हमारे आदर्श हैं। तो उनके हर परिस्थिति में कुछ न कुछ हमारे लिए संदेश है, पर वो 11.5 वर्ष जो है वो सर्वोत्कृष्ट हैं, जो उनके जीवन का मूल उद्देश्य था, ऋषियों का सानिध्य, चर्चा, और जो प्रकृति से तादात्म्य, ये सारी चीजें उन 11.5 वर्ष में उन्होंने बहुत कुछ दिया। इसलिए हमारा बघेलखंड पूरे भारतवर्ष से कहीं अधिक उनको याद करता है, ऐसा हम लोग मानते हैं
1: जी।
0: अब इसको गारंटी के साथ या चैलेंज के साथ नहीं कहते, लेकिन हमारा मानना है, तो मानने में किसका क्या वर्ष है वो तो माना जा सकता है
1: जी। इस देश का मुझे लगता है कि हर शख्स प्रभु श्री राम जैसी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जैसा
0: जी
1: बनना चाहता है, उनके सत्कर्मों को देखकर आगे बढ़ना चाहता है। निश्चित रूप से आपसे जो बात कर करके बीच में जो आपने लोकगीतों की छोटी छोटी सी फुलझड़ियां हमारे लिए उजास बिखेरी है, वो बहुत ही मज़ेदार रही हैं। एक गारी मुझे भी याद आती है, मेरी दादी कहती थी कि राम जब बिहाने गए तो वहाँ की महिलाएं चाहती नहीं थी कि ये वापस जाएं अपने ससुराल, तो कहती थी कि तुम्हारा भैया इतना करुआ है, उसे हम गोरा कर देंगे, यहीं रुक जाओ।
0: क्या
1: तो,
0: बात,
1: मतलब आप देखिए कि लोकगीतों में कहीं ना कहीं साहस भी होता है। आप सोच सकते हैं कि भगवान से कोई ऐसा ऐसा निवेदन कर सकता है कि तुम्हारे भाई करुआ है, यहाँ रुक जाओ, लेकिन फिर भी लोक की यही खासियत है।
0: बिल्कुल,
1: और बड़ी मजेदार सी ये बातें होती है आपसे।
0: मैं ऐसा समझता हूँ कि राम इतने नजदीक हो गए हैं व्यक्ति के, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बहुत नजदीक हो जाता है, तब औपचारिकताएं बहुत मायने नहीं रखती, औपचारिकताएं रह ही नहीं जाती, इतना अपनापन हो जाने के बाद। और राम से इतना नजदीक लोग अपने आप को मान लेते हैं बहुत जल्दी, उनका व्यक्तित्व इस तरह का है कि कोई कुछ भी बोल सकता है, उनको कुछ कहना तो है नहीं, मुस्कुराना है उनको, भगवान राम को। तो ये आपकी दादी जी का जो प्रसंग है, ये निश्चित रूप से बिल्कुल सही बात है। तो क्या वो लोग गाते थे उसमें?
1: वो यही कहती हैं कि वो निवेदन जो कर रही हैं वो इसी तरीके से कर रही हैं कि तुम्हारे भाई तो पल पल पे गुस्सा होते हैं, तो हम उनका गुस्सा ठंडा कर देंगे। उसके अर्थ आपको बता रही हूँ कि जो अंतरे में वो सुनाती थी, वो जैसे हम लोग कभी आपस में झगड़ते थे और ये कहते थे कि हमारे हिस्से का उसने खा लिया, तो हमेशा कहती थी राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। तो आप देखिए कि जीवन में ये कहावतें कितनी उतरी हुई हैं, मतलब आप अगर बुरा हो जाए तो भी प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए, अच्छा हो तब तो प्रभु का है ही कृपा। तो ये लोग से ही ताकत मिलती है।
0: हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल।
1: ऐसे में कोई और गीत अगर आपको याद आ रहा हो हमारे श्रोताओं के लिए।
0: अब देखिए, गीत हमारे यहाँ के जैसे मैंने बताया कि लोक गीतों में जितने भी गीत हैं, हर गीत में भगवान राम है। ये तो अभी तक जो अपन चर्चा कर रहे थे ये संस्कार गीत थे। हमारे यहाँ के जो ऋतुपरक गीत हैं और जो श्रम गीत हैं उनमें भी राम है। जैसे ऋतुपरक गीतों में अगर चलें तो चैती हमारे यहाँ गाते हैं। चैती वैसे सेमी क्लासिकल है, बनारस का चैती और हमारे पास ये मशहूर है, अवध में भी गाते हैं, चैती लगभग तमाम गाते हैं, तो वो सेमी क्लासिकल है। हमारे यहाँ का लोक गीत है चैती,

0: ये हमारे यहाँ गाते हैं, ये तो हिंदी में है, लोक भाषा में भी, बघेली में भी, भगवान राम जैसे, और भी गीत इसके बाद चले अगर श्रम गीतों में, श्रम गीतों में भी राम है। हमारे यहाँ एक सुआ गीत गाते हैं लोग, सुआ गीत में एक प्रसंग आता है जब रावण सीता का हरण करता है
1: जी,
0: तब गाते हैं, मस्ती के साथ उसमें डांस करते हैं। अब उनके लिए राम का नाम महत्वपूर्ण है, राम का चरित्र महत्वपूर्ण है, उनको उसी में इंजॉय करना है, उसी में आनंद लेना है। अब वो प्रसंग खुशी का है कि गम का, इससे उनसे बहुत लेना देना नहीं है। तो वो जब सीता का हरण करता है रावण, तब वो गाते हैं।

0: बैठे। अब उसको ये गाने के उतना वो भाव में तल्लीन हो जाएंगे कि इस गाने की गति जो है वो बढ़ती जाएगी
1: बढ़ती जाएगी।
0: और इतना बढ़ेगी कि सामान्य श्रोता अगर उनके बीच में है तो उसके पैर थिरके बिना नहीं रह जाएंगे। अगर थोड़ा भी संगीत उसके अंदर है तो फिर वो बड़े स्पीड में गाएंगे, सिया हरे रामन जाए सियरों में रथ पर बैठे, सिया हरे रामन जाए सियरों में रथ पर बैठे। इन्हीं राम के गीतों को गाते गाते वो शाम से सुबह कर देंगे बड़ी मस्ती, और सुबह फिर से वो इसी तरह से श्रमिक गीत। एक और मुझे ध्यान आ रहा है, हमारे यहाँ का अब एक विलुप्त प्राय गीत रहा है, उसको मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने बचपन में कभी सुना था,
1: जी।
0: दृश्य देखा था। एक गीत होता है मलेला, उसको हमारे यहाँ बघेलखंड में ही कुछ हिस्से में उसको टप्पा बोलते हैं। तो जब कभी डंफर नहीं हुआ करते थे, बाड़ी वाले ट्रक हुआ करते थे, तो खदानों में गिट्टी लेबरर लोड करते थे और वही जा करके फिर उसको दूसरी जगह अनलोड करते थे। तो जब ट्रक चलता था उसके गिट्टी के ऊपर वो बैठ जाते थे और उसके ऊपर बैठे बैठे फिर रास्ते में वो मस्ती करते थे और गाते थे। तो उस समय वो मलेला गीत गाते थे,
1: जी
0: तो उसकी शुरुआत वो करते थे राम से।
1: हाँ
0: वैसे जो मलेला गीत है प्रायः देखने में आया है, श्रृंगार रस का गीत है, कभी संयोग श्रृंगार उसमें दिखता है, कभी वियोग श्रृंगार दिखता है, प्रायः दिखता उसमें श्रृंगार रस है।
1: श्रृंगारस।
0: लेकिन उसकी शुरुआत जो है वो राम नाम से होती है। तो वो नायिका पूछती है

0: शुरुआत वहां से होती है।
1: क्या बात है, अभिवादन से लेकर संदेशा पहुंचाने तक हर बात में राम व्याप्त है।
0: राम व्याप्त है,
1: कितनी अद्भुत महिमा है। और आज की ये बातचीत बहुत ही अच्छी रही है। एक और बात मुझे ऐसे में याद आ रही है, क्योंकि जब लोग की बातें छिड़ती हैं तो आपको भी अपनी पुरानी यादें आती हैं। हमारी दादी ये भी कहा करती थी कि सृजन से विसर्जन तक राम है।
0: हाँ बिल्कुल है।
1: आप देखिए कि किसी को कोई आपने जैसे बोला कि राम राम कहे हो,
0: हाँ,
1: बस ये है कि ब्रिज में वो शब्द अलग हो जाते हैं, तरीके अलग हो जाते
0: बिल्कुल,
1: हैं,
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: लेकिन सब वही व्याप्त है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, और लोकगीतों को जिस तरह से आपने समझाया है कि किस तरह से श्रृंगार गीत, चाहे वो संयोग श्रृंगार हो, वियोग श्रृंगार हो, ऋतु गीत, उपनयन संस्कार तक के गीतों पर बात हो गई, ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप आए
0: मैं
1: स्टूडियो।
0: तो अभिभूत हूँ कि लोक गीतों को इतना मान दिया आपने। भगवान राम तो सर्वमान्य हैं,
1: जी
0: और कुछ लोगों के मान देने या न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता
1: जी
0: उनकी प्रतिष्ठा में, लेकिन लोक गीतों को मान दिया है आपने, राम से जोड़ा उनको, तो हमारा पूरा बघेलखंड और बल्कि पूरे भारतवर्ष का जो लोक जगत है,
1: जी
0: खासकर लोक गायन का जगत, उसकी तरफ से मैं आभार ज्ञापित कर रहा हूँ रेडियो का।
1: आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं सर। हम एक बार पुनः अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि लोकगीत हमारी विरासत हैं, हमारी मिट्टी है, और अपनी जड़ों से खुद को जोड़े रखना, इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं होता। तो अगर आपको भी ऐसे कुछ अनछुए गीत नज़र आ रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, तो उन्हें लिखिए और अपने अगली पीढ़ी में पहुँचाने का कष्ट कीजिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमें भारतीय ज्ञान परम्परा को बताती हैं, भारतीय मनीषियों को बताती हैं, तो इन्हें बचा कर रखिए। सर पुनः एक बार आपका बहुत धन्यवाद। आप स्टूडियो में आए और आपने हमें इतने अच्छे अच्छे गीतों के साथ कहानी की तरह सारी बातें बताई, बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आमने सामने में, बघेलखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक शशि कुमार पांडे जी के साथ ये खास बातचीत। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और आपके साथ ही मैं आपकी दोस्त मनीषा। आशा है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपके कोई और भी सुझाव है तो हम सहर्ष उसका स्वागत करते हैं। अपने सुझाव देने के लिए हम आपको अपना ईमेल आईडी बता दें, radioazadhind@gmail.com। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
2: आमने सामने।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

0: آداب سامعین، 90.8 میگا ہرٹس پر یہ ریڈیو آزاد ہند ہے، دیش کا چینل دیش کے لیے، اور میں غوثیہ خان سبھی ناب کی ریڈیو دوست حاضر ہوں اردو شعر و سخن کے پروگرام واگرتھ میں۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم پروگرام واگرتھ میں ہندی ساہتیہ اور اردو ادب کے شعرا کو لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں، اور اسی سلسلے میں آج ہمارے ریڈیو آزاد ہند کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ملک نوید۔ آپ ماشاءاللہ بھوپال ہی کیا ہندوستان کے مشہور شاعر اور ادیب ہیں۔ اتنی کم عمری میں بھوپال کے اس فرزند نے استادانہ ہنر حاصل کیا ہے اور نام اور شہرت حاصل کی ہے، جس کے لیے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں اور اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔
1: شکریہ۔
0: جناب ملک نوید، آپ ہمارے سامعین کو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی شاعری کی شروعات کیسے ہوئی، یا یوں کہیے کہ آپ کا رجحان شاعری کی طرف کس طرح ہوا؟
1: شاعری کی شروعات کا میں صحیح اندازہ تو نہیں ہے مجھے، کیونکہ میرے والد مرحوم قاضی سید اسرار احمد جذبی اور میری والدہ محترمہ نجمہ پروین مرحومہ دونوں شاعر اور شاعرات تھیں، اور اس وجہ سے میں نے بچپن سے شاعری کے ماحول کو دیکھا اور شاعری میں پلا بڑھا ہوں۔ باقاعدہ شاعری میری 1990 کے آس پاس ہے، اور اس کی وجہ یہ رہی، شاعری کی رجحانات میرے یوں رہے کہ میرے گھر میں میرے والد مرحوم طرحی نشستیں منعقد کرتے تھے، جس میں ہر ماہ ایک کسی بڑے شاعر کے مصرعے کو دیا جاتا تھا، اور جس پر بہت سے شعرا اس نشستوں میں شرکت کرتے تھے، مقابلے جیسا ماحول ہو جاتا تھا، بہت ادبی لوگ اس میں، بڑے بڑے بھوپال سے بھی تشریف رکھنے والے لوگ، نامور ہستیاں، اور بھوپال کے اطراف سے میں موجود بہت سے اچھے شاعر اور شاعرات اس میں تشریف لاتے تھے، اور ایک بہت اچھا ماحول بنتا تھا۔ میں بچپنے سے میں نے یہ ماحول دیکھا، وہیں سے مجھے شاعری کا شوق ہوا۔
0: یعنی یوں کہا جائے کہ اتنا بہترین ماحول آپ کو شاعری کی شروعات کے لیے حاصل ہوا، تو ہمارے سامعین کا حق بنتا ہے کہ آپ نے جو پہلا کلام جو کہا ہو، اگر آپ کو یاد ہو تو اس کی چند لائنیں ضرور سنائیں۔
1: پہلا کلام تو میں ایسے چھوٹے وغیرہ جستہ شعر کہتا رہتا تھا، لیکن ایک مرتبہ ایک مصرع طرح دیا گیا تھا کہ ارباب طرب آنکھ اٹھانے نہیں دیتے، تو اس پر میں نے ایک گرہ لگائی۔ سب سے پہلے میں نے، مجھے جو یاد ہے وہ گرہ یاد ہے، میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ جھکتی ہی چلی جاتی ہیں ہر سانس پہ پلکیں، جھکتی ہی چلی جاتی ہیں ہر سانس پہ پلکیں، ارباب طرب آنکھ اٹھانے نہیں دیتے۔
0: کیا بات، بہت عمدہ،
1: شکریہ۔
0: اور شروعاتی دور کی کوئی غزل اگر آپ کو یاد ہو، جو آپ کو بہت پسند ہو، آپ کے دل کے قریب ہو۔
1: جی جی جی، ضرور پیش کرتا ہوں۔ ایک طرح نشست ہوئی تھی جس کا میں مصرع طرح تھا کہ اس کے دشمن بہت آدمی اچھا ہوگا،
0: جی بہت،
1: تو اس پر میں نے کچھ شعر کہے تھے۔ اس میں ایک شعر کہا تھا کہ آدمی کے خیالات ستاروں سے بلند، چاند بھی سوچ کے یہ بات تو لرزہ ہوگا۔
0: کیا بات!
1: پھر جب میں نے یہ شعر کہا تو وہ شعرا جو حضرات تھے، میں مشاعرے میں جب باقاعدہ نہیں جاتا تھا، تو انہوں نے بشیر بدر صاحب کا ایک مصرع دیا، دھوپ کھیتوں میں اتر کر زعفرانی ہو گئی، وہ مجھ سے کہا کہ آپ اس کے اوپر کچھ شعر کہیے، تو میں نے اس پر غزل کہی تھی۔ اس کے دو شعر، ایک مطلب ایک شعر آپ کو نظر کرتا ہوں کہ ہر نئی تصویر دھندلا کر پرانی ہو گئی، ہر نئی تصویر دھندلا کر پرانی ہو گئی، روشنی آنکھوں میں اتری تھی کہ پانی ہو گئی۔ ہر نئی تصویر دھندلا کر پرانی ہو گئی، روشنی آنکھوں میں اتری تھی کہ پانی ہو گئی۔ اور شعر یوں ہے کہ سوچ صدیوں سے کسی کی فرش پر مرکوز تھی، سوچ صدیوں سے کسی کی فرش پر مرکوز تھی، ایک ذرا وسعت ملی تو آسمانی ہو گئی، ایک ذرا وسعت ملی تو آسمانی ہو گئی۔ شکریہ۔
0: بہت بہت عمدہ آپ نے کلام سے نوازا ہمارے سامعین کو۔ جناب ملک نوید، میں آپ سے اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ چونکہ خود ایک استاد شاعر ہیں اور آپ کا رجحان ہر طرح کی شاعری میں ہے، یعنی آپ कई बार कई दफ़ा जब आप गज़ल कहते हैं तो बहुत तखयल और बहुत गहरी बात कह जाते हैं, और कई मरतबा आप बहुत सादगी से अपनी बात को कह जाते हैं। कहीं आपका रंग रूमानी हो जाता है, कहीं कुछ तंज होता है, कहीं कोई सीख होती है। तो ये सारी खूबियाँ और ये सारी बेशुमार अलामतें जो कि आपके कलाम में मौजूद हैं, तो मेरा ख़ास सवाल आपसे ये है कि आप हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि आप किन किन ख़ास शोराओं से मुतासिर हैं, और कहीं कोई किसी का कुछ असर या कोई रंग आपने कहीं से कुछ लिया है, या आप अपने दिल की जो बात है वो आप जाहिर करते हैं।
1: ये दरअसल एक शायरी जो मुझे विरासत में मिली अपनी हाँ, जगह एक हकीकत है, लेकिन इसके संवारने में और इसके निखारने में मेरे उस्ताद मरहूम इशरत कादरी साहब का बहुत ज़्यादा मतलब योगदान या उनका बहुत ताउन रहा। उन्होंने मुझे मेरे ऊपर मेहनत की और मुझे बताया कि शायरी किस नहज पर की जाना चाहिए और किस तरह से की जाना चाहिए। शायरी दरअसल इस्तियारात और इशारे किनायों की ज़बान का इस्तेमाल और मुहावरों का बहुत खूबसूरती से और सलीके से मिस्रों में ढालना, मुहावरों को वहाँ से शायरी की शुरुआत मैंने सबसे पहले अगर मुतासर हुआ तो मैं अल्लामा दाग देहलवी की शायरी से मुतासर हुआ। अल्लामा दाग देहलवी की शायरी में वो सारे खूबियाँ यकजा हैं जो एक शायर के यहाँ होना बहुत ज़रूरी हैं। उनके यहाँ मुहावरों का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल है, ज़बान बहुत सलीस है, बेहद लहजा उनका सलासत और रवानी वाला है। पढ़ते चले जाओ ऐसा महसूस होता है कि जैसे पानी बह रहा है बिल्कुल रफ्तार रफ्तार रवानी के साथ। फिर मैंने वहाँ से दाग को पढ़ा, दाग को पढ़ने के बाद अल्लामा इकबाल जो हैं उनके फ़लसफियाना शायरी से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। इस्लामी रुझानात और देश हुब्बुल वतनी का पैगाम भी उन्हीं की शायरी से मैंने महसूस किया, और उसे महसूस करने के बाद अपने जहन में उसे रखा। धीरे धीरे मैंने फिर गालिब की तरफ आया, और गालिब का बाकायदा मैंने एक डेढ़ साल तक मुस्तकिल तौर पर रोज़ाना उनकी गज़ल याद को पढ़ता रहा, एक रूटीन बनाकर उसको याद कि मैंने मुझे तकरीबन आधे से ज़्यादा एक वक्त ऐसा था कि दीवाने गालिब हिफ्ज हो गया
0: जी। यानी मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि एक उम्दा शायर बनने के लिए या एक मकाम हासिल करने के लिए जितना ज़्यादा पढ़ा जाए वो लिखने वाले के लिए बेहतर होता है।
1: नहीं, इसके अंदर दो बातें हैं
0: जी।
1: एक बात तो ये है कि आपको शायरी करना है तो सबसे पहले तो यह कि आपको असातिज़ा का कलाम पढ़ना पड़ेगा। उससे आपको ये मालूम होगा कि आपको किसी ख्याल को बयान करने के लिए क्या सलीका चाहिए और किस बहर में कौन से अल्फाज आसानी से बयान किए जा सकते हैं। मैं उन अल्फाज को ख्यालात में मतलब उन ख्यालात को अल्फाज में ढाला जाता है। लेकिन जहाँ तक अब आपकी बात है कि आपने असातिज़ा से पढ़ के ये तो मालूम कर लिया कि साहब शायरी इस तरह होती है, लेकिन उसके लिए अब ये है कि शेर जो है वो एक सोचा समझा कलेमा होता है। उस पहले हमारे जहन में एक प्लाट बनता है, उस प्लाट को हम अरूस की मुरव्वजा बहर में अपने ख्यालात को अल्फाज का पेरहन देकर बयान करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए, पहले तो हम असातिज़ा का मुतालिया कलाम का, और दूसरा ये कि हमारा ज़ाती मुतालिया जो हमें अखबारात, रसायल, नावल और जितने भी जहाँ जहाँ ज़खायर हैं इल्म के और हर शोबा हाय ज़िंदगी का इल्म की कमा हक्कहू मालूमात हमारे लिए ज़रूरी है। शायर तो बन ही नहीं सकता असल में, सही शायर तो वही है कि जिसे जिस शोबे के ऊपर या जिस मज़मून के ऊपर वो कलम उठाए तो उस मज़मून का हक अदा कर दे।
0: बेशक आपने ये बहुत उम्दा बात कही है, और हमारे सुनने वालों के लिए तो एक बहुत खूबसूरत पैगाम हो गया और एक बहुत गहरी बात हो गई। आपने इतनी बारीकी से और इतनी सादगी से ये सारी बातें समझाई, और यहाँ पे मैं आपकी गज़ल का एक शेर इजाज़त चाहूँगी आपसे कि ये तो अच्छा हुआ सूरज है खुदा के बस में, ये तो अच्छा हुआ सूरज है खुदा के बस में, वरना कुछ लोग सवेरा नहीं होने देते। तो माशाल्लाह आपके एक से बढ़ के एक उम्दा कलाम और एक से बढ़ के एक उम्दा आपके शेर मौजूद हैं, और हम सब अक्सर और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा होता है कि आपके जो कलाम है वो बहुत पसंद किए जाते हैं, और माशाल्लाह से आपके बहुत से शागिर्द हैं, और आप बखूबी धीरे से आप उनकी इस्लाह करते चलते हैं और आप उन सबको नई राह दिखा रहे हैं। तो ये सब, इन सब खूबियों के साथ मैं आपको फिर मुबारकबाद दूंगी कि इतना बेहतरीन काम आप अंजाम दे रहे हैं। जनाब मलिक नवेद, आप हमें ये बताइए कि जदीदी शायरी या रिवायती शायरी, इसमें से आपको ज़्यादा पसंद क्या है?
1: जदीद शायरी की अपनी अफादियत है
0: जी।
1: लेकिन रिवायती शायरी जो हो चुकी है वो हमारी रूह है।
0: रूह है जी, बेशक।
1: और रूह में दिल कल्बी शायरी अगर हम कहेंगे तो वो रिवायती शायरी है
0: जी।
1: और जदीद शायरी जो है वो हमारे जहन को झंझोड़ सकती है।
0: हाँ, बेशक।
1: हमारे दिल को मुतासर
0: तो
1: नहीं कर सकती।
0: आप ये बताएं कि आपको ज्यादा पसंद क्या है?
1: मैं दोनों के बीच के इम्तिजाज की शायरी करता हूँ
0: जी।
1: यानी मेरी शायरी में जहाँ रिवायती लबो लहजे की झलक आपको नज़र आएगी, वहीं जदीद अंदाज और जदीद उसलूब के जो तकाजे हैं उनकी भी नुमाइंदगी कहीं कहीं आपको खाल खाल भी नज़र आएगी, कहीं बहुत ज़्यादा भी नज़र आएगी।
0: जी हाँ, बिल्कुल, बेशक। वही मैंने अभी जो कहा था कि कहीं सादगी और कहीं तखय्युल, कहीं तंज और कहीं रूमानियत सब नज़र आती है।
1: तो जिस वक्त शायर गज़ल कहता है या कोई शेर कहता है, उस वक्त की उसकी कल्बी कैफियत क्या होती है, उस कैफियत के ज़ेर असर ही शेर होता
0: है, शेर हो जाता है।
1: तो इसलिए कभी सादगी भी होती है शेर में,
0: हाँ।
1: कभी ऐसा होता है कि झुंझलाहट होती है एक समाज के किसी अच्छे वो बुरे काम को देखकर, उसको ये सोचा जाता है कि हम इसको अच्छाई में किस तरीके से तब्दील करें, तो जब वो अच्छाई में तब्दील नहीं होता तो एक झुंझलाहट आ जाती है शायर को, क्योंकि उसकी एक अपनी दुनिया है और उस दुनिया में सब कुछ उसे अच्छा ही अच्छा नज़र आता है। वो ये चाहता है कि बस जो मैं तसव्वुर कर रहा हूँ, जो मैं बयान कर रहा हूँ, वैसी दुनिया चले। तो इसलिए शायरी के अंदर कभी कभी झुंझलाहट भी होती है, कभी तीखापन भी होता है, कभी तंज भी होता है, कभी अब इससे अलग हट के हमारे जो रिश्ते हैं उन रिश्तों से कता ताल्लुक तो कभी कर ही नहीं सकता शायद, तो इसलिए कभी माँ की बात आ जाती है, कभी महबूबा की बात आ जाती है, कभी बीवी की बात होती है, कभी बच्चों की बात होती है। गमे हाय रोजगार भी हमारी शायरी में शामिल है, गमे जिंदगी भी शामिल है। तो आज शायरी तो की वसतें तो लामहदूद हैं, उसकी कोई हद नहीं है।
0: बेशक,
1: कौन कब क्या बयान कर जाए ये तो बस।
0: अच्छा जनाब नवेद मलिक, आप अब अपनी कोई उम्दा गज़ल हमारे सामाईन को सुनाएं या जो आपको पसंद हो।
1: मैं आपको एक गज़ल अभी सुना देता हूँ कि मतलब है कि शाख से टूट कर गिरा हूँ मैं, शाख से टूट कर गिरा हूँ मैं, बेहवा हो के रह गया हूँ मैं, बेहवा हो के रह गया हूँ मैं, तजुर्बे कर रहे हैं सब मुझ पर, तजुर्बे कर रहे हैं सब मुझ पर, एक वस्तु बना हुआ हूँ मैं जिसको उलझा के रख दिया तुमने, जिसको उलझा के रख दिया तुमने, हाँ उसी डोर का सिरा हूँ मैं, हाँ उसी डोर का सिरा हूँ मैं, हर कदम करबला का मंजर है
0: जी।
1: हर कदम करबला का मंजर है, किन यजीदों में आप फंसा हूँ मैं, हर कदम करबला का मंजर है, किन यजीदों में आप फंसा हूँ मैं, देखिए मुझको माँ की नज़रों से, देखिए मुझको माँ की नज़रों से, कितना मासूम व बेखता हूँ मैं, कितना मासूम व बेखता हूँ मैं। और इसका मकता था कि हद में रहने की आरजू में नवेद, हद में रहने की आरजू में नवेद, मकता कि हद में रहने की आरजू में नवेद, हद से बाहर निकल गया हूँ।
0: क्या बात है, बहुत उम्दा,
1: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत उम्दा गज़ल आपने सुनाई। उर्दू अदब के सिन्फ सुखन में कई किस्म की सिन्फें हैं, आपका रुझान किस तरफ ज्यादा है, गजल में या नज्म में या जो भी आप?
1: देखिए आज उर्दू अदब की जो असनाफ सुहन है
0: हाँ।
1: उनमें दरअसल मामला ये था कि पहले बादशाहत थी, तो उस बादशाहत की वजह से जो शुअरा थे उस जमाने के, उनकी रोजी रोटी का जरिया बनी हुई थी शायरी, और वो जो है कसीदे लिखते थे बादशाहों पे, उमरा पे, बड़े बड़े लोगों पे, इसलिए कसीदा गोई का एक रिवाज बहुत ज्यादा था। अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, अब तो बादशाहत ही नहीं है, अब तो उसके बाद मरसियों का एक दौर था, मीर अनीस, मीर दबीर के बड़े मशहूर मरासी लिखे गए हैं, या अल्लामा इकबाल ने दाग दहलवी का मरसिया कहा, तो मरसियों का भी अब रिवाज तकरीबन ख़त्म हो गया है, अब रहा है क़िताअत और गज़ल और नज़्म। तो क़िताअत कहे जा रहे हैं, लेकिन अब क़िताअत में भी एक ये बात पैदा हो गई है कि लोग क़ते में जो मतला या जो चारों मिसरे या छः मिसरे या आठ मिसरे एक दूसरे से मरबूत होते थे, वो ख़त्म हो गया है रिवाज। अब एक मतला और एक शेर, उसको लोग क़िता समझने लगे हैं, ये बड़ी ख़राबी है। जबकि क़िता जो था ऊपर से लेके एक मज़मून के तहत पूरा बयान किया जाता था, चारों मिसरों में आखिर में आके एक बात होती थी जो आखिरी मिसरे में बावज़न तरीक़े से कही जाती थी, यही रुबाई का है। तो रुबाई की भी एक मुरव्वजा फार्मेट है, इसलिए लोग रुबाई से ज़रा दूर रहते हैं, लेकिन रुबाई भी कही जाती है। मुझे जो है असनाफ़ सुखन में गज़ल और नज़्मों ने बहुत मुतासर किया है, ख़ास तौर से गज़ल में ये कैफियत होती है कि उसके एक शेर में जो नज़्मों में पूरी बात 17-18 अशार में या 20 मिसरों में या 40 अशार में कही जाएगी, वो गज़ल के एक शेर में दो मिसरों में बयान कर दी जाती है। तो इसलिए बहुत आसान भी है और ये मकबूल आम सिनफ सुखन है उर्दू शायरी की। जाहिर है कि मकबूल आम सिनफ सुखन है, इसलिए गज़ल की तरफ ही रुझान मेरा ज़्यादा है।
0: लेकिन अभी आपने कहा कि आप नज़्म भी कहते हैं।
1: मैं आपको अपनी एक नज़्म मैंने कही थी तअस्सुब, उसके दो बंद आपको पेश करता हूँ। बंद है कि फ़िक्र है मुझको तअस्सुब को मिटाऊँ कैसे, फ़िक्र है मुझको तअस्सुब को मिटाऊँ कैसे, देश को अमन का गहवारा बनाऊँ कैसे, आग नफ़रत की लगी है वो बुझाऊँ कैसे, आग नफ़रत की लगी है वो बुझाऊँ कैसे, दिल से दिल अहले वतन का मैं मिलाऊँ कैसे, फ़िक्र है मुझको तअस्सुब को मिटाऊँ कैसे। इसका दूसरा बंद है कि हमसे पूछो ज़रा तुम फ़िरका परस्तों का मिजाज, हमसे पूछो ज़रा तुम फ़िरका परस्तों का मिजाज, इनका दावा है वफ़ादार वतन ये हैं आज,
0: क्या बात,
1: इनका दावा है वफ़ादार वतन ये हैं आज, ये तो मज़लूम से सांसों का भी चाहे हैं खराज, ये तो मज़लूम से सांसों का भी चाहे हैं खराज, इनकी कोशिश है कि तकसीम हो फ़िरकों में समाज, फ़िक्र है मुझको तअस्सुब को मिटाऊँ कैसे, देश को अमन का गहवारा बनाऊँ कैसे। शुक्रिया,
0: बहुत बहुत उम्दा नज़्म आपने सुनाई हमारे सामेईन को। जनाब मलिक नवेद, आपने अभी हमारे सामेईन को बताया गज़ल के मुतालिक, नज़्म के मुतालिक, आपने नज़्म भी बहुत उम्दा नज़्म सुनाई आपने, और रुबाई के मुतालिक भी आपने चंद बातें कहीं, तो उसके बारे में और तफसील से आप कोई बात बताना चाहें या कुछ और बताना चाहें तो आप ज़रूर बताएं।
1: रुबाई जो है वो बहरे हज़ज की बहर में कही जाती है, और उसमें दो नक्शे होते हैं
0: जी।
1: एक होता है अखरम और एक होता है अखरब, जिसमें 12 बहरें निकाली गई हैं, 12 वज़न निकाले गए हैं अखरम के और 12 वज़न निकाले गए हैं अखरब के। रुबाई को चार बेती या तिराना भी कहते हैं
0: जी।
1: इसमें चार मिसरे होते हैं और शुरा हजरात जो है जो बहुत ज़्यादा मशक़ सुखन कर चुके होते हैं वही ज़्यादातर रुबाई कहते हैं
0: जी।
1: और रुबाई के लिए ये भी लाजमी नहीं है कि इसके चारों मिसरों में वज़न एक जैसा हो
0: जी।
1: अलग अलग एक ही बहर में अलग अलग वज़न भी हो सकते हैं, आखिरी रुकन अलग अलग हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक जैसा हो। और रुबाई में एक बात का जो ख़ास ख्याल रखा जाता है वो ये है कि इसके तीसरा मिसरा जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा और दमदार और मुअस्सर तरीके से कहा जाता है, और वो एक दावा होता है, और चौथे मिसरे में दलील पेश कर की जाती है। जब दलील सामने आती है तो फिर सामईन या कारी चौंक पड़ता है, क्योंकि रुबाई के लिए बहर और वज़्न मखसूस हैं, इसलिए शुरा हजरात इसमें कोशिश कम करते हैं इस मैदान में। वैसे आम तौर पर जो रुबाई का एक फार्मेट है उसे लाहुल वलाकुफ वता इल्ला बिल्ला से बयान किया जाता है, और भी बहुत से शुरा ने अपने अपने तरीक़े से रुबाई को समझाने की कोशिश की है, लेकिन रुबाई जो है उसका एक अपना मिजाज होता है, और ये सुन ज़्यादा मशक़े सुखन के बाद ही शायर इसकी तरफ मुतवज्जो होता है
0: जी। जैसे अभी आपने रुबाई के मुतालिक बताया, आप ये भी बताएं कि जो एक आजकल एक खास एक ट्रेंड सा चल गया है आज़ाद नज़्म कहने का, कि भाई हम तो आज़ाद ज़मीन पर ही आज़ाद नज़्म कहते हैं, तो उसके मुतालिक आप कुछ बताना चाहें या कोई पैगाम देना चाहें।
1: देखिए, आज़ाद नज़्म जो होती है वो भी दरअसल जो अरूज के रुकन ते हैं उन्हीं पर होती है
0: जी।
1: लेकिन उसमें हर मिसरे में ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे ऊपर के मिसरे में चार बार फाइलुन आया है
0: हाँ।
1: तो नीचे या उसके सारे उस नज़्म के सारे मिसरों में चार चार बार ही फाइलुन आएगा।
0: अच्छा।
1: उसमें ये होता है कि किसी मिसरे में तीन बार भी फाइलुन आ सकता है, किसी मिसरे में एक बार भी फाइलुन आ सकता है। मसलन मखदूम मोहिद्दीन की एक बहुत मशहूर नज़्म है जो फिल्म में आई है, एक चमेली के मंडवे तले दो बदन प्यार की आग में जल गए। अब देखिए, एक चमे फाइलुन ली के मंड फाइलुन वे तले
0: हाँ,
1: फाइलुन, ये तीन मिसरे तीन बार फाइलुन आया, नीचे आ गया दो बदन फाइलुन प्यार की फाइलुन आग में फाइलुन जल गए फाइलुन, चार बार आ गए। तो लेकिन ये जरूर है कि आहंग जो है और रुकनो है वो नहीं बदलेगा, वो वही रहेगा। ये जरूरी है कि आप के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है इसमें कि आप मुरव्वजा तौर पे चार चार बार ही लें या तीन तीन बार ही लें।
0: तो आप यहाँ पे एक सवाल मेरे जहन में ये आया कि एक तरफ तो ये आज़ाद नज़्म कही जा रही है और दूसरी तरफ एक नसरी नज़्म कही जा रही है
1: जी,
0: तो इसमें क्या फ़र्क है, आप हमारे सामने को ये बताइए।
1: नसरी नज़्म जो होती है इसमें ये आहंग जो होता है इसका लिहाज नहीं रखा जाता।
0: अच्छा,
1: मतलब ये कि अब आपने मैंने आपको अभी मखदूम मोहिद्दीन साहब की जो नज़्म मिसाल के तौर पर पेश की ये आज़ाद नज़्म है, इसमें आहंग का पूरा पूरा लिहाज रखा गया। लेकिन नसरी नज़्म के अंदर ये बात ये ख़राबी है कि उसमें आप अपने ख्यालात का इजहार नज़्म के फार्मेट पे तो करते हैं लेकिन उसमें आहंग और उसमें सारे लवाजमात जो होते हैं रुकनों के अरूज के वो नहीं होते,
0: शामिल नहीं होते हैं जी। यानी ये कहा जाए कि उसको आज़ाद नज़्म में जो नसरी नज़्म कही जाती है उनको उनमें कोई बंदिश नहीं होती है,
1: उनमें सिर्फ ये है कि उनमें अगर बंदिश होती है तो ख्याल की बंदिश
0: होती है
1: कि जिस ख्याल को ऊपर से लेकर चला जा रहा है उस ख्याल को कितने सलीके से और कितनी खूबसूरती से बयान किया जा सकता है कम से कम अल्फाज में
0: जी।
1: ज़्यादा अगर तवील नज़्म है वो नसरी नज़्म ज़्यादा तवील है तो फिर वो नसर की नज़्म क्या रही, वो तो सीधा सीधा नसर हो गया
0: जी। आपने रूमानी गज़लें भी खूब कही हैं, माशाल्लाह बहुत उम्दा कही हैं। और इस वक्त मेरे जहन में एक शेर है, मैं आपके ही सामने हाजिर करूँगी और फिर मेरा अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ होगा। हम अपने आप से यूं जामो मीना दूर करते हैं, पिलाकर नरगिसी आँखों से वो मखमूर करते हैं। और आगे आप कहते हैं कि ना जादू है ना टोना है, ना जंतर है ना मंतर है, ना जादू है ना टोना है, ना जंतर है ना मंतर है, तो फिर वो किस तरह लोगों के दिल मशहूर करते हैं। आपकी ये गज़ल के दो शेर मैंने इस वक्त जो सुनाए, इसी मौजू पे बात करते हुए आप कुछ रुमानी अगर हमारे सामने इनको सुनाएं, जो आपको कुछ कलाम आपने रुमानी कहा हो।
1: ये दरअसल ये जो है
0: जी,
1: ये भी एक फिलवदिया मुशायरे
0: जी हाँ
1: गजल है
0: जी।
1: और
0: बहुत खूबसूरत अंदाज में लेकिन आपने कही है, जो ये खास तौर से ना जादू है ना टोना है ना जंतर है ना मंतर है, तो यानी ऐसे उतरता चला जाता है
1: ये लहजा जो है। दरअसल ये हुआ था कि मैं बहरे हजज सालिम के बारे में पढ़ रहा था
0: जी,
1: तो उसमें एक अल्लामा अखलाक देहलवी की एक किताब फने अरूज
0: जी
1: बहुत मशहूर मुस्तनद किताब है जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में के कोर्सों में शामिल रही वर्षों 1959 के करीब। उसमें उन्होंने एक मिसाल दी थी, न प्याला है न साखी
0: है
1: न मीना है, तो वो जहन में था
0: जी हाँ।
1: और उसी बीच में ये फिलवदी गजल का मिसरा मिला, तो मैंने न जादू है न टोना है जंतर है,
0: बहुत उम्दा ख्याल आपने इसमें शामिल करके और पेश किया।
1: तो अब वो आपको एक अपनी गजल जो है रूमानी स्टाइल में जो कही मैंने उसके चंद शेर सुना देता हूँ कि सख्त लहजे को मखमली कर लो, सख्त लहजे को मखमली कर लो, खूबसूरत सुखनवरी कर लो, खूबसूरत सुखनवरी कर लो। और शेर है कि एहतमामे गज़ल ज़रूरी है, एहतमामे गज़ल ज़रूरी है, चांद चेहरों से दोस्ती कर लो, एहतमामे गज़ल ज़रूरी है, चांद चेहरों से दोस्ती कर लो और रूबरू जब गुलाब चेहरे हों, रूबरू जब गुलाब चेहरे हों, अपने लहजे को शबनमी कर लो, अपने लहजे को शबनमी कर लो और बढ़ ना जाए शकर मोहब्बत में
0: जी।
1: बढ़ ना जाए शकर मोहब्बत में, फासलों में जरा कमी कर लो।
0: बहुत
1: फासलों में जरा कमी कर लो और फूल तितली धनक हिना खुशबू, फूल तितली धनक हिना खुशबू, तुम नवे दिन पे शायरी कर लो।
0: क्या बात, बहुत उम्दा गजल सुनाई आपने, बहुत बहुत उम्दा। और कुछ आप गजलिया नज़्म?
1: एक गजल के चंद शेर,
0: क्योंकि एक बार जब मूड बन जाता है, एक तरफ रुझान हो जाता है तो कुछ जहन में वो आता चला जाता है, तो मैं ये मौका हाथ से बिल्कुल जाने नहीं दूंगी, आपसे और गजलें सुनूंगी मैं और हमारे सामने भी सुनेंगे।
1: एक गजल के चंद शेर आपको पेश करता हूँ मैं। मतला यूं कहा है कि कुछ जायका खिजा का भी अहबाब चाहिए, कुछ जायका खिजा का भी अहबाब चाहिए, ये क्या कि सिर्फ मौसम शादाब चाहिए, ये क्या कि सिर्फ मौसम शादाब चाहिए, और लुकनत जबा में और सुखन जानते नहीं, लुकनत जबा में और सुखन जानते नहीं, फिर भी है जिद के मिंबर और मेहराब चाहिए।
0: क्या बात, बहुत
1: लुकनत जबा में और सुखन जानते नहीं, फिर भी है जिद के मिंबर और मेहराब चाहिए, और जी चाहता है आपके माथे को चूम लूं, जी चाहता है आपके माथे को चूम लूं, इस बेलिबास रुत में भी कम ख्वाब चाहिए।
0: क्या बात, बहुत
1: जी चाहता है आपके माथे को चूम लूं, इस बेलिबास रुत में भी कम ख्वाब चाहिए, और कागज की कश्तियों के जरा हौसले तो देख, कागज की कश्तियों के जरा हौसले तो देख, दरिया से कह रही है कि गिरदाब चाहिए।
0: क्या बात, बहुत
1: कागज की कश्तियों के जरा हौसले तो देख, दरिया से कह रही है कि गिरदाब चाहिए, और कम चश्म आईनों पे जमाते हैं रोब अब, कम चश्म आईनों पे जमाते हैं रोब अब, और गूंगे बहरे कहते हैं मिजराब चाहिए।
0: क्या बात, बहुत
1: कम चश्म आईनों पे जमाते हैं रोब अब, और गूंगे बहरे कहते हैं मिजराब चाहिए, हम मानिंदे ख्वाब रहते थे आंखों में जो कभी, मानिंदे ख्वाब रहते थे आंखों में जो कभी, वो लोग कह रहे हैं हमें ख्वाब चाहिए, वो लोग कह रहे हैं हमें ख्वाब चाहिए। और मकता इस गजल का है कि जीने की आरजू व तेरी क्या हुई नवेद, जीने की आरजू वो तेरी क्या हुई नवेद, आबे हयात की जगह जहराब चाहिए, कुछ जायका खिजा का भी अहबाब चाहिए, ये क्या कि सिर्फ मौसम शादाब चाहिए।
0: बहुत बहुत उम्दा आपने गजल सुनाई हमारे सामाईन को। एक रंग से जो हमारे सामाईन वाकिफ नहीं है, एक सादगी, एक उदासी कई बार आपकी गजलों में देखने को मिलती है। जैसे आप कहते हैं कि चुभते हैं कांच के रेजे की तरह आंखों में, चुपते हैं कांच के रेजों की तरह आंखों में, ये मेरे ख्वाब शिकस्ता अजाबे जा निकले। तो कई मरतबा आप जो बहुत सादगी से कुछ उदासी से कुछ कह जाते हैं, तो वक्त ज़रा कम है, तो आप गज़ल ना कह के एक शेर अगर कोई ऐसा उदास सा कुछ अगर सुना दें हमारे सामईन को।
1: ये शेर जो है सही यूं है कि चुभे हैं कांच के रेजों की तरह आंखों में, मेरे ये ख्वाब शिकस्ता अजाब जा निकले, और इसी में एक बड़ा अजीब व गरीब शेर हुआ था, उसमें कुछ हुज्न भी है और कुछ नई बात भी है, वो पेश करता हूँ कि अजीब लोग हैं दुनिया की सैर कराए, अजीब लोग हैं दुनिया की सैर कराए, हिसारे जात से बाहर मगर कहाँ निकले।
0: बहुत उम्दा।
1: और हर एक आरजू, अब गम का शेर देखिए आखिरी ये मकता है कि हर एक आरजू मदफून हो गई इनमें, हर एक आरजू मदफून हो गई इनमें, हमारे दिल किसी तुर्बत से कम कहाँ निकले। दरअसल ये शायरी उस जमाने की है जब मैं बेरोजगार था, तो कुछ गम मेरे ऊपर था।
0: जी तो सामईन, आज हमने गुफ्तगू की भोपाल शहर के एक मायानाज अदीब और शायर मलिक नवीद साहब से, साथ में हमने उनकी शायरी का लुत्फ भी उठाया, उनकी नज़में भी सुनी, और उनसे शायरी के अरूज के मुतालिक हमने मालूमात भी हासिल की। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे रेडियो आज़ाद हिंद में तशरीफ़ लाए और हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सामईन, मुस्तकबिल में फिर किसी बड़ी शख्सियत से मुलाकात के वादे के साथ मैं गौसिया खान सबीन अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ही राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

0: कलाकार हैं जयंत विश्वकर्मा और उनके साथ ही ये प्रस्तुति उन्होंने दी मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आयोजित संभावना श्रृंखला के तहत। इस कार्यक्रम का पहला भाग है।
1: आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत फाग गायन जो हमारे बुंदेलखंड में फाग गायन विभिन्न रूपों से किया जाता है, कुछ छोटे छोटे से अंश सभी विधाओं के देने का प्रयास करूंगा। जितनी विधाएं फाग के अंतर्गत होती हैं, सबसे पहले सुमरनी से हम आज के इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे।

चलिए एक और बुंदेली भाग्य के संबंध में विधा है। जब फागुन लगता है तो कैसा, कैसी प्रकृति का स्वरूप होता है।

और चलिए होली का ऐसा अवसर होता है सारे बैर भाव बुलाकर जब अनरैक जिसे होली कहा जाता है हम बैठने जाते हैं गुलाल लगाते हैं और सारे बैर भाव बुलाकर तो ये अनरैक की एक होली

आज के इस खास कार्यक्रम में आप सुन रहे थे बुंदेली फाग गायन, कलाकार थे जयंत विश्वकर्मा और उनके साथ ही। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं भोपाल के समन्वय भवन में, जहां 1 अक्टूबर की शाम संस्कृति समागम कार्यक्रम के तहत कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुईं।

0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए इस कार्यक्रम में।
1: महाकवि निराला कह गए हैं, मेरे मन में मृदु वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है।

कथक और ठुकरी का संबंध अत्यंत मात्मीय माना जाता है। यदि लय और पद संचालन कथक की आत्मा है तो भाव और नजाकत उसकी धड़कन है। नजरों की भाषा, मुखाभिनय, कोमलता और भावों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति से माध्यम से यह प्रस्तुति प्रेम और अनुराग की मधुर अनुभूति कराती है। पेश है ठुकरी।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक कई राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार ख्वाजा अल्ताफ हुसैन

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्होंने लंदन से कानून की पढ़ाई की थी। ये बात उन दिनों की है जब भारत अंग्रेजों के चंगुल में फंसा हुआ था और देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा था। मोहनदास करमचंद गांधी भी इसमें सम्मिलित हो गए। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष आरम्भ कर दिया। इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता उन्हें महात्मा गांधी कहने लगी। महात्मा गांधी ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी करवाया। उन्होंने विश्वभर में अंग्रेजों के अत्याचारों और दमन नीति के विरुद्ध वातावरण तैयार किया। महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति इस धरती पर युगों के बाद जन्म लेते हैं। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए ही कार्य नहीं किया, बल्कि देश के निर्धनों की स्थिति सुधारने के प्रयास भी किए। छुआछूत की समस्या का हल करने के लिए उन्होंने अछूतों को हरिजन अर्थात भगवान के लोगों की संज्ञा दी। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया और हिंदू मुसलमानों को एक समान समझा। उनके विचारों में सभी धर्म एक ईश्वर को पाने के अलग अलग साधन थे। 30 जनवरी 1948 को सांप्रदायिक सद्भाव के लिए महात्मा गांधी शहीद हो गए। महात्मा गांधी के निधन पर सारा देश रो पड़ा था। आज महात्मा गांधी हमारे बीच नहीं हैं, परंतु सारा विश्व उनकी विचारधारा को आज के युग के लिए सबसे उपयुक्त मान रहा है।
2: अरे गजबीय काका, जल्दी से 2 थाली खाना लगा दो। अरे बहुत तेज भूख लगी है।
3: हाँ बेटा, हाँ बस अभी लो। क्या बात है, आजकल बहुत घुमाई फिराई चल रही है।
4: अरे हाँ काका, कॉलेज की छुट्टियां लगी तो सुबह से ही घूमने निकल पड़े। ए रोहित, तेरा पिछला हिसाब बाकी था ना, इस बार बिल तू देगा भैया।
2: अरे दे दूंगा ना यार, क्यों टेंशन लेता है। अरे काका, ये रेडियो पर कौन सा गाना आ रहा है।
3: अरे बेटा, ये गांधी जी का सबसे प्रिय भजन है। इस भजन का उन पर गहरा प्रभाव रहा। पता है, हमारे पिताजी ने भी महात्मा गांधी के सत्याग्रह में भाग लिया था।
2: सत्याग्रह? काका ये सत्याग्रह क्या होता है।
4: काका आज तो आप सत्याग्रह के बारे में बता ही दो और इसको गांधी जी के बारे में बता दो।
2: हाँ बताओ ना काका।

0: 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की विफलता ने देश को तोड़ दिया था। विषमताओं ने भारत में पनपना आरंभ कर दिया। वो युग भारत में अराजकता का युग था। 2 अक्टूबर 1869 का वो दिन कोई आम दिन न था। इस दिन एक नई क्रांति का सूत्रपात होना था। इसी दिन गुजरात के छोटे से शहर पोरबंदर के एक धार्मिक परिवार में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ।
1: माखादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊं, छोटी सी धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा, मुझे रुई की पोनी दे दे, तकली खूब चलाऊंगा। माखादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊं, रघुपति राघव गाऊं, रघुपति राघव गाऊं।
0: यही मोहनदास समूचे विश्व में महात्मा गांधी के नाम से जाने गए। एक धार्मिक परिवार में जन्म लेने के कारण मोहनदास में नैतिक मूल्यों और संस्कारों का स्वतः विकास होने लगा।

0: मनु, ओ बेटा मनु, अरे कहाँ चला गया मनु?
1: हाँ आया बा।
0: भाभी बता रही थी कि बच्चों के साथ खेल रहा था।
1: हाँ बा, हम आँख में चाली खेल रहे थे।
0: ओहो, अरे बेटा तू क्यों नहीं समझता, उसके साथ खेलने से, उसको छूने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है।
1: धर्म भ्रष्ट? पर बात तूने ही तो बताया था कि राम भगवान ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। अपने धर्म में अछूतों को ना छूने की बात कहाँ लिखी है बा?

0: पाठशाला नहीं चलना क्या?
1: अभी आया। अच्छा बा, मैं चलता हूँ।
2: ठीक है बेटा, पर अपना ध्यान रखना।
3: पाठशाला में उस दिन शिक्षा विभाग के अंग्रेजी निरीक्षक जाइल्स विद्यालय का निरीक्षण करने आने वाले थे।
4: बच्चों, आज हमारी पाठशाला में शिक्षा विभाग के अंग्रेजी अफसर आने वाले हैं। वो जो पूछे उसका सही सही जवाब देना, कोई शरारत नहीं होना चाहिए।
5: जी माता।
6: जी गुड मॉर्निंग।
7: हम इन लोगों का डिक्टेशन टेस्ट लेना मांगता है, कोई प्रॉब्लम?
6: जी नहीं सर।
7: गुड क्लास, लेट्स सी आप लोगों ने क्या क्या सीखा है। हम जो भी बोलेगा आप लोग अपना अपना पाटी में लिखना मांगता है।
5: जी मैडम।
7: गुड, देन राइट इन इंग्लिश। डॉग, टेबल, कैट, आउल एंड कैटल।

0: इट्स टाइम ओवर नाउ, ऑल ऑफ यू अपना अपना पार्टी दिखाओ. करेक्ट, गुड गुड गुड गुड गुड गुड गुड. ओह वेरी गुड वेरी गुड. ओह नाइस वेरी नाइस. हे यू, नाम क्या है तुम्हारा?
1: जी मोहनदास.
0: पूरा क्लास में सिर्फ तुम्हारा स्पेलिंग्स गलत है. तुमको केटल लिखना भी नहीं बनता. बैठ जाओ अपनी जगह.
2: सर सर ये पढ़ाई में जरा कमजोर है.
0: ओह आई सी. ओके टीचर, अब हम जाना मांगता है. हम दोबारा आएगा.
2: जी सर.
0: गुड डे
2: सर.
3: मोहन, मैं तुम्हें बार बार बाजू वाले छात्र की पट्टी में झांककर शब्द के हिज्जे सुधारने का इशारा करता रहा, पर तुम तो टस से मस न हुए.
1: लेकिन माँ साहब, नकल करना तो चोरी है और चोरी करना तो पाप है ना?
4: मोहनदास ने अपने सिद्धांत बचपन में ही बना लिए थे. उनकी बातों से सभी चकित रह जाते. जब गांधी जी केवल 13 वर्ष के थे, उनका विवाह कस्तूरबा से हो गया. एक ही उम्र के होने के कारण दोनों साथ खेला करते. मैट्रिक पास करने के बाद मोहनदास का नाम भावनगर के सामलदास कॉलेज में लिखाया गया.
5: मां, मैं पास हो गया. काका, मैं पास हो गया.
6: शाबाश मोहन बेटा, जीते रहो, भाभी बधाई हो. तो मोहन बेटा, बता आगे क्या पढ़ने का विचार है?
5: काका, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ.
6: डॉक्टर?
7: छी, ये काम तुझसे ना होगा.
6: अरे तू मुर्दे कैसे चीरेगा?
5: फिर
6: देख बेटा, हम चाहते हैं तू अपने बापू की तरह पोरबंदर का दीवान बने, और इसके लिए कानून का ज्ञान बहुत जरूरी है.
5: कानून का?
6: हाँ. अच्छा बता, कानून पढ़ने विलायत जाएगा?
5: विलायत? हाँ, मैं कानून पढ़ूंगा, विलायत जाऊंगा.
7: मेरा मनु इतने सालों तक मेरे आंखों से दूर रहेगा, ये मैं कैसे सहन कर पाऊंगी? विलायत जाकर लोग बिगड़ जाते हैं, कहीं ये मांस मदिरा का सेवन करने लग गया तो.
6: भाभी मोहन पर विश्वास रखो, उसे हमारी मर्यादाओं का भान है. मोहन, तू तो विलायत जाने की तैयारी कर.
5: बा, केवल 3 वर्षों की तो बात है, और रही बात मेरे बिगड़ने की, तो मैं भगवान का नाम लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ, जिन बातों से तुम डरती हो ना, उन्हें मैं कभी नहीं करूंगा, और अपने कुल की मर्यादा का मैं सदैव ध्यान रखूंगा.
4: इस तरह मोहनदास चल पड़े लंदन की ओर. लंदन में उन्होंने एक एंग्लो इंडियन परिवार के साथ रहना शुरू किया. लंदन की कपकपाती सर्दी भी उन्हें अपनी प्रतिज्ञा से डिगा न सकी. उन्होंने मांस मदिरा का सेवन जीवन पर्यंत नहीं किया. लंदन में मिलने वाली नित नई चुनौतियों ने उनके व्यक्तित्व को नया रुख दिया. मोहनदास अब धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने लगे थे. विलायत में उन्हें स्वदेश की रह रहकर याद सताती, और वो दिन आ ही गया जब मोहनदास करमचंद गांधी की भारत वापसी हुई. गांधी जी ने बंबई आकर वकालत शुरू कर दी. एक बार किसी ने उन्हें गरीब स्त्री मणिबाई का मुकदमा दे दिया.
6: मणिबाई वल्द केशु भाई, हाजिर हो.
8: मुकदमे का प्रोसीजर शुरू किया जाए. मणिबाई के मुकदमे की पैरवी करेंगे बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी.
5: थैंक यू मिलॉर्ड. मैं कहना चाहूंगा कि मेरी मोकिल मिलॉर्ड, मेरी मोकिल मणिबाई, मोकिल मणि, मोकिल मणि, आई एम सॉरी मिलॉर्ड, मैं कुछ देर का ब्रेक चाहूंगा.
8: इट्स ओके मिस्टर गांधी, अदालत 10 मिनट के बाद कंटिन्यू किया जाएगा.
5: मणि भाई, मुझे क्षमा करना, मुझ में ये केस लड़ने की हिम्मत नहीं है. ये रही तुम्हारी फीस, तुम कोई दूसरा वकील कर लो.
4: गांधी जी के लिए उनका यह पहला केस किसी बड़े झटके से कम न था। उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक स्वयं पर भरोसा न हो जाए वे कोई केस नहीं लड़ेंगे। बंबई में गांधी जी की वकालत चलने वाली न थी, इसलिए उन्होंने राजकोट जाना तय किया। राजकोट में वो सिर्फ अर्जी दावा लिखने का काम किया करते। यहां उनकी वकालत ठीक ठाक चलने लगी। इसी बीच गांधी जी को दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का एक पत्र मिला, जिसके अनुसार उन्हें दक्षिण अफ्रीका एक दीवानी मुकदमे की पैरवी करने जाना था। दक्षिण अफ्रीका में उस समय भारतीयों को तुच्छ समझा जाता। उन्हें वहां तिरस्कार पूर्वक काला कुली कहकर बुलाया जाता। जब गांधी जी अफ्रीका पहुंचे

0: Excuse me, could you tell me which station is this?
1: Yeah, it's Masburg.
0: Oh, thank you.
2: Are you Anandya?
0: Yes.
2: How you came here? Get lost. Immediately move to third class. That is the only place you coolies deserve.
0: But I have ticket of first class.
2: First class? Leave or you will be thrown out of here.
0: I won't.
2: You bloody?
0: What are you doing?
2: I won't leave you.
1: You all Indian coolies, you will have to submit your fingerprints in police station.
3: But what is our fault?
2: Your fault is that you are an Indian.
4: गांधी जी ने अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ सत्याग्रह का बिगुल फूंक दिया। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका आना जाना लगा रहा। वहां गांधी जी के आह्वान पर भारतीयों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष आरंभ कर दिया था।
5: अब अफ्रीका में रंगभेद और नहीं चलेगा। भारतीयों, अब जागने का समय हो गया है। रंगभेद के खिलाफ हमें सत्याग्रह छेड़ना होगा। बुरे कानून के सामने ना झुकना ही सत्याग्रह है। अब अंग्रेजी अत्याचार और ना चलेंगे। क्या आप लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं?

0: 1915 में गांधी जी इंग्लैंड होते हुए भारत आ गए। इधर गांधी देश के कोने कोने में घूमकर भारतीय जनता से जागृति का आह्वान कर रहे थे और उधर अंग्रेजी राज अपने रंग दिखा रहा था।
1: आज की ताजा खबर जलियांवाला बाग में डायन ने निर्दोषों को भूना। आज की ताजा खबर हजारों लोग मारे गए हत्यारा डायन निर्दोष साबित। रॉलेट एक्ट पारित हुआ। आज की ताजा खबर अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार। आज की ताजा खबर जलियांवाला बाग में डायन।
0: इसी समय गांधी जी ने गुजरात के एक गाँव में हाथ से चलने वाला चरखा खोज निकाला। बाद में यही चरखा असहयोग आंदोलन का प्रमुख हथियार बना।
2: महात्मा गांधी अमर रहे।
3: बिना संघर्ष किए स्वराज की मंजिल तय नहीं हो सकेगी। हमें असहयोग आंदोलन छेड़ना होगा। मैं भारतीय जनता से आह्वान करता हूँ, वे सरकारी पदों, सरकारी शिक्षण संस्थानों, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करें, खादी अपनाएं और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दें। वंदे मातरम।

0: महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की।
1: असहयोग आंदोलन जोर शोर से शुरू हुआ। भारतीयों के मन में बसे आक्रोश को अब स्वर मिल चुका था। आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार की नाक में दम कर दिया।
0: महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की।
2: सर सर, जगह जगह सभाएं हो रही हैं, नारे लगाए जा रहे हैं और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही है।
3: ठूस दो सबको जेल में।
2: सर, जेलों में और जगह नहीं है। जेलें आंदोलनकारियों से भरी जा चुकी हैं और विद्रोह थमने का नाम नहीं ले रहा है। गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है।
3: Who is this?
1: असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। शहर शहर, गांव गांव सभाएं होती, जोशीले भाषण दिए जाते। सभी कुछ भारतीयों के अनुकूल चल रहा था कि चौरी चौरा की घटना ने समूचे आंदोलन को झंझोर दिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। सारे देश में निराशा की लहर दौड़ गई। गांधी जी को यंग इंडिया में छपे एक लेख के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, पर अंग्रेजी सरकार उन्हें अधिक दिनों तक कैद न रख सकी। गांधी जी के जेल से छूटते ही प्रदर्शनों, विरोध सभाओं में सक्रियता आ गई। 26 जनवरी 1930 को देश भर में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। गांधी जी ने भारत से सत्याग्रह आंदोलन का आह्वान किया। नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा आरंभ हुई।
0: महात्मा गांधी की
4: जय,
0: महात्मा गांधी की
4: जय,
0: महात्मा गांधी की
4: जय।
5: अंग्रेजी कानून का सभी जगह विरोध किया जाए, इसकी शुरुआत हम नमक कानून तोड़कर करेंगे।
0: महात्मा गांधी की
4: जय,
0: महात्मा गांधी की
4: जय,
0: महात्मा गांधी की
4: जय।

0: अब अंग्रेजों का भारत में टिकना मुश्किल हो गया था। गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। गांधी जी और अन्य नेताओं को जेल भेज दिया गया। गांधी जी शीघ्र ही आजाद हो गए। जेल से छूटने के बाद गांधी जी ने बंगाल की यात्रा की। अंग्रेजों पर अब दबाव बढ़ता जा रहा था और 15 अगस्त 1947 को भारत में आजादी के सूरज का उदय हुआ। अंग्रेज जाते जाते देश को दो धड़ों में बांट गए। इस घटना ने गांधी जी को गहरा आघात दिया। 1948 जनवरी की 30 तारीख थी। रोज की तरह लोग बिरला हाउस की प्रार्थना सभा में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इन लोगों में नाथुराम गोडसे भी शामिल था।
1: अरे आज गांधी जी अभी तक नहीं आए।
2: गांधी जी तो कभी देर नहीं करते। जरा गौर से देखो, ये तुम्हारी घड़ी तो खराब नहीं है।
1: अरे लो, गांधी जी आ गए।

उस दिन भारत को रोशन करने वाली रोशनी सदा के लिए बुझ गई। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे महात्मा जी का पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: और अब समय है हमारे कार्यक्रम कला कलोलिनी का। नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा,
2: और संदीप के साथ मैं हूं मनीषा।
1: और आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे नृत्य सम्राट उदय शंकर की। श्रोताओं, भारतीय इतिहास में ऐसे कुछ विरले व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में देश का नाम विश्व में रोशन किया है, और अपने असाधारण योगदान से अपना और राष्ट्र का नाम अग्रिम पंक्ति में पहुंचाया और दूसरों को अपनी अद्वितीय प्रतिभा से प्रेरणा दी। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम ऐसे एक महान कलाकार की चर्चा करेंगे जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किसी भी स्वरूप में कोई औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया, परंतु उनकी प्रस्तुतियां रचनात्मक होती थी। हालांकि ये बात अलग है कि बचपन से ही वे भारतीय शास्त्रीय और लोक नृत्य शैलियों के संपर्क में रहे।
2: हाँ श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में आधुनिक नृत्य के निर्माता, सुप्रसिद्ध नर्तक, नृत्य निर्देशक और बैले निर्माता नृत्य सम्राट उदय शंकर जी की। उन्होंने यूरोप और अमेरिका को भारतीय नृत्य की संस्कृति से दुनिया के मानचित्र पर प्रभावशाली ढंग से स्थापित किया। हाँ, उन्होंने तांडव नृत्य, शिव पार्वती, लंका दहन, रिदम ऑफ लाइन, श्रम और यंत्र, रामलीला और भगवान बुद्ध के नाम से नवीन नृत्यों की रचना की। इसमें वेशभूषा, यंत्र संगीत, ताल और लय आदि का आविष्कार भी किया। कला की दुनिया में कई ऐसे नाम हैं जो तमाम बंधनों और समय की सीमाओं को लांघकर अमर हो गए हैं। उदय शंकर उन्हीं महान हस्तियों में से एक थे जिन्होंने नृत्य कला को केवल एक प्रदर्शन कला नहीं बल्कि संस्कृति सेतु बना दिया।
1: इसलिए तो उन्हें भारत के आधुनिक नृत्य का जन्मदाता भी कहा जाता है। हम इस बात को यहाँ बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि जिस समय भारतीय शास्त्रीय नृत्य केवल परंपराओं तक सीमित था, उस दौर में उदय शंकर ने उसे विश्व पटल पर समकालीन रूप देकर नई पहचान दिलाई। जब भारतीय नृत्य विश्व पटल पर अपने लिए एक बड़ा सम्मान अर्जित कर रहे थे, उसी 1930 के दशक में भारत में भी शास्त्रीय नृत्यों के रूपों का पुनरुत्थान हो रहा था। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ राष्ट्रवाद की भावना भी जागृत हो रही थी, और उस समय विदेशी शासन के बावजूद भारतीय अपनी स्वदेशी कलाओं पर गर्व कर रहे थे। उस समय उदय शंकर जो की प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, पर जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि शास्त्रीय नृत्य की किसी भी शैली में उनका कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था।
2: ये तो सही है कि वे प्रशिक्षित नर्तक नहीं थे, परंतु उनके नृत्य बहुत रचनात्मक होते थे। अनेक नृत्य परंपराओं को और साथ ही उनकी तकनीकी कुछ चुनी हुई चीजों को लेकर अपने नृत्य नाटकों की रचना करने में उन्हें कमाल की महारत हासिल थी। वे अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। इस विषय में उनका योगदान अपने मन में आई भावनाओं और विषय को विस्तार पूर्वक लोगों तक पहुंचाने के लिए उपयुक्त शैली और रूप के साथ रचनात्मक तरीके से दर्शकों तक पहुंचा देने का हुनर रखते थे। नृत्य के पारंपरिक तरीके से परिचित होने के बाद भी उन्होंने उन सभी को अलग रखा, एक और अलग एकीकृत रचना को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उनके इसी तरह के प्रयोग देखकर लोगों के सामने उनकी बहुमुखी प्रतिभा निखर कर सामने आई। उस्ताद अलाउद्दीन खां और विष्णुदास शिराली, जो कि सुविख्यात पंडित विष्णु दिगंबर के शिष्य थे, उनके साथ उदय शंकर ने पेरिस में अपने एकल और युगल बैले नृत्य के लिए रचनात्मक संगीत के साथ प्रयोग किए।
1: जी हाँ, उदय शंकर ने केवल भारतीय वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जिसने उनकी रचनाओं और नृत्यों के संगीत को एक अनोखा रंग प्रदान किया, और हम ये भी कह सकते हैं कि उनके कई नवाचारों ने हमारे संगीत के रुझान को और समृद्ध किया है। और इस बात का एक ठोस आधार ये भी है कि उनकी प्रशिक्षण पद्धति में स्पष्ट दिखाई देता है, जिसमें नर्तकों को उनके द्वारा प्रस्तुत बैले नृत्यों के लिए तैयार किया गया जो संभागीय रहता था, और इसमें उनकी नृत्य तकनीक, लोक नृत्य, तात्कालिक नृत्य मंच और वेशभूषा डिजाइन, श्रृंगार, प्रारंभिक शारीरिक आयाम, भावपूर्ण गतिविधियां, शरीर की संवेदनशीलता का विकास, एकाग्रता, कल्पनाशीलता, सामूहिक भावना और उसका अवलोकन, चरणों का ज्ञान, गति का मनोविज्ञान, रंग और रेखा की समझ, नृत्य और नाटक का संबंध, ये सब शामिल रहा।
2: श्रोताओं, यहाँ इस बात को भी बताना हम जरूरी समझते हैं कि इनके छोटे भाई रविशंकर वही हैं जिन्हें हम सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के नाम से जानते हैं। उदय शंकर के पिता संस्कृत के माने हुए विद्वान थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और बाद में वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने गए और वहां से वो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी बने। पिता को अपने काम के सिलसिले में बहुत अधिक घूमना पड़ता था, इसलिए उदय शंकर के परिवार ने अपना ज्यादातर समय अपने मामा के परिवार में अपनी माँ और छोटे भाइयों के साथ नसरतपुर में बिताया।
1: उदय शंकर की शिक्षा भी इसी कारण अलग अलग जगह पर हुई, जिसमें नसरतपुर, गाजीपुर, वाराणसी और झालावाड़ शामिल हैं। नृत्य के अलावा उदय शंकर चित्रकला, संगीत, शिल्पकला और फोटोग्राफी में भी महारत रखते थे। शिक्षा उन्होंने अपने गाजीपुर के स्कूल में अपने शिक्षक अंबिका चरण मुखोपाध्याय से हासिल की थी। नृत्य कला का सारा श्रेय उन्होंने अपनी माँ को दिया। एक साक्षात्कार में अपने बचपन की यादों को ताजा करते हुए उन्होंने कहा था कि मेरी ये कला माँ की बदौलत है। बचपन में उनकी माँ उन्हें लड़कियों की तरह कपड़े पहनाती थी क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं थी। वो उन्हें साड़ी और गहने पहनाती थी और संगीत की धुनों पर थिरकना सिखाती और फिर नाचने के लिए भी कहती थी। तब उन्हें जो भी नृत्य करने का मन करता वो कर लेते, पर उन्हें नृत्य करना नहीं आता था, लेकिन वो कर लेते और उन्होंने किया और इसके लिए वो सदा अपनी माँ को आभारी मानते रहे। इसकी शुरुआत उनकी माँ ने ही कराई।
2: बचपन में त्योहारों के दौरान होने वाले नृत्यों के अलावा लोक नृत्यों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। हालांकि बचपन में उनकी दिलचस्पी मुख्यतः चित्रकला में थी, ये प्रतिभा उनमें इतनी प्रबल थी कि झालावाड़ के महाराजा ने उनके पिता को उदय को सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला दिलाने को मना लिया और यहाँ से डिप्लोमा कोर्स पूरा करने के बाद 1920 में वे रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में दाखिला लेने के लिए लंदन चले गए।
1: हाँ, और इसके अलावा उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन और हर नजरिए से पूर्णता मिले बस इसी पर जोर रहता था। वे जानते थे कि वे अपने दर्शकों में और उत्सुकता कैसे जगा सकते हैं। बहुत कम समय में बेहतरीन नृत्य प्रस्तुत कराने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। विभिन्न भारतीय देवी देवताओं के बारे में उन्होंने ऐसा दृष्टिकोण रखा जिसने एक अमिट छाप छोड़ दी।
2: जिन दर्शकों ने उनके इंद्र, कार्तिकेय और शिव के एकल नृत्य देखे हैं, वे उनके द्वारा रचित कलात्मक और मनमोहक छवियों को लंबे समय तक ज्यों की त्यों अपने मन मस्तिष्क में सजाए रहते थे। मंच पर नृत्य प्रस्तुति के समय उनका शारीरिक सौंदर्य अद्भुत नजर आता था जो दर्शकों के मन में समा जाता था। वे अपने इस विशिष्ट गुण से दर्शकों पर सदा जादू कर देते थे।
1: जी हाँ, बात आपने बिल्कुल ठीक ही की है। उनमें जो ये दुर्लभ गुण था उसे दोहराया नहीं जा सकता है। बस जिन्होंने उन्हें मंच पर प्रस्तुति देते हुए देखा है उनके मन में उनकी स्मृति बसी हुई है। सुप्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर की प्रतिभा की और विस्तार से चर्चा करने से पहले हम आपको अब उनके जन्म के बारे में जानकारी दे दें। उदय शंकर का जन्म 8 दिसंबर 1920 राजस्थान के उदयपुर शहर में हुआ था। वैसे तो वे मूलतः नरेल, जो बांग्लादेश में आता है, वहां के एक बंगाली परिवार से ताल्लुक रखते थे।
2: उनके पिता का नाम श्याम शंकर चौधरी था, अपने समय के सुप्रसिद्ध वकील थे और राजस्थान में ही झालावाड़ के महाराज के यहाँ काम करते थे। उनके पिता को नवाबों द्वारा हर चौधरी की उपाधि दी गई थी, किंतु उन्होंने हर चौधरी में से हर को हटा दिया। अपने नाम के साथ सिर्फ चौधरी का प्रयोग करना ही पसंद करते थे। उदय शंकर की माँ हेमांगिनी देवी भी एक बंगाली जमींदार परिवार से ताल्लुक रखती थी। इनके अन्य बच्चों के नाम राजेंद्र शंकर, देवेंद्र शंकर, भूपेंद्र शंकर और रविशंकर थे।
1: श्रोताओं, चित्रकला की प्रतिभा उनमें इतनी प्रबल और विलक्षण थी कि उन्होंने 5 साल का कोर्स 3 साल में ही पूरा कर लिया। उनके कॉलेज के प्रिंसिपल ने ही तब उदय को पूरी तरह से भारतीय संस्कृति में रमने के लिए प्रेरित किया। ब्रिटिश संग्रहालय में भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला के बारे में पढ़ते हुए बिताए गए वो असंख्य घंटे ही थे जो उदय शंकर को नृत्य की ओर वापस ले आए।
2: फिर क्या था, उदय शंकर के मन में भारतीय मूर्तियों की विभिन्न नृत्य मुद्राओं में देवी देवताओं के चित्रों के प्रति विशेष रूप से आकर्षण पैदा हो गया और उन्होंने तब उन मुद्राओं का अनुसरण करना आरंभ किया। हालांकि वे प्रशिक्षित नर्तक नहीं थे, फिर भी वे अपने आप को रोक नहीं पाए। बस फिर तो वो चित्र ही उनके लिए प्रेरणा बन गए और फिर उदय शंकर ने उन चित्रों को नृत्य की गति में ढाल दिया।
1: कॉलेज में पढ़ते हुए 1922 में उन्होंने अपना पहला नृत्य प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन लीग ऑफ मर्सी द्वारा आयोजित किया गया, जो महारानी विक्टोरिया के शाही चार्टर द्वारा स्थापित एक ब्रिटिश संस्था थी, और इस नृत्य प्रस्तुति की किंग जॉर्ज पंचम ने भी सराहना की थी। एक और महत्वपूर्ण बात इस कार्यक्रम की ये रही कि इसमें दर्शकों में प्रसिद्ध रूसी बैले नृत्यांगना अन्ना पावलोवा भी मौजूद थी, और उन्होंने उदय शंकर को नृत्य करते देखा तो उन्हें उदय शंकर की नृत्य शैली बहुत पसंद आई। और बाद में अन्ना पावलोवा ने उदय शंकर को कुछ भारतीय नृत्य बनाने की जिम्मेदारी दी। तब उदय शंकर ने अन्ना पावलोवा को राधा कृष्ण और हिंदू विवाह के नृत्य तैयार कर दिए, जो उन्हें बहुत पसंद भी आए।
2: ये दोनों बैले नृत्य जो उदय शंकर ने तैयार किए थे, पश्चिम में बहुत पसंद किए गए, क्योंकि तब तक वहां के लोगों ने ऐसा पहले कुछ कभी नहीं देखा था। अन्ना पावलोवा के साथ कई नृत्यों की कोरियोग्राफी करने में उदय की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये अन्ना पावलोवा ही थी जिन्होंने उदय शंकर को अपनी भारतीय तकनीक और शैली में सुधार के लिए प्रेरित किया। उदय शंकर ने स्वयं एक साक्षात्कार में कहा कि अन्ना ने मेरी आंखें खोल दी, ऐसा जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पश्चिमी शैली का अनुकरण ना करूं, क्योंकि पश्चिम के लोग नृत्य में वो सब कुछ देखना पसंद करेंगे जो कि भारतीय कला से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है।
1: इस तरह अन्ना पावलोवा के साथ एक साल बिताने के बाद उदय शंकर ने 1924 में पेरिस में अपनी नृत्य मंडली को शुरू तो किया, लेकिन पावलोवा की कंपनी से दूर जाने से उनकी मुश्किलें बढ़ने लगी, क्योंकि अन्ना पावलोवा के साथ उनकी कंपनी से जुड़ने के लिए मिली सफलता और सार्वजनिक प्रशंसा के साथ पेशेवर और आर्थिक स्थिरता मिली थी, और कंपनी छोड़ने के बाद उदय शंकर बेरोजगार हो गए थे। और जब जीवन में पहली बार बिना किसी संरक्षण के परिस्थितियां बेहद मुश्किल हो गई थी, और उन परिस्थितियों से निपटने के लिए वो बहुत छोटे छोटे आयोजनों में भी नृत्य के कार्यक्रम देने लगे। एक दो साल इसी तरह जीवन संघर्ष चलता रहा, और यही वो कार्यक्रम और आयोजन थे जहां उदय शंकर ने दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाकर उनसे एक अटूट रिश्ता बनाया।
2: समय निकला और बदला भी, और इसके साथ ही 1926 के आसपास उदय शंकर के लिए और भी चीजें बदलने लगी। उस समय उनके ट्रिप में उनके भाई रविशंकर, देवेंद्र शंकर और उनकी माँ के साथ उनके कुछ दोस्त भी शामिल थे। तब दुनिया भर के तमाम देशों में इस ट्रुप ने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए, और उदय शंकर ने अपनी अलहदा नृत्य शैली के साथ नए नए प्रयोग किए और अपने नृत्य में पश्चिमी रंगमंचीय तकनीक को अपनाने के लिए मशहूर हो गए।
1: अब देखा जाए तो उदय शंकर के संघर्ष और उपलब्धियों की लंबी दास्तान है। उनके इस काम में कई उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन खास बात यह रही कि उन्होंने लगातार 13-14 घंटे अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और हालात को सहते हुए मजबूती के साथ उनका मुकाबला किया, पर स्वयं को टूटने नहीं दिया।
2: और फिर अन्ना पावलोवा के ही ट्रुप के दो पूर्व सदस्यों एडिलेड और सोकी नाम की दो बहनों के साथ काम किया, और कुछ समय बाद उन्होंने पेरिस की पियानो वादिका सिमोनो वाडियर के साथ मिलकर काम किया और सिमकी नाम के साथ नृत्य की दुनिया में अपना धमाल मचाया। कहा जाता है कि सिमकी के साथ तो एक नए युग की ही शुरुआत हुई। तब उदय शंकर ने नए नृत्यों की कोरियोग्राफी शुरू की, जिसमें एकल और युगल दोनों ही तरह के नृत्य शामिल थे।
1: और फिर तो उदय शंकर और सिमकी नृत्य में साझेदारी जल्दी बेहतर लोकप्रिय हो गई, और उन्हें बहुत सारे शोज करने के लिए जल्दी जल्दी आमंत्रित भी किया जाने लगा। काम, शोहरत, इज्जत, सब कुछ सामने आ गया। उन्हीं दिनों यूरोप के दौरे के दौरान उदय शंकर की मुलाकात स्विस चित्रकार और मूर्तिकार एलिस बोनर से हुई। वे उदय शंकर के नृत्य पर मोहित और प्रभावित हो गईं, और उन्होंने उदय शंकर की नृत्य मुद्राओं की मिट्टी से मॉडल और चित्रों के द्वारा एक श्रृंखला तैयार की।
2: तब तक उदय शंकर सुप्रसिद्ध नृत्य निर्देशक और बैले निर्माता के रूप में जाने जाते थे। तब उन्हें भारत में आधुनिक नृत्य के जन्मदाता के रूप में जाना जाने लगा था। उदय शंकर के भाव और भंगिमाओं को देखकर वो चकित हो गए। उदय शंकर के नृत्य के पीछे उन्होंने भारत के प्राचीन स्वरूप, संस्कृति और मूर्तिकला के भाव को समझा। तब उन्हें लगा कि भारतीय मंदिरों पर बनी मूर्तियां उदय शंकर के इस नृत्य के माध्यम से प्रतिबिंबित हो रही हैं। उनकी उत्सुकता इतनी बड़ी थी कि वे इसे जानने के लिए भारत आईं और उदय शंकर के नृत्य को उन्होंने अजंता एलोरा की गुफाओं, काशी के घाटों और सांस्कृतिक चित्रों में देखा।
1: उन पर आधारित एलिस की कलाकृतियां BHU के भारत कला भवन म्यूजियम की दर्शक दीर्घा में प्रदर्शित हैं, जहां उदय शंकर के नृत्य को और दूसरी भारतीय कलाओं के तालमेल को बताया गया है। उदय शंकर ने एलिस बोनर के साथ 1930 में भारत भ्रमण कर नृत्यों की भाव भंगिमाओं का चित्रांकन किया। एलिस 1931 में ही उदय शंकर के साथ काशी भी आई और तब यहाँ केसी घाट ने उन्हें फिर वापस कहीं और जाने नहीं दिया।
2: उस समय भारत या बनारस में नृत्य को अच्छे नजरिए से नहीं देखा जाता था। इस कारण उदय शंकर को कहीं से भी कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली। तब एलिस बोनर ने बनारस से यूरोप, अमेरिका आदि देशों में उनके कार्यक्रम तथा वेशभूषाओं की व्यवस्था देखने का जिम्मा उठाया और इस तरह एलिस बोनर और उदय शंकर ने लगभग 30 साल तक एक साथ काम किया। एलिस बोनर भारतीय कला और संस्कृति से प्रभावित होकर भारत तो आई उन्हें देखने ही थी, लेकिन 80 घाट पर जहां वो रहने लगी उस जगह आज एलिस बोनर इंस्टीट्यूट है।
1: और इधर उदय शंकर के संगीत और नृत्य प्रेम से गाजीपुर स्थित बिरनो ब्लॉक नसरतपुर के लोग आज भी शिद्दत से उन्हें याद करते हैं। उनकी यादें आज भी गाँव के लोगों के मन में बसी हैं, जो उन्हें याद रखे हैं। नसरतपुर के पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि गांव में उदय शंकर का परिवार बंगाली बाबू के नाम से मशहूर था और पूरा परिवार शुरू से ही व्यवहार कुशल और व्यक्तित्व का धनी था। उनके परिवार के सदस्य सदा गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के लिए सदैव तैयार रहते थे। गांव वासियों के प्रति उनका उदार रवैया ग्रामवासी कभी भुला नहीं पाएंगे।
2: उदय शंकर को आधुनिक भारतीय नृत्य का प्रणेता माना गया है, क्योंकि उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के सभी आयामों में पश्चिमी रंगमंचीय तकनीक के साथ अपने नए रंग भरकर 1920 से 1930 तक के दशक में उसे यूरोप, अमेरिका सहित दुनिया भर के अनेक देशों में प्रतिष्ठित किया। अपने कुछ मित्रों की सलाह पर वर्ष 1938 में उदय शंकर ने भारत लौटकर हिमालय पर्वत की गोद में बसे प्रकृति की खूबसूरत नेमत से भरपूर अल्मोड़ा शहर को अपनी भावी योजनाओं को अंजाम देने के लिए चुना।
1: ऐसा भी कहा जाता है कि गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर की प्रेरणा से उन्होंने अपना स्कूल भारत में संचालित करने का मन बनाया था और इसके लिए वर्ष 1939 में अल्मोड़ा शहर में उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर की स्थापना की गई। इस काम में उनके साथ कथकली के प्रख्यात गुरु शंकरन नंबूदरी, भरतनाट्यम के कंडप्पा पिल्लई, मणिपुरी के अम्बी सिंह और संगीत के मैहर घराने के उस्ताद अलाउद्दीन खान शामिल थे।
2: और इसमें उनके इस समूह में गुरुदत्त, मैडम सिमकी, अमला, नरेंद्र शर्मा, जोहरा सैगल, लक्ष्मी शंकर, विष्णु रास, मंगेश राव, प्रभात गांगुली, शिशिन भट्टाचार्य, माधवन नायर, कनकलता तथा उनके अपने भाई रविशंकर भी छात्र रूप में शामिल हो गए। लेकिन इतने गुणी व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने के बावजूद ये केंद्र मात्र 4 वर्ष ही अस्तित्व में रहा। उनके अभिनव प्रयोगों के बावजूद उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर धन की कमी के कारण 1942 में बंद हो गया। बड़े भारी मन से उदय शंकर ने अल्मोड़ा छोड़कर वापस जाने का फैसला कर लिया। तब उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर का सारा सामान लंबे समय तक अल्मोड़ा में ही पड़ा रहा।
1: हम यहाँ सामान का जिक्र श्रोताओं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें उदय शंकर के माने गए कथकली नृत्य गुरु पंडित शंकरन नंबूदरी का दिया हुआ उपहार भी शामिल है, जिसके बारे में उदय शंकर का कहना था कि इससे उनका अंतरंग जुड़ाव है। तो हुआ यूं कि अल्मोड़ा में बाकी पड़े सारे सामान के साथ उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर में होने वाले कार्यक्रम से पहले एक विशाल और भव्य धातु निर्मित पानस यानी कि ऊंचा दीपक, जिसे हमारे यहाँ समय कहा जाता है और केरला में इसे पानस कहा जाता है, उसे प्रज्वलित किया जाता है। तो वो पानस अर्थात समय भी था और इस पानस अर्थात समय को भी उसी सामान के साथ रखा गया था जिसकी नीलामी होनी थी। पीतल धातु से बने एक क्विंटल वजन से भी ज्यादा वजनी इस पानस को उदय शंकर को उनके गुरु पंडित नंबूदरी ने उपहार में दिया था।
2: उदय शंकर ने अपने इन गुरु से केरल जाकर उनके गांव में ही रह रहकर नृत्य की भंगिमाओं एवं बारीकियों को सीखा था। ये पानस यानी समय 1 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचा है और इसमें दीपक जलाने के लिए लगभग 2 लीटर तेल की आवश्यकता होती है और एक साथ 100 बत्तियां जलती हैं और बत्तियां जलाने वाले हिस्से की परिधि भी लगभग 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। इस पानस को 2 भागों में खोला जा सकता है और इस प्रयोग से पहले जोड़कर इसे पूरा किया जाता है, तब इसका उपयोग हो पाता है।
1: श्रोताओं, किसी विशेष अवसर पर इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से पहले इसके सभी हिस्सों को खोलकर अलग कर लिया जा सकता है और दीप प्रज्वलन के लिए उसे पुनः जोड़ा जाता है। ये इतना भारी है कि इसकी ऊपरी चक्कर को खोलने के लिए 3-4 व्यक्ति पकड़कर घुमाते हैं, तब कहीं ये खुल पाता है। इस पानस की नीलामी के समय उदय शंकर मन से बहुत द्रवित थे। वे दुखी मन से बोले थे कि चाहे इस पानस का मूल्य कम भी मिले, लेकिन ये पानस केवल उस व्यक्ति को ही मिले जो कला का पारखी हो और इस अमूल्य धरोहर को संजो कर रख सके, क्योंकि इससे मेरा अंतरंग जुड़ाव है।
2: उदय शंकर की इच्छा के अनुसार ये पानस हरिकिशन लाल शाह गंगोला और उनके पुत्र जगदीश लाल शाह गंगोला ने खरीदा, जो गंगोला परिवार की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। यहाँ श्रोताओं, हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि इस पानस को 1943-44 में नीलामी के बाद पहली बार 1954 में अल्मोड़ा में आयोजित शरद उत्सव में प्रज्वलित किया गया था।
1: जी, और तब से अल्मोड़ा नगर में आयोजित विभिन्न समारोहों में इस पानस अर्थात समय के दीप प्रज्वलित कर अनेक शख्सियतों ने यहाँ आयोजित कार्यक्रमों का शुभारंभ किया है, जिनमें प्रमुख है मैहर घराने के उस्ताद अलाउद्दीन खां, प्रख्यात सितार वादक और उदय शंकर के छोटे भाई भारत रत्न पंडित रविशंकर, उनकी पत्नी अन्नपूर्णा देवी, जोरा सेगल, नृत्यांगना सोनल मानसिंह और उदय शंकर के पुत्र आनंद शंकर। गंगोला परिवार के सदस्यों का कहना है कि उदय शंकर जैसे कलाकार का ये पानस समय वर्तमान में भी अल्मोड़ा में उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर की सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए उदय शंकर के योगदान का गवाह है और आज भी ये रंगकर्मी और संस्कृति प्रेमियों के लिए नृत्य सम्राट उदय शंकर के महान योगदान का एक प्रेरक स्तंभ बना हुआ है।
2: अब बात करें उदय शंकर के निजी जीवन की, तो उन्होंने अपने मित्र अक्षय नंदी की छोटी बहन और उनके ट्रुप में काम करने वाली 11 वर्ष छोटी खूबसूरत नृत्यांगना अमला नंदी से 1939 8 मार्च को विवाह कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। अमला ने 1942 में उनके पुत्र आनंद शंकर को जन्म दिया, जो आगे चलकर एक गायक और संगीतकार बने। जीवन में चले उतार चढ़ाव, ऊंच नीच को सुलझाते हुए जीवन की डगर पर चलते हुए अमला ने उदय शंकर की दूसरी संतान खूबसूरत पुत्री ममता शंकर को जन्म दिया, जो एक बेहतरीन अभिनेत्री, नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं और कोलकाता में उदयन डांस कंपनी भी चलाती हैं।
1: और चलिए अब बात करते हैं भारतीय आधुनिक नृत्य कला के जन्मदाता उदय शंकर के ड्रीम प्रोजेक्ट की। जी हाँ, उनका ये प्रोजेक्ट था नृत्य पर एक फिल्म निर्माण करने का। वो चाहते थे कि उनकी कला का प्रचार प्रसार हो, इसलिए एक संस्थान की स्थापना भी वो करना चाहते थे। इधर उनकी आयु भी बढ़ती जा रही थी, वो सोचते थे कि उनका नृत्य बना रहे, बचा रहे, बसा रहे। और सन 1965 में एक ऐसा संस्थान बनाया गया बंगाल के कोलकाता शहर में। इस संस्थान में अमला शंकर को निर्देशक बनाया गया।
2: अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं और बात करते हैं उदय शंकर के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी उनकी बनाई नृत्य विधा को संजोए रखने के लिए बनाई गई फिल्म कल्पना की। ये काम जोर शोर से चलने लगा। फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट तैयार की गई। इस फिल्म का लेखन, निर्देशन, नृत्य निर्देशन स्वयं उदय शंकर ने किया और फिल्म में हीरो की भूमिका उदय शंकर और हीरोइन की भूमिका अमला शंकर ने निभाई। फिल्म की पटकथा अमृतलाल नागर ने लिखी और गीत सुमित्रा नंदन पंत और भील लोकगीत देवीलाल समर के थे और संगीत विष्णुदास शिराली ने रचा था।
1: श्रोता, 1948 में बनी फिल्म कल्पना एक नृत्य प्रधान फिल्म थी, जो एक युवा नर्तक के नृत्य अकादमी स्थापित करने के सपने के इर्द गिर्द घूमती है। ये पहली फिल्म थी जिसमें एक भारतीय शास्त्रीय नर्तकी को प्रमुख भूमिका में प्रस्तुत किया गया था और इस फिल्म को पूरी तरह से एक नृत्य बैले और एक फैंटेसी के रूप में फिल्माया गया था। ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप रही थी, लेकिन 2008 में गोवा शहर में इसे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के खजाने के अनुभाग के एक भाग के रूप में अभिलेखागार में अन्य दुर्लभ रत्नों के साथ दिखाया गया था।
2: उदय शंकर को अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी थी। हुआ ये कि फिल्म बनना शुरू हुई तो पैसों की कमी के कारण उदय शंकर को अपना अल्मोड़ा वाला उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर बंद कर देना पड़ा, जिसका उदय शंकर को बहुत गहरा धक्का लगा। और तब उनकी पत्नी अमला शंकर ने ही बड़े धैर्य और साहस का परिचय देते हुए अपने पति उदय शंकर को संभाला और किसी तरह इस फिल्म को पूरा करने में सहयोग दिया।
1: लेकिन अमला शंकर और उदय शंकर की सारी मेहनत, हिम्मत और धैर्य सब जवाब दे गए जब रिलीज के बाद फिल्म कल्पना पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि अब इस फिल्म की हिफाजत किसी बेशकीमती नगीने की तरह की जाती है और संघ 2010 में मार्टिन स्कॉर्सेसे, जो कि एक प्रसिद्ध अमेरिकी फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक हैं, उनकी कंपनी वर्ल्ड सिनेमा फाउंडेशन ने इस फिल्म के डिजिटल संरक्षण का बीड़ा उठाया है। वैसे ये बात बिल्कुल सही है, उदय शंकर द्वारा बनाई गई कल्पना नामक फिल्म भारतीय सिनेमा की अनोखी, अनूठी प्रयोगात्मक कृति मानी जाती है। इस फिल्म में नृत्य कला, दृश्य कला और फिल्मांकन को एक साथ पिरोकर उदय शंकर ने दर्शकों को एक नई राह दिखाई है।
2: बिल्कुल, इसके साथ ही रचनात्मकता और भारतीय नृत्य कला में अमूल योगदान के लिए उदय शंकर को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 1960 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया और उसके बाद सन 1962 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से भी नवाजा गया। और पुरस्कारों का सिलसिला यही नहीं थमा, सन 1971 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण यानी देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया और सन 1975 में उन्हें देशी कोतम नामक विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन का सर्वोच्च सम्मान दिया गया।
1: हिंदी भाषा के प्रमुख साहित्यकार, आलोचक, संपादक, संस्कृति कर्मी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अशोक वाजपेयी का कहना है कि उदय शंकर का नृत्य कम से कम तीन विश्वासों से प्रेरित नृत्य था। एक, शास्त्रीयता में विश्वास, दो, आधुनिकता में विश्वास और तीसरा, आत्मविश्वास। जिन कलाकारों ने भारतीय नृत्य में पश्चिमी रुचि जगाई उनमें उदय शंकर का नाम पहली पंक्ति में आता है। हम में से वे सभी जो भारतीय नृत्य के इतिहास और उसके आधुनिक काल से परिचित हैं, वो ये भी जानते हैं कि उदय शंकर ने एक तरह की शास्त्रीय आधुनिकता विकसित करने का प्रयास किया था।
2: एक नर्तक और नृत्य चिंतक के रूप में वे एक ओर तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का वैभव, सुषमा, ऊर्जा, लालित्य पश्चिम के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे जो तब तक हमारी नृत्य परंपरा से अनभिज्ञ था। दूसरी ओर वे इस परंपरा में प्रयोग की संभावना और उसमें आधुनिक नवाचार की तलाश करना चाह रहे थे। पश्चिम में उस समय आधुनिकता के अंतर्गत उनकी अपनी परंपरा लगातार प्रश्नांकित की जा रही थी। कई बार उसे हाशिए पर डालकर कई कल्पनाशील और दुस्साहसी सृजनात्मकता का बोलबाला था। कलाओं में आख्यान को अपदस्थ कर अमूर्तन पर आग्रह बढ़ रहा था। उदय शंकर इन वृत्तियों को भी किसी हद तक अपने नृत्य में समाहित और संबोधित करना चाह रहे थे। वे भारतीय नृत्य के पारंपरिक रूपकारों को पुनः संयोजित कर एक नए किस्म के समावेशी और साहसिक शास्त्रीयता विकसित करना चाहते थे।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक नर्तक और नृत्य चिंतक के रूप में वे एक ओर तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का वैभव सबके सामने रखना चाहते थे जो अब तक हमारी नृत्य परंपरा से अनभिज्ञ था, तो दूसरी ओर वे इस परंपरा में प्रयोग की संभावना और उसमें आधुनिक नवाचार की तलाश करना चाह रहे थे। श्रोताओं, उस समय जिन कलाकारों ने भारतीय नृत्य में पश्चिमी रुचि जगाई उनमें उदय शंकर का नाम पहली पंक्ति में आता है। उन्हें किसी भी तरह का शासकीय या सार्वजनिक समर्थन भी प्राप्त नहीं था। उस समय उनके वित्तीय साधन अल्प और सीमित थे। ये बात तो है, क्योंकि वो नृत्य के किसी पारंपरिक परिवार से नहीं आते थे, इसलिए उन्हें किसी भी तरह का सामूहिक समर्थन भी नहीं मिला था। उनका प्रयत्न सदा एकांतिक रहा।
2: उनका दुस्साहस, उनकी नृत्य परिकल्पना और नृत्य के प्रति उनकी जिजीविषा का ही ये फल था कि इसी काम से उनकी सार्थकता प्रकट होती है। उस समय उनके अपने व्यक्तित्व का बड़ा मोहक आकर्षण था और उनके इसी व्यक्तित्व की सफलता और सार्थकता में बड़ी भूमिका रही। उदय शंकर ने विभिन्न शैलियों के नृत्य से उनके कई तत्वों को जोड़कर अपनी एक विशिष्ट और लगभग अद्वितीय शैली बनाई थी। यदि इन शैलियों की परंपराओं में हमेशा व्यक्तित्व का भी महत्व होता, उसका केंद्र बिंदु भी परंपरा के अंदर ही लेता है, बाहर नहीं।
1: पर उदय शंकर किसी पारंपरिक शैली के नृत्यकार नहीं बने। हालांकि नृत्य की प्रत्येक पारंपरिक शैली से उन्होंने कुछ न कुछ जरूर लिया, फिर चाहे वो कथक हो, ओडिसी, भरतनाट्यम या कथकली, कोई भी नृत्य विधा क्यों ना हो, नृत्य की हर शैली का प्रभाव उनके नृत्य में स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन फिर भी किसी एक शैली में समाहित होता नजर नहीं आता। पर यह बात कहना गलत नहीं होगा कि उनकी थोड़ी बहुत परंपरा भी बनी, जिसमें नरेंद्र शर्मा और अमला शंकर, जो उनकी पत्नी भी थी, उन जैसे महत्वपूर्ण नर्तक भी हुए, पर कुल मिलाकर ये शैली बहुत आगे नहीं चल पाई। इसमें वे नृत्य में नवाचार के प्रतीक बने, मान्य और लोकप्रिय भी हुए, और इन्हीं नवाचारों के क्षेत्र में शास्त्रीयता में उदय शंकर से सभी ने प्रेरणा ली है।
2: नवाचार में दुस्साहस क्या और कैसे होता है, ये सब उदय शंकर के नृत्य को देखकर ही हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, क्योंकि उदय शंकर ने अपने नृत्य में जो आत्मविश्वास दिया, अपनी नृत्य बैले शैली में आधुनिक शैली में जो प्रयोग किए, उन्हें भी उदय शंकर के पथ प्रदर्शक अपने नृत्य प्रयोग के विस्तार के रूप में जानते हैं। क्योंकि उदय शंकर ने विभिन्न शैलियों के बीच लगातार संवाद का जो सिलसिला शुरू किया था, वो भी किसी न किसी रूप में चलता रहा। उदय शंकर को मंच पर नृत्य करते हुए देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। सुप्रसिद्ध रूसी बैले नर्तकी अन्ना पावलोवा ने जब उदय शंकर को पहली बार मंच पर नृत्य करते हुए देखा था, तो बोली थी कि लगा जैसे अजंता में चिन्हित किसी देवता ने मानव शरीर धारण कर लिया है।
1: इसी तरह इटली की मूर्तिकार एलिस बोनर ने ज्यूरिख में उनका नृत्य देखकर कहा कि उदय शंकर के शरीर में चित्र और पत्थर की प्रतिमाओं की थिरकन है। इसी तरह उदय शंकर की उंगलियां, हथेलियां, आंखें और देह की भंगिमाओं का अनूठा मेल देखकर ही उनकी पत्नी अमला ने उदय शंकर पर मोहित होकर उनसे विवाह किया था। वे लिखती हैं, शिव तांडव तथा अग्नि पूजा देखकर मैं पागल हो गई कि कोई इतना सुंदर नृत्य कैसे कर सकता है, ये बात मैंने पहली बार समझी। उदय शंकर के द्वारा बनाई गई फिल्म कल्पना, जो 154 मिनट की थी, दृश्यों की गतिशीलता में इस फिल्म में दृश्य और ध्वनि का अद्भुत मेल दिखाई और सुनाई देता है। इस फिल्म में लगभग 200 वाद्यों का प्रयोग किया गया है। लोगों ने इस फिल्म में प्रयुक्त तबला सुना तो दंग रह गए कि एक ही वाद्य यंत्र से कोई इतनी आवाजें कैसे निकाल सकता है भला।
2: इसी तरह एक बार पेरिस से जब उदय शंकर भारत आए, तो मंदिरों में घूमते हुए वो केरल में कथकली नृत्य को देख के भौचक्के रह गए। उन्होंने लिखा कि बिना जाने बिना देखे मैं अपने नृत्य में ये लाता रहा हूँ। उदय शंकर का नृत्य ऐसा ही था। नृत्य पर प्रयोग की गई भारतीय संस्कृति को समेटे उनकी ये दृष्टि सदा जीवंत रहेगी। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को आधुनिक जामा पहनाकर भारतीय संस्कृति को विश्व के हर कोने तक पहचान दिलाने में अहम योगदान दिया है।
1: जी हाँ, और इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश संग्रहालय में राजपूत चित्रकला और मुगल चित्रकला की शैलियों का भी गंभीर अध्ययन किया और भारतीय नृत्य को एक समकालीन रूप देकर विचार न केवल मजबूत हुआ, बल्कि उन्होंने ये कर दिखाया। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वे भारतीय आधुनिक नृत्य के शिल्पी थे। यहाँ ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि कला की दुनिया में ऐसे कई नाम हैं जो समय की सीमाओं को पार कर अमरत्व पा गए हैं। उदय शंकर भी उन्हीं महान हस्तियों में से एक नाम है, जिन्होंने नृत्य को केवल एक प्रदर्शन की कला नहीं बल्कि सांस्कृतिक सेतु का रूप दिया। जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य केवल परंपराओं तक सीमित था, उस दौर में उदय शंकर ने उसे विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाई। 26 सितंबर 1977 को कोलकाता में वे हमारे बीच से सदा सदा के लिए विदा हो गए। कोलकाता में उदय शंकर सेंटर ऑफ डांस आज भी उनकी समूह नृत्य परंपरा को संरक्षित और जीवित रखे हुए है, जिन्होंने कला को सीमाओं से मुक्त कर दिया।
2: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम कला कल्लोलिनी में अभी आपने सुना प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर जी के बारे में। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इजाजत दीजिए मनीषा
1: और संदीप शर्मा। लेकिन जाने से पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का और लेखन प्रमिला मुंशी दिवाकर का। तो फिर मिलेंगे कला कल्लोलिनी में एक और कला मनीषी के साथ, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: पूर्वी बंगाल और आसाम की यात्रा कर स्वामी जी बेलूड़ मठ लौट आए, पर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा था। शिष्यों ने उन्हें परिश्रम न करने की सलाह दी, पर वे कहां मानने वाले थे। पठन पाठन, शिष्यों और दर्शनार्थियों से शास्त्रों की आलोचना पूर्ववत चल रही थी, साथ ही साथ चल रहा था वैद्य जी का इलाज। इलाज के दौरान कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। स्वामी जी को नींद नहीं आती थी।
1: उन्हीं दिनों मठ में एक नया एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका खरीदा गया। नई चमकदार पुस्तकों को देखकर एक शिष्य ने कहा,
2: इतनी सारी मोटी मोटी पुस्तकें, एक जीवन में इन्हें पढ़ लेना संभव ही नहीं।
1: शिष्य नहीं जानते थे कि स्वामी जी ने इन पुस्तकों में से 10 खंडों का अध्ययन समाप्त कर 11वें खंड को पढ़ना शुरू किया है। उन्होंने कहा,
3: मैंने 10 खंड पढ़ लिए हैं, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लो, बता दूंगा।
2: क्या आपने इन्हें पढ़ लिया है?
3: और क्या, बिना पढ़े ही कह रहा हूँ।
0: इसके बाद स्वामी जी का आदेश पाकर शिष्य उन पुस्तकों में से चुन चुन कर कठिन विषयों में प्रश्न करने लगा। स्वामी जी ने उन प्रश्नों के जवाब तो दिए ही, कहीं कहीं उस पुस्तक की भाषा तक ज्यों के त्यों बोलने लगे। शिष्य स्वामी जी की असाधारण याददाश्त देख विस्मित होकर पुस्तकों को यथास्थान रखते हुए कहने लगा,
2: आश्चर्य! नहीं नहीं नहीं, ये मानवीय शक्ति नहीं हो सकती, असंभव।
3: देखा, एकमात्र ब्रह्मचर्य का पालन ठीक ठीक कर सकने पर सभी विद्याएं एक पल में सीख ली जा सकती हैं। मनुष्य का श्रुति घर स्मृति घर बन जाता है। इस ब्रह्मचर्य के अभाव से ही हमारा देश विनष्ट हो गया।

0: इसी वर्ष स्वामी जी की इच्छा हुई मठ में दुर्गा पूजा करने की। स्वामी जी के संकल्प की बात जानकर स्वामी ब्रह्मानंद आदि उनके गुरु भाई तथा अन्य शिष्यगण बड़े उत्साह पूर्वक पूजा का सामान जुटाने लगे। किसी प्रकार की पूजा अथवा धार्मिक कृत्य को संकल्प पूर्वक करने का अधिकार सन्यासी का नहीं होता, इसलिए स्वामी जी ने शारदा माता जी की अनुमति मांगी। माता जी ने अनुमति दी कि उन्हीं के नाम पर संकल्प होगा। इससे स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए। यथा समय कुमार टुली से प्रतिमा मठ में लाई गई। पूजा के पहले दिन शारदा माता जी ने अपने बाग बाजार वाले निवास स्थान से मठ में आगमन किया। उनकी अनुमति लेकर ब्रह्मचारी कृष्णलाल महाराज सप्तमी के दिन पुजारी के आसन पर बैठे।
1: पंडित ईश्वरचंद भट्टाचार्य महाराज ने भी श्री माताजी के निर्देश पर देवगुरु बृहस्पति की तरह तंत्र धारक का आसन ग्रहण किया। यथाशास्त्र श्री दुर्गा माता की पूजा समाप्त हुई। श्री माताजी की इच्छा के अनुसार मठ में पशु का बलिदान नहीं हुआ। बलि के अनुकल्प के रूप में चीनी का नैवेद्य और मिठाई के ढेर प्रतिमा की दोनों ओर शोभायमान थे।
0: गरीब दुखी तथा असहायों को देहधारी ईश्वर मानकर संतोष पूर्वक भोजन कराना इस पूजा का विशेष अंग माना गया। इसके अतिरिक्त वेलूड़ बाली तथा उत्तरपाड़ा के परिचित तथा अपरिचित अनेक ब्राह्मण पंडितों को भी निमंत्रित किया गया और वे सभी आनंद पूर्वक सम्मिलित हुए थे। उस समय से मठ के प्रति उनका पूर्व विद्वेष दूर होकर ये विश्वास हो गया था कि मठ के सन्यासी गण यथार्थ में हिंदू सन्यासी हैं। श्री दुर्गा पूजा के बाद स्वामी जी की इच्छा के अनुसार मठ में प्रतिमा के सहयोग से श्री लक्ष्मी पूजा तथा श्री काली पूजा भी शास्त्र विधि के अनुसार अनुष्ठित हुई।
1: काली पूजा के बाद स्वामी जी अपनी माँ के साथ कालीघाट गए। बाल्यकाल में एक बार स्वामी जी को कोई कठिन रोग हुआ था। उस समय उनकी माँ ने मनोती मांगी थी कि पुत्र के रोग मुक्त होने पर काली देवी की विशेष पूजा देंगी और काली मंदिर में उनको लोटपोट करा लाएंगी। बाद में वे ये बात भूल गई थी। इस समय स्वामी जी की अस्वस्थता की बात सुनकर उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त करके पुत्र के पास समाचार भेजा। जननी के आदेश के अनुसार कालीघाट की आदि गंगा में स्नान करके भीगे वस्त्र सहित स्वामी जी श्री काली माता के पद कमलों में 3 बार लोटपोट हुए।
0: इसके बाद 7 बार मंदिर की प्रदक्षिणा समाप्त कर उन्होंने सभा मंडप के पश्चिम भाग में खुले आंगन में बैठकर होम करना प्रारंभ किया। यज्ञ की पवित्र अग्नि प्रज्वलित हुई। होम कुंड में घृत की आहुति देते हुए कामदेव सदृश कांति वाले सन्यासी मानो ब्रह्मा के सदृश लग रहे थे। अनेक लोग स्वामी जी को घेर कर उनके यज्ञ संपादन का दर्शन करने लगे। स्वामी जी ने मठ में लौटकर आनंद से कहा,
2: काली घाट में अभी भी कैसा उदार भाव देखा। मुझे विलायत से लौटा हुआ जानकर भी मंदिर के अध्यक्षों ने मंदिर में प्रवेश करने में किसी प्रकार बाधा न दी, बल्कि बड़े आदर के साथ मंदिर में ले जाकर इच्छा के अनुसार पूजा करने में मेरी सहायता की।

0: बेलूर मठ और उसके आसपास के स्थान स्वामी जी को अत्यंत प्रिय थे। मठ में गंगा के किनारे अथवा बेलूर ग्राम में वे प्राय ही टहलते। मठ के प्रांगण में स्थित आम के पेड़ के नीचे उनके बैठने का प्रमुख स्थान था। वहां खाट पर बैठ वे वार्तालाप करते, पुस्तकें पढ़ते अथवा पत्र, निबंध आदि लिखते। उनके वर्तमान समाधि मंदिर के कोने में स्थित बेल के पेड़ के नीचे उनका एक अन्य प्रिय स्थान था। उनका शयन कक्ष पुराने मठ भवन के दुमंजिले पर गंगा की ओर दक्षिण पूर्वी कोने पर स्थित था। उनके दिन का काफी समय इसी कमरे में बीतता। यही कमरा उनके भोजनालय और कार्यालय के रूप में भी काम आता। इसी कमरे में उनके वस्त्र, बिस्तर, आसन, चायदानी, मेज, कुर्सी, आलमारी, खड़ाऊ, लिखने के उपकरण, वाद्य यंत्र तथा अन्य उपयोग की चीजें जैसे पहले थीं, अब भी ठीक उसी प्रकार रखी हुई हैं। वो कमरा और कोई उपयोग में नहीं लाता, केवल कोई कोई वहां जाकर ध्यान आदि करता है। अपने कमरे की साज सज्जा को किस तरह से देखते थे ये एक बार उन्होंने ही कहा था। एक दिन उनके कुछ दोस्तों ने कहा,
1: स्वामी जी, बचपन में विवाह करने के लिए कहने पर तुम कहते थे विवाह नहीं करूंगा, मैं क्या बनूंगा देखना, तो तुमने जो कहा था वही किया स्वामी जी।
2: हाँ भाई, किया तो है, तुम लोग देख तो रहे हो, कुछ खा नहीं पाता और उस पर इतना परिश्रम, बाप रे कितनी मेहनत की है। आज अमेरिकी लोगों ने देखो कैसी प्यार से खाट, बिछावन तथा गद्दी दी है, थोड़ा खा भी पा रहा हूं, परंतु भाई भोग मेरे भाग में नहीं है। गद्दी पर सोते ही रोग बढ़ जाता है, दमे से प्राण निकलने लगते हैं, पुनः फर्श पर लेटता हूं तभी चैन मिलता है।
3: अपने सदा के अभ्यास के अनुसार वे बड़े तड़के में ही शैया त्याग देते और बाकी मठवासियों को भी जगाकर ध्यान, जप आदि में लग जाने को कहते। स्वास्थ्य ठीक रहा तो स्वयं भी सबके साथ मंदिर में ध्यान करने बैठते। इसके बाद उनका सुबह का कार्य था गौ सेवा तथा उद्यान की देखभाल। स्वामी ब्रह्मानंद के ऊपर सब्जी तथा फूल के बगीचे की जिम्मेदारी थी। उसके बगल में ही गायों के चरने का मैदान था। इन दोनों भूखंडों के सीमा विभाग को लेकर वे स्वामी ब्रह्मानंद के साथ कितनी ही बार बालकोचित प्रेम कलह में लग जाते ताकि गायें बगीचा चर न जाएं, और मठ के सन्यासीगण बड़े आनंद का उपभोग करते।
0: मठ के छोटे बड़े सारे कर्मों में स्वामी जी की तीक्ष्ण दृष्टि रहती थी और मठवासियों में से भी प्रत्येक उनकी सेवा करने की अवसर पाने को तत्पर रहता। नाव में होकर मठ से कलकत्ता जाते समय मल्लाह लोग उन्हें अपनी अपनी नाव में ले जाने के लिए झगड़ते। कभी कभी वे केवल कौपीन पहने मठ में चारों ओर घूमते अथवा एक बड़े लबादे से शरीर को ढककर गांव के निर्जन पथों पर अकेले ही घूमते। कई बार वे गंगा के तट पर अथवा मठ के भीतर किसी वृक्ष की घनी छाया में बैठे रहते। फिर अन्य किसी किसी समय वे अपने कमरे में बैठकर पुस्तकों के पन्ने पलटते या चित्र देखते। कभी कभी वे रसोई घर में जाकर रंधन कार्य का निरीक्षण करते और स्वयं अपनी इच्छा से दो एक अच्छी पकवान भी तैयार करते।
3: पशु पक्षियों के प्रति शैशव काल से ही स्वामी जी के मन में एक स्वाभाविक आकर्षण था।

0: मटरू दिन रात उनके पीछे पीछे घूमता रहता और वो भी उसके साथ छोटे बच्चों के समान दौड़ दौड़ कर खेला करते।
1: वे तत्कालीन समाज में प्रचलित अदब कायदों की विशेष परवाह नहीं किया करते थे। कभी पाँव में खड़ाऊ पहने, कभी नंगे बदन, कभी गेरुआ पहने तो कभी केवल कौपीन पहने, वे जैसी खुशी घूमते रहते। कभी कभी उनके हाथ में हुक्का या लाठी होती। कोट, शर्ट, कॉलर, जूता इत्यादि का कोई झंझट ही नहीं था। उन दिनों वे पूर्णतया स्वच्छंद अपने निर्जन मानस भूमि पर निवास कर रहे थे। नए लोग श्रद्धापूर्वक उनका दर्शन करने को आ पहुंचते। वे स्वामी जी की अवस्था देखकर कहते, अच्छा तो ये ही विश्व विजयी स्वामी जी विवेकानंद हैं।
0: अपने पशु पक्षियों से उन्हें इतना प्रेम था कि कुछ दिन बाद मटरू के मर जाने पर उन्होंने खेद पूर्वक कहा था,
2: बड़े आश्चर्य की बात है, मैं जिससे भी थोड़ा प्यार करता हूँ वही मर जाता है।
0: इन जंतुओं के आहार आदि की व्यवस्था वे स्वयं ही करते और स्वामी सदानंद इसमें उनके प्रधान सहायक थे। वे उन सबके साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप आदि भी करते, मानो वे मनुष्यों के समान ही समझदार और बुद्धिमान हों, जैसे वे जानवर नहीं मानव हों। एक दिन उन्होंने हंसते हुए कहा था,
2: मटरू अवश्य ही पिछले किसी जन्म में मेरा कोई संबंधी रहा होगा।
0: बीच बीच में वे बकरे हंसी के पास जाकर दूध के लिए अनुरोध करते, मानो दूध देना या न देना उनकी इच्छा पर निर्भर हो। इन प्राणियों के प्रति उनके स्नेह की स्पष्ट छाप 7 सितंबर को भगिनी क्रिस्टीन के नाम लिखे उनके पत्र में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।
2: वर्षा का जो जल मठ में जमा हो जाता है उसके निष्कासन के लिए एक गहरी नाली खोदी जा रही है। उसी कार्य में हाथ बटाकर मैं अभी अभी लौटा हूं। मेरा विशाल काय सारस तथा बतखें सब बड़े आनंद में हैं। मेरा पाला हुआ काला हिरन मठ से भाग गया था। उसे ढूंढ निकालने में कई दिनों तक हमें बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। मेरी एक बतख कल दुर्भाग्यवश मर गई। उसे लगभग सप्ताह भर से सांस लेने में कष्ट हो रहा था। इन सब घटनाओं को देखकर हमारे एक वृद्ध रसिक साधु कह रहे थे, महाराज जब इस कलयुग में नमी और वर्षा से बतख को जुकाम हो जाता है और मेंढक छींकने लगते हैं तो फिर जीवित रहने से कोई लाभ नहीं। एक बतख के पंख झड़ रहे थे। इसका कोई उपचार न मालूम होने के कारण एक पात्र में थोड़े जल में किंचित कार्बोलिक एसिड मिलाकर उसे उसमें कुछ मिनट के लिए ये सोचकर डाल दिया गया था कि या तो वो पूरी तौर से चंगी होठेगी अथवा मर जाएगी, परंतु अब वो ठीक है।
1: मठ के कुत्ते का नाम था बाघा। वो मठ के अन्य सभी जानवरों की रखवाली करता, दादागिरी भी करता और सोचता कि मठ में उसका एक विशिष्ट स्थान है। एक बार उसकी अत्यधिक शैतानी से तंग आकर उसे गंगा के उस पार ले जाकर छोड़ दिया गया था, परंतु बाघा को यह व्यवस्था स्वीकार न थी। उसे मठ से लगाव था और विशेषकर स्वामी जी को छोड़कर वो रह ही नहीं सकता था। दिन भर बड़े कष्ट में बिताने के बाद शाम तक उसने उपाय सोच लिया और एक नाव में चढ़ बैठा। जब नाव के मल्लाहों और यात्रियों ने उसे भगाने का प्रयास किया तो भी वो उतरा नहीं, बल्कि दांत निकालकर गरजते हुए उन्हें धमकी देने लगा।
0: किसी तरह उसे चुपचाप पार उतरा देना ही उचित समझकर सबने उसे इस पार छोड़ दिया। इस पार आकर वो रात उसने इधर उधर छिपकर बिताई। भोर के 4 बजे जब स्वामी जी स्नान घर में प्रवेश करने जा रहे थे, उसी समय पांव किसी चीज से टकरा जाने पर वे चौंक उठे और ध्यान से देखा तो वो बाघा निकला। बाघा उनके चरणों में लौटकर विनय पूर्वक क्षमा मांग रहा था और फिर से मठ में रहने की याचना कर रहा था। उसने ठीक समझ लिया था कि इस विपत्ति से एकमात्र स्वामी जी ही उसका उद्धार कर सकते हैं। इसीलिए अन्य किसी की भी नींद खुलने से पहले ही जहां पर स्वामी जी की शरण पाई जा सकती है वहीं बैठकर वो प्रतीक्षा कर रहा था। स्वामी जी ने उसकी पीठ थपथपाकर स्नेह दिखाते हुए

0: उसे आश्वस्त किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने सबको बोल दिया कि बाघा चाहे जो भी करे, अब उसे मठ से भगाया नहीं जा सकेगा।
1: बाघा की और भी कई बातें बड़ी अद्भुत थी। ग्रहण के बाद संध्या पूजन के समय शंख घंटे बजने पर ये भी सबके साथ स्नान करने गंगा में उतरता था। स्वामी जी के देह त्याग के काफी दिनों बाद जब बाघा की मृत्यु हुई तो उसका शव गंगा में विसर्जित कर दिया गया। ज्वार के पानी के साथ उसका शरीर बहकर चले जाने पर भी भाटे के समय सबने विस्मय पूर्वक देखा कि वो मठ की सीमा में ही गंगा की मिट्टी पर पड़ा है। इससे मठ के प्रति बाघा के लगाव का परिचय पाकर एक ब्रह्मचारी ने वरिष्ठ सन्यासियों की अनुमति लेकर बाघा को वहीं पर दफना दिया।

0: उन दिनों जाड़े के मौसम में प्रायः बड़े दिन की छुट्टियों में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करता था। उस वर्ष दिसंबर में कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन होने तथा स्वामी जी के बेलूर मठ में उपस्थित रहने के कारण अनेक नेता उन्हें न केवल विश्व प्रसिद्ध साधु के रूप में बल्कि भारतीय नवजागरण के एक देश प्रेमी अग्रदूत मानकर उनसे मिलने को आया करते थे। स्वामी जी अपने बिगड़े हुए स्वास्थ्य की बात भूलकर सदा ही इन देश नायकों के साथ वार्तालाप को प्रस्तुत रहते थे और श्रोतागण भी इससे मुग्ध हो जाते तथा स्वामी जी की बातें उनके मन में अंकित हो जाती।
1: स्वदेश की अनेक समस्याओं पर उन्होंने चिंतन किया था और उनके समाधान भी ढूंढ निकाले थे, परंतु सुयोग्य कर्मियों के अभाव में उन विचारों के कार्यान्वित करने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। अतएव आग्रह करने वाले श्रोता मिलने पर वे उत्साह पूर्वक दीर्घ काल तक इन बातों पर चर्चा करते थे। एक दिन मठ के विस्तृत प्रांगण में टहलते हुए वे उत्साह और आवेग पूर्ण भाव से लगभग 1.5 घंटे तक एक विषय पर बोलते रहे। इन साक्षात्कारों का उल्लेख करते हुए एक अखबार में छपा था,
2: पिछले कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर कलकत्ते में हमारी उनके साथ अंतिम बार भेंट हुई थी। उस समय उत्साह के साथ उन्होंने हम लोगों से जिस विशुद्ध तथा उच्च कोटि की हिंदी में धारा प्रवाह वार्तालाप की, वैसी भाषा बोल पाना किसी उत्तर भारतीय हिंदी भाषी के लिए भी अत्यंत गौरव की बात होगी।
0: राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के समय श्रीयुत मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी, वे भी स्वामी जी के दर्शनार्थ बेलूर मठ आए थे, परंतु उन्हें दर्शन नहीं हो सके। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है,
3: ब्रह्म समाज के घनिष्ठ संपर्क में आने के बाद विवेकानंद को देखे बिना रह पाना मेरे लिए संभव न था, इसलिए मैं बड़े उत्साह के साथ लगभग सारा रास्ता ही पैदल चलता हुआ बेलूर मठ गया था। मठ का शांत वातावरण मुझे बड़ा अच्छा लगा। स्वामी जी उस समय अस्वस्थ होकर कलकत्ते के मकान में थे, इस कारण उनसे भेंट होना संभव नहीं, ये जानकर मैं बड़ा निराश और दुखी हुआ था।
1: उस समय स्वामी जी की अस्वस्थता के कारण सामान्य आगंतुकों को उनके पास मिलने नहीं दिया जाता था। एक दिन लोकमान्य तिलक मठ के दक्षिणी भाग में बेल के पेड़ के नीचे नाव से उतरे और उन्होंने अपना नाम लिखा हुआ एक कार्ड एक वृद्ध साधु को दे दिया, परंतु साधु ने बताया कि स्वामी जी बीमार हैं और उनसे भेंट नहीं हो सकती। तिलक अपना कार्ड छोड़कर चले गए। संध्या के समय जब स्वामी जी नीचे उतरे तो कार्ड पाते ही उन्होंने तिलक से मिलने की इच्छा व्यक्त की, परंतु वे तो जा चुके थे। ये सुनकर स्वामी जी बड़े नाराज हो गए और बोले कि उन वृद्ध साधु ने अनुचित कार्य किया है और कहा कि वे वृद्ध साधु निश्चयानंद का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, उनके लिए उचित था कि वे तिलक का नाम जानते और स्वामी जी के साथ उनकी भेंट कराते। स्वामी जी ने पत्र लिखकर तिलक से पुनः आने का अनुरोध किया और 2 दिनों के भीतर ही तिलक आए भी।
0: तिलक के साथ मठ के दक्षिणी ओर के मैदान में टहलते हुए स्वामी जी ने उनके साथ बातचीत की। उनके निकट दूसरा कोई भी न था, तो भी दूर से दिख रहा था कि स्वामी जी प्रेरणा के आवेग में सिर तथा हाथ हिलाते हुए बोलते जा रहे थे और तिलक धैर्य तथा शांति के साथ सुन रहे थे। निश्चयानंद के मतानुसार तिलक का कार्यक्षेत्र महाराष्ट्रीय ब्राह्मण समाज के बीच ही सीमित था। स्वामी जी के संपर्क में आने के बाद से ही वो जनता के बीच में फैल गया। उनके मतानुसार लोकमान्य तिलक ने और भी कई बार मठ में आकर स्वामी जी के साथ बातचीत की थी और एक दिन स्वामी जी ने मुगलाई चाय बनाकर उन्हें पिलाई थी। जायफल, जावित्री, इलायची, लवंग, जाफरान आदि को एक साथ मिलाकर उबालने के पश्चात उस काढ़े में चाय की पत्ती, दूध तथा चीनी मिलाकर वो चाय बनी थी।

0: दीन दरिद्र अभागों के लिए स्वामी जी का मन रोता रहता था, अतः वे हमेशा उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते थे। उसी संदर्भ में एक घटना का वर्णन सुनिए।
1: उन दिनों मठ की जमीन की सफाई करने तथा मिट्टी काटने के लिए प्रतिवर्ष कुछ संथाल स्त्री पुरुष आया करते थे। उनके साथ मिलकर स्वामी जी उनके सुख दुख पर चर्चा करते तथा तरह तरह से हास परिहास भी किया करते। उनमें से एक का नाम केष्टा था। वो स्वामी जी का प्रिय पात्र तथा कामकाज में बड़ा होशियार। स्वामी जी जब उससे बातें करने जाते तो कभी कभी वो कह उठता,
2: अरे स्वामी जी बाप, तू हमारे काम के समय यहाँ ना आया कर। तेरे साथ बात करने से हमारा काम बंद हो जाता है और बाद में बूढ़ा बाबा आकर डांटता है।
3: नहीं नहीं, बूढ़ा बाबा नहीं डांटेगा। तू अपने देश की बातें बता। अच्छा ये बता, आज यहाँ खाना खाएगा क्या?
2: नहीं बाप, नहीं नहीं, अब हम तुम लोगों का छुआ नहीं खाते। अब मेरा ब्याह जो हो गया है, तुम्हारा छुआ नमक खाने से हमारी जात जाएगी रे बाप।
3: तो नमक मत खा, बिना नमक का तरकारी पका देंगे, तब तो खाएगा ना।
0: केष्टा राजी हो गया। स्वामी जी ने उसके लिए पूड़ी, तरकारी, मिठाई, दही आदि की व्यवस्था कर दी।
2: अरे स्वामी जी बाप, ऐसी चीजें कहाँ से पाई? हमने तो ऐसा खाना कभी नहीं खाया बाप, कभी नहीं खाया।
1: स्वामी जी ने स्वयं सामने बैठकर उन्हें खाना खिलाया और बोले,
3: तुम लोग नारायण हो, आज मेरा नारायण को भोग देना पूरा हुआ।
0: भोजन के बाद संथाल लोग तृप्त होकर चले गए तो स्वामी जी ने शरद बाबू से कहा,
3: इन्हें देखा मानो साक्षात नारायण है। ऐसा सरल चित्त, ऐसा निष्कपट सहज प्रेम पहले कभी नहीं देखा।
0: तदनंतर मठ के सन्यासियों की ओर उन्मुख होकर वे बोले,
3: देखो वे लोग कैसे सरल हैं, इनके दुख थोड़ा दूर कर सकोगे? नहीं तो गेरुए वस्त्र पहनने से क्या लाभ हुआ? पर हिताय सर्वस्व अर्पण, इसी को सच्चा सन्यास कहते हैं। अच्छी चीजें कभी इन्हें भोग करने को नहीं मिली। जी में आता है कि मठ सब बेचकर इन्हीं गरीब दुखी दरिद्र नारायणों में बांट दूं। हमने तो वृक्ष के नीचे वास करने को ही सार समझा है। आह, देश के लोग खाने पहनने को नहीं पाते, फिर हम कैसे अपने मुख में अन्न डालते हैं? हाय।
1: कहते कहते उनके आंखों से आंसुओं की धार बह चली। थोड़ा संभल कर वे बोले,
3: देश के गरीब दुखियों के लिए कोई नहीं सोचता है रे। जो लोग राष्ट्र के मेरुदंड हैं, जिनके परिश्रम से अन्न उपजता है, जिन लोगों के एक दिन काम बंद कर देने से नगर में हाहाकार मच जाता है, हाय, उन्हें सहानुभूति दिखाने वाला, उनके दुख शोक में सांत्वना देने वाला देश में कोई नहीं है रे। देखना हमारी सहानुभूति के अभाव में मद्रास अंचल के हजारों पैरिया धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हम लोग दिन रात उनसे यही कहे जा रहे हैं, छूना मत, छूना मत। देश में क्या अब दया धर्म नहीं बचा है रे भाई? केवल छुआछूत मानने वालों का दल है। ऐसे आचार व्यवहार के मुख पर मारो झाड़ू, मारो लाठी। तुम लोग बुद्धिमान लड़के हो, यहां इतने दिनों से आ रहे हो, अब तक क्या किया है बोलो तो? दूसरों के लिए क्या एक जन्म दान में नहीं दे सकते? अगले जन्म में आकर वेदांत आदि पढ़ लेना। इस बार परोपकार के लिए शरीर दान दे दो, तभी समझूंगा कि मेरे पास आना सार्थक हुआ है।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक कई राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: 2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन, प्रवेश निःशुल्क।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।